0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में मां की जरूरत पड़ती है और तुम उसी मां से मेरे जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो, विवादों में पड़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानवता मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूं, कुरान की तालीम हूं, बाइबल की शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहब का आदर्श हूं। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर साईं बाबा हूं। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया मोह पाप दोष कष्ट लोभ अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूं, क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा, अल्लाह मालिक।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह की ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: नमस्कार। सभी सुनने वालों को नमस्कार। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उनके अनुसार इस मंडल में सांसद, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष और रोड्रिक्स के चीफ कमिश्नर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का भी समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। वहीं उन्होंने देश की राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता को अब भी बड़ी चुनौती बताया। MFDC के CEO केविन गति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमरीका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। ये चर्चाएं अभी भी जारी हैं और जून में कई स्टेक होल्डर्स के मॉरिशस आने की उम्मीद है। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जलभराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। कम बारिश के कारण कई जलाशयों में जलस्तर घटा है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभोन ने लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन को मंत्रालय की सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रोजहिल कार्यालय में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 18 महीनों में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और अधिक प्रभावी बन सकें। आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मस्करिंस के दक्षिण से दूर एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे और पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी। देश के ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 6:36 पर सूर्योदय और शाम 5:38 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Rise and Radio Mauritius.
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: L'habitude, ils avaient pu songer Mouti Time avec Formland.
5: Madame Sheila, mais petit déjeuner.
4: Asté, et nous céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, tac, tac, nous petit déjeuner ne paraît.
5: Ah, ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smot.
4: Mais non, mal. Et comme au son du travail, ben appli réconfortant qui retrouve la famille, autour ben bonne préparation avec Formland.
5: Mmh, ou fais-moi faire.
4: Asté avec Formland Hot Chocolate, la vie en complice, ta mam.
5: Si à tout qui s'agose pour les un goût passé.
4: Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
5: Restez avec Formland, nous gagnons encore beaucoup plus.
4: Formland, ça même nous smart choice.
6: Eight hundred and 19 kilowatts. This is Radio Mauritius.
7: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई ये विज्ञप्ति है। ओयता के पास

0: के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर जिसमें है मौसल मौसी गोबिन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 30 मई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम में 819 किलोहर्ट्ज़ पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। आप सभी का साथ देने आ पहुंची है रत्ना, सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। 28 मई आज की तारीख, 2026 का वर्ष, गुरुवार का दिन और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:07 होने जा रहे हैं। आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगा, ऊर्जाजनक रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के साथ आइए जुड़ते हैं। आप सभी को याद दिला दे, गुरुवार के दिन की शुरुआत हम करते हैं मॉरिशस श्री सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के कार्यक्रम दिव्य दृष्टि के साथ। और आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य नरेंद्र व्यास जी, और उसके तुरंत बाद सदाबहार गीतों के साथ सुबह को और सुरीली और मनमोहक बनाते हुए बढ़ेंगे आगे। 6:30 हम जुड़ेंगे दुनिया की खबरों के साथ, यानी कि एक बार फिर समाचार बुलेटिन के साथ, और तुरंत समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आशा करते हैं इस सफर में आप हमारा साथ देंगे। तो आइए आज के इस दिन की शुरुआत हम करते हैं आज के सुविचार के साथ। श्रोताओं, कहते हैं दो तथ्य जो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। एक है हमारा धीरज जब हमारे पास कुछ ना हो, और दूसरा है हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। तो आइए आज के इस दिन का शुभारंभ करते हैं दिव्य दृष्टि के कार्यक्रम के साथ। आचार्य नरेंद्र व्यास जी का स्वागत करते हैं।
2: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
3: नमस्कार, प्रणाम, जय सियाराम सभी श्रोताओं को। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस दिव्य दृष्टि के शुभ कार्यक्रम में हम अधिक मास के बारे में जानेंगे। अधिक मास क्या है, तो पहले समझते हैं अधिक मास क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ। तो हमारे शास्त्रों पुराणों में कथा आती है कि जब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा आपने सभी ने सुनी होगी, कि हिरण्यकशिपु ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कि उस वरदान में उन्होंने भगवान से ये सब मांगा कि शस्त्र से न मरूँ, अस्त्र से न मरूँ, कोई मानव से न मरूँ, कोई पशु से भी न मरूँ। और इस प्रकार वरदान मांगते मांगते सभी चीज़ों से मांग लिया, मैं दिन में न मरूँ, रात में न मरूँ। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको सब प्रकार के वरदान दे दिए। उस वरदान को पूरा करने के लिए और उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ये कथा आप सभी को पता है। और उस नरसिंह अवतार के रूप में भगवान ने उनका वध किया, लेकिन किस समय पर वध किया, संध्या के समय में, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था दिन में भी न मरूँ और रात्रि में भी न मरूँ। तो उस वरदान को पूरा करने के लिए उन्होंने एक वरदान ये भी मांगा था उस राक्षस ने कि मैं किसी भी महीने में किसी भी दिन न मरूं। तो भगवान ने उनको मारने के लिए एक महीना उत्पन्न किया, उसका नाम पड़ा अधिक मास। तो अधिक मास को मल मास भी नाम दिया गया। तो वो अधिक मास जो है वो सभी देवताओं के लिए एक एक महीना है। तो अधिक मास के लिए कोई भी

देवता नहीं थे। अधिक मास सभी भगवान के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, अधिक मास जो है शिव जी के पास भी गया, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी ने दोनों ने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, आप भगवान नारायण के पास जाइए। अधिक मास भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने उनका नाम जो है अपना खुद का नाम उस महीने को दिया, इसलिए इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये पुरुषोत्तम मास जो है भगवान नारायण के लिए है। अधिक मास में ऐसा कहा गया हमारे शास्त्रों में, अधिकस्य अधिकम फलम, इस मास में जितना भी आप अधिक करेंगे, कुछ भी कार्य, दान का कार्य, पूजन का कार्य, जप का कार्य, यज्ञ पूजा कुछ भी करेंगे, उसका फल अधिक मिलता है। नॉर्मल महीने से इस महीने में फल अधिक मिलता है, इसलिए इस अधिक मास का बहुत ही महत्व है। इसमें पूजा, दान, जप, तप, होम और खास करके पुराणों की कथा का श्रवण, इस प्रकार ये अधिक मास के महीने के ये सभी कार्य है। भगवान पुरुषोत्तम के लिए महीना उपयुक्त है, भगवान नारायण के लिए, इसलिए इस महीने में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो द्वादशाक्षरी मंत्र है उस मंत्र का जो है जाप इस महीने में खास करना चाहिए। हर रोज जो है 108 मंत्र से इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी की माला से, और हो सके तो भगवान नारायण को है तुलसी से अर्चन करना चाहिए, भगवान का हवन आहुति दे करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्व वेदों में लिखा है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु भगवान का रूप है। जैसे शिव जी को जलधारा यानी अभिषेक प्रिय, उसी तरह भगवान नारायण को यज्ञ प्रिय है। तो इस महीने में पुरुषोत्तम मास में यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार इस महीने में बहुत सी ध्यान भी रखना चाहिए कि इस महीने में जो नियम का पालन होना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख लगे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कई लोगों के मन में मल मास के प्रति बड़ा जो है मन में ऐसा कोई व्यथा है, कई किसी को पता नहीं है, तो मल मास के अंदर में कई लोग कुछ कार्य करने में डरते हैं, तो मल मास के लिए जो है कई सारे कार्य किए जाते हैं, कई सारे नहीं किए जाते हैं। उसमें करने वाले कार्य भगवान की निस्वार्थ भाव से कोई भी पूजा कार्य यज्ञ कथा श्रवण कुछ भी करो तो इस मास में किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं, सांसारिक कार्य, शादी विवाह है, मंगनी है, कोई नए घर का पूजा है, गृह प्रवेश है, नया घर खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना या नई गाड़ी खरीदना, ये सब इस महीने में नहीं किया जाता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए जो भी आपको करना है ये सब आप कर सकते हैं। भगवान की सब प्रकार की पूजा की जा सकती है, और खास इस महीने में दीप दान का बड़ा महत्व है। जैसे कार्तिक मास में दीप दान किया जाता है, उसी तरह इस महीने में भी दीप दान का बड़ा महत्व होता है। इस महीने में दीप दान करने से सवेरे और शाम, हो सके तो सवेरे शाम दो टाइम कीजिए, अगर ना हो सके तो कम से कम संध्या के समय शाम में भगवान को दीप दान करना चाहिए। दीप दान का बड़ा महत्व है इस महीने में, और इसमें दो एकादशी आती है, दोनों एकादशी का व्रत पद्मिनी और परमा, दो एकादशी है, इसका व्रत भी बड़ा महत्व है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है, तो दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। और साथ ही साथ इस बार एकादशी के साथ में व्यतिपात योग भी है, तो व्यतिपात के दिन व्रत करना चाहिए, एकादशी करनी चाहिए, और साथ में जो है संपुट का दान यानी कासे के पात्र में मालपूड़ा का भोग भगवान को लगा करके ऊपर और नीचे कासे का पात्र रख करके संपुट दान किया जाता है। ब्राह्मणों को जो है संपुट दान किया जाता है, दान का बड़ा महत्व होता है, तो ये संपुट दान किया जाना चाहिए, व्यतिपात योग और दोनों एकादशी। और कुछ न कर सके पूरे महीने, अगर आप व्रत न कर सको तो अंतिम 5 दिन जो है पंचरात्र का व्रत करना चाहिए। पंचरात्र का व्रत न कर सको तो 2 एकादशी करनी चाहिए कम से कम। अगर 2 एकादशी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 टाइम भोजन करके इस महीने को आप व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सभी जो है कार्य किया जा सकता है। और अधिक मास के अंदर में खास करके भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, तो मनुष्य जन्म को सुधारने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा कि बड़े भाग मानस तनुपावा, बड़े भाग्य से हम सभी को मनुष्य का शरीर मिलता है, तो इस मनुष्य का शरीर हमको सार्थक करने के लिए, मनुष्य के शरीर के अंदर में भगवान ने जो हमको कार्य दिया है पुण्य के काम करने के लिए, तो इस पुण्य के काम को करने के लिए भगवान ने मनुष्य देह दिया है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ भला करने के लिए, तो इस मनुष्य देह को सार्थक करने के लिए अधिक मास का व्रत, उपवास, पूजन, दान, अर्चन, जब आदि सब कुछ करना चाहिए। इस महीने में तीर्थ यात्रा का भी बड़ी महत्वता है, गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा दशहरा है उस दिन भी स्नान कर सकते हैं, और हर रोज भगवान का नाम लेकर के गंगा जी का स्मरण करके अपने नहाने के जल के अंदर में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लो तो वो भी तीर्थ स्नान कहा गया है।
और या तो कोई भी बड़े तीर्थ जैसे

हरिद्वार, काशी, मथुरा, जहाँ पर भगवान का वास है, इस प्रकार उस तीर्थों का भी दर्शन करना चाहिए, तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। यात्रा का भी महत्व है और दर्शन का भी महत्व है, तो तीर्थ यात्रा भी जरूर करें इस महीने में। और कुछ ना हो सके तो अपने घर पे बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान के कई सारे मंत्र हैं, श्री कृष्ण शरणम मम एक मंत्र है, दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक मंत्र और है ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र के जाप आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार अधिक मास में ये सब करना चाहिए। अधिक मास के अंदर में वैसे तो भगवान की कई सारी उपासना की जा सकती है, लेकिन भगवान की उपासना करने का भी जो है भाव, उपासना करने के प्रकार कई सारे अलग अलग हैं। जैसे भगवान की उपासना मित्र बनकर भी कर सकते हैं, भगवान की उपासना जो है दास बनकर के भी कर सकते हैं, भगवान की उपासना जो है भगवान को अपना बेटा मान करके, जैसे आप घर पे अपने घर पे लड्डू गोपाल की आप पूजा करते हैं, तो भगवान को अपना बेटा मान करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। दास बनकर, यानी भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं यानी नौकर हैं, उस प्रकार भी भगवान की सेवा उपासना की जा सकती है। हमारे पुराण में 18 पुराण के अंदर में एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इस अधिक मास के अंदर में इस 9 भक्ति में से किसी भी प्रकार की आप भक्ति भगवान की कर सकते हैं। नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो है रामायण में इस भक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस 9 प्रकार की भक्ति की जा सकती है, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार अधिक मास में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। भगवान की विशेष उपासना में वैसे तो मैंने जैसे कहा कि भगवान का नाम जप, क्योंकि किसी भी प्रकार का यज्ञ जो है इस महीने में हम कर सकते हैं। फिर आप भगवान का नाम जपने के लिए बैठो तो उसको जप यज्ञ कहते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए बैठो तो उसको पूजन यज्ञ कहते हैं, भगवान की कथाओं का अगर आप श्रवण करें, कहीं पे भागवत कथा चल रही हो, शिव पुराण की कथा चल रही हो या किसी भी पुराण की कथा चल रही हो, तो उस कथा के अंदर में आप जाकर के श्रवण करो तो उसको जो है श्रवण यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। और इस महीने में तो खास करके पुराणों का पठन करना चाहिए, कुछ ना हो सके तो श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है पठन करना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि भगवान की उपासना के लिए दीपदान का बड़ा महत्व है, तो दीपदान जो है हर रोज करना चाहिए, घी का दिया जला करके। और स्कंद पुराण में तो ये भी लिखा है कि भगवान को इस अधिक मास के अंदर में दीपदान किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो अधिक मास में दीप दान करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी को लेकर के उसके ऊपर रुई यानी कॉटन लगा करके उसको घी में डुबो करके भगवान को दीप दान किया जाता है। तो इस प्रकार दीप दान करने का भी बड़ा महत्व है। और व्रत और उपवास, मैंने जैसे कहा कि व्रत उपवास में कई लोग समझते हैं कि जब व्रत करें या उपवास करें तो इसमें नमक नहीं खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ग्रहों के लिए कुछ व्रत ऐसे है कि जिसमें नमक नहीं खा सकते हैं, लेकिन बाकी के व्रत के अंदर में आप नमक खा सकते हैं लेकिन सेंधा नमक। तो इस महीने में अधिक मास में व्रत भी कर सकते हैं, अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप उपवास कीजिए। उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं, फलाहार नहीं कर सकते तो कम से कम एक भुक्त यानी 24 घंटे में एक बार भोजन, बाकी के समय में आप फल खा सकते हैं। इस प्रकार जो है एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक दिन उपवास, एक दिन एक भुक्त व्रत, इस प्रकार एक दिन छोड़ करके उपवास करना है, इस प्रकार भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर इस प्रकार भी अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो अंतिम 5 दिन तक व्रत करना चाहिए उपवास करके, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 एकादशी करनी चाहिए। इसमें जो है व्रत का बड़ा महत्व होता है। उसके बाद आता है दान। दान किसको करें, कैसे करें? दान जो है सदाचारी कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को सबसे पहले दान करना चाहिए। हमारे पद्म पुराण में लिखा है और स्कंद पुराण में भी लिखा है और देवी भागवत में भी लिखा है अधिक मास के बारे में, उसमें दान का जो है महत्व है। तो इसमें अन्न दान कर सकते हैं, किसी को आप जो है सीधा सामान दे सकते हैं, पंडित जी को, ब्राह्मणों को। अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके आसपास में रहता है तो उसको जाकर के आप अन्न दान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई भूखा है तो उसको आप भोजन कराइए। कहीं पे आप पशु पंछी के लिए जल का बर्तन भर के रखे, जलदान, वो भी एक प्रकार का दान है जो है। कहीं पे अगर आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर के आप मंदिर की साफ सफाई करें, उसको भी कहते हैं श्रम दान। श्रम यानी मेहनत करके उस मेहनत

0: का दान करना, तो मंदिर की साफ सफाई करे या कोई पब्लिक, जैसे एक पब्लिक के लिए कुछ बनाया है वहाँ पर भी जा करके आप साफ सफाई करें तो दूसरों को सुख मिलेगा, इसलिए जो है उस श्रम दान कर सकते हैं। दान के बाद जप का महत्व है इस महीने में। तो मैंने जैसे कहा कि भगवान के कई सारे मंत्र हैं, लेकिन सिंपल और आसान मंत्र जो है भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत का ये महामंत्र है, श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो इस महामंत्र का जाप इस महीने में खास करना चाहिए, 108 मंत्र जो है हरोज करना चाहिए। अगर ज़्यादा भी अगर आपके पास समय हो तो इस मंत्र को करना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि तीर्थ स्नान का महत्व है। भारत में तो ऐसी प्रथा है कि लोग इस महीने में जो है तीर्थों में जाते हैं और वहीं पे एक महीना निवास करते हैं, तीर्थों में जाकर के व्यक्ति रहते हैं या तो तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ स्नान का भी, तीर्थ दर्शन का भी बड़ा महत्व है। उसके बाद जो है बुज़ुर्गों की सेवा, इस महीने में सेवा का भी महत्व है, तो बुज़ुर्गों की सेवा करें और साधु संतों की, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा करें, सेवा का भी महत्व है। तो श्रोताओं, आपको मैंने पद्म पुराण के अंदर से और स्कंद पुराण के अंदर से, देवी भागवत के अंदर से जो अधिक मास के बारे में बताया गया है वो सब आपको बताया मैंने। इसका पालन करिए, श्रवण कीजिए, और इसी के साथ आज का ये दिव्य दृष्टि प्रोग्राम जो है कार्यक्रम, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय सियाराम, प्रणाम, नमस्कार।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

गुरुवार की सुबह है और इस समय सुबह के 6:26। चलिए इसी के साथ समय हो चला है समाचारों की ओर बढ़ने का। बिल्कुल 6:30 हम बढ़ेंगे समाचारों के साथ। आज की सुबह बिल्कुल इन गीतों की तरह सुरीली रहे और इसी के साथ छोड़े जाते हैं सरगम फिल्म का ये गीत लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा हुआ। मिलते हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंतर्गत।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 हैं। नमस्कार, गुरुवार 28 मई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति की

चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। वहीं उन्होंने देश की राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता को अब भी बड़ी चुनौती बताया। एमएफडीसी के सीईओ केविन गति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित

0: जनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। कम बारिश के कारण कई जलाशयों में जल स्तर घटा है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। समाज सुरक्षा मंत्री ने लाभार्थियों की फाइलों को डिजिटलाइजेशन को मंत्रालय की सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रोजहिल कार्यालय में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 18 महीनों में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और अधिक प्रभावी बन सकें। आज 10 ज़िलहिज्जा को मौसस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। पेश है अब समाचार विस्तार से। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का मानना है कि एक निर्वाचक मंडल यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा गणतंत्र के राष्ट्रपति का चुनाव मॉरिशस में राजनीतिक संप्रदायवाद को कम करने का एक अच्छा तरीका होगा। उनका विचार है कि राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च नैतिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की जांच करने के लिए एक संवैधानिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। परवेज दुखी के अनुसार इस इलेक्टोरल कॉलेज के मुख्य रूप से 66 सांसद, 5 मेयर, जिला परिषदों के अध्यक्ष और रोड्रिक्स के चीफ कमिश्नर शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच अपना चुनाव प्रचार करेंगी। इसके साथ ही ये संवैधानिक विशेषज्ञ फ्रांस की तरह 2 चरणों वाले चुनाव की भी वकालत करते हैं, ताकि राष्ट्रपति 50% से अधिक मतों के साथ चुना जा सके। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। परवेज दुखी को सुनते हैं, जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने। विवरण सुमेरा अकबर अली का है।
1: चुनौती मौजूद है, अध्यक्ष की नामजदगी जरूरी है ताकि उसूलों पर अमल किया जाए। कम्युनलिज्म के खिलाफ संघर्ष करने का दूसरा तरीका है। मॉरिशस में ये एक बड़ी सच्चाई है जो देश का हिस्सा है। आमतौर पर मतदाता सबसे पहले चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का धर्म मजहब देखते हैं जो वो चुनेगा। राष्ट्रपति चुनाव से इस पहलू को खारिज किया जा सकेगा। अक्सर इस मुद्दे के सिलसिले में बेस्ट लूजर की बात भी होती है, जो असल में एक समस्या नहीं है।
2: मॉरिशस
0: फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MFDC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन गति का लक्ष्य मॉरिशस को हिंद महासागर में एक सिनेमाई हब के रूप में स्थापित करना है। इसे हासिल करने के लिए उनकी एक रणनीति विदेशी प्रोडक्शन कंपनियों के बीच फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में मॉरिशस की दृश्यता को मजबूत करना है। केविन गति ने 13-21 मई तक विश्व सिनेमा के इन बेहद महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लिया। MFDC के CEO ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का लाभ उठाते हुए अफ्रीका, अमरीका, भारत और यूरोप से आए निर्माताओं, निर्देशकों, कास्टिंग निर्देशकों, पटकथा लेखकों और निवेशकों के साथ कई रणनीतिक बैठकें की। शुरू की गई बातचीत फिलहाल अभी भी जारी है और जून के महीने में कई स्टेक होल्डरों के मॉरिशस आने की उम्मीद है। केविन गति को सुनते हैं।
3: C'était une mission extrêmement positive, marquée par des rencontres stratégiques.
1: रणनीतिक मुलाकातों की बदौलत ये मिशन बहुत ही सकारात्मक रहा। निर्माताओं, निर्देशकों, वितरण संगठनों और निवेशकों के अलावा अफ्रीकी, बर्तानी, अमेरिकी, फ्रांसीसी, भारतीय और चीनी प्रतिनिधियों ने मॉरिशस में न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग करने में दिलचस्पी जाहिर की, बल्कि सीरियल को फिल्माने का भी ख्याल आम किया जो लंबी अवधि के लिए हो। एक सिनेमाटोग्राफी कैंपस परियोजना और एक सिनेमा स्टूडियो बनाने पर भी अहम बातचीत की जा रही है।
0: और केविन गति ने बताया कि उन्हें कला और संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ फ्रांस में मॉरिशस के राजदूत जोएल होल्ट का भी सहयोग मिला है। वो कैन फिल्म फेस्टिवल की 2027 के संस्करण में मॉरिशस का एक ध्वज स्थापित करने की भी इच्छा रखते हैं।

0: देश के जलाशयों में पानी का स्टॉक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव का स्तर लगभग 76% था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये लगभग 89% था, जो कि 10% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। कुछ जलाशयों में जल स्तर 2025 की तुलना में काफी कम दर्ज किया गया है, जो मुख्य रूप से पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश का परिणाम है। इस स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने स्टॉक को सुरक्षित रखने और पूरे देश में पीने के पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। पानी के उपचार और वितरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न इलाकों में लगभग 50 कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा नई ड्रिलिंग खोदने के लिए टेंडर भी जारी की गई है। नीतूषा जी, हाँ,
1: मई के इस महीने में महोवाकवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। द्वीप का प्रमुख जलाशय केवल 48% तक ही भरा हुआ है। इस वर्ष भी गर्मी में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। फरवरी, जिसे आमतौर पर सबसे अधिक वर्षा वाले महीनों में गिना जाता है, उसमें भी सामान्य वर्षा का केवल 27% ही दर्ज किया गया। इस स्थिति का प्रभाव केवल जलाशयों पर ही नहीं बल्कि नदियों पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गर्मी की बारिश लगातार कम होती जा रही है।
2: Durant 5 dernières années, nous fin gain 2 ou 3 l'événement de déficit pluviométrique. Actuellement, nous avons un stock total de à peu près de petit autour de 66% de maximum. Mais l'année dernière, nous avons fini vin affiche un stockage de à peu près 80-85%. Nous avons un déficit de à peu près 22% quand nous comparons à l'année dernière. Et quand nous comparons à l'année 2024, quand là nous avons gagné bon la pluie durant la période de janvier, février, mars, nous avons un déficit de plus que 50%.
1: हर साल दोहराई जाने वाली स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को राष्ट्रीय जल नीति में बदलाव लाना पड़ा है। मुख्य उद्देश्य है जल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना।
2: Ça réservoir qui nous peut remplir dans le durant le mois de janvier, février, mars, c'est ça même ça stock là nous servit durant le mois d'octobre, novembre et décembre. Mais cette fois-ci, nous pas fin réussir remplir ça. Ça veut dire ça stock qui nous est actuellement là, nous besoin faire durer le plus longtemps possible.
1: प्रस्तावित समाधानों में नदियों में कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स की स्थापना भी शामिल है। अब तक लगभग 50 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।
2: Ça l'IPE aide beaucoup à pallier ban manque dans ban région très déficitaire. Côte, par exemple, si on a ban forage, c'est-à-dire ban borehole qui peut chuter, bien à partir de là, ce qui peut arriver, c'est que je peux pallier ce manque-là à travers ban containerized pressure filters. Il y a un ban appel d'offres qui nous finit lancé pour ça, pour faire ban forage, tout ça, pour développer ban forage davantage dans différentes parties de l'île, mais surtout nous pour donner priorité dans ban région un peu sec.
1: जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अन्य प्रस्ताव मिनी डैम्स का निर्माण। ऊर्जा मंत्रालय वाटर डिसैलिनेशन की संभावना पर भी अध्ययन कर रहा है। इस संबंध में एक टेंडर जारी किया जा चुका है।
0: सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने इसे अपने मंत्रालय की सेवाओं के आधुनिकीकरण में एक बड़ा मोड़ बताया है। बुधवार को रोज हिल कार्यालय में लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन की औपचारिक शुरुआत की गई। इस सुधार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करना और उपयोगकर्ताओं के लिए काम को आसान बनाना है। वर्तमान में 3 लाख से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर निर्भर हैं और हर महीने लगभग 8 लाख भुगतान किए जाते हैं। अशोक सुभो के अनुसार सूचनाओं तक तेजी से पहुंच और फाइलों के अधिक कुशल प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए अगले 18 महीनों में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। अशिता रखू।
3: कागजी फाइलों के ढेर से डिजिटल व्यवस्था की ओर रोजिल कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत के साथ एक ऐसी सुधार प्रक्रिया शुरू की है जिसे अधिकारी ऐतिहासिक बता रहे हैं। समाज सुरक्षा मंत्रालय को डिजिटलाइज करने की परियोजना 2013 में ही शुरू हो चुकी थी, पर कुछ हुआ नहीं था, इसलिए अब 10.5 मिलियन फाइल्स को स्कैन किया जा रहा है। इस पहल को एक ऐसे तंत्र के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

0: हैं जो बड़ी संख्या में आवेदनों और भरे हुए ऑर्काइव्स की चुनौती का सामना कर रहा है। समाज सुरक्षा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है जहां इन फाइलों में लोगों का जीवन है। इस सरकार की बड़ी परियोजनाओं में ये एक है और इसे सफल बनाने के लिए काफी साधन उपलब्ध कराए गए हैं। आज सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर 3 लाख से अधिक लाभार्थी निर्भर हैं, जिनके लिए हर महीने लगभग 8 लाख रुपए चुकाए जाते हैं। हम एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां लाभार्थी के प्रमाण पत्र के माध्यम से ही उसके फाइल तक पहुंच पाएंगे। ई सोशल सिक्योरिटी परियोजना के तहत चलाया जा रहा ये अभियान बेसिक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की फाइलों से शुरू हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ फाइलों को करीब 18 महीनों में डिजिटलाइज किया जाना है। इस पहले चरण के लिए 16 अधिकारियों को तैनात किया गया है। हालांकि आवश्यकता बढ़कर लगभग 100 कर्मचारियों तक पहुंच सकती है। वहीं कागजी फाइलों को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
1: मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून अब आकार ले रहा है। उत्पादों की सुरक्षा पर कल एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ कुमिजा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुणाल गुजी, अशिता रघु।
0: उपभोक्ता संरक्षण के लिए नए कानून के तहत परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले जिस पहलू पर विचार किया गया वह है उत्पादों की सुरक्षा। कॉर्पोरेट जोखिम या मुनाफे के अनुपालन पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन हमें कभी भी वास्तविक मानवीय कीमत को नहीं भूलना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रमाण पत्र उत्पाद की मजबूती जैसे प्रदर्शन मानदंड तथा बाजार निगरानी तंत्र, ये सभी पहलू जिम्मेदार व्यापार सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में शामिल किए जाएंगे। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आयातित उत्पाद मॉरिशस पहुंचने से पहले सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हों।
2: प्रोडक्ट सेफ्टी इज अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी।
0: उत्पाद सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। प्रस्तावित महत्वपूर्ण उपायों में असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगवाने से जुड़े कड़े प्रावधान, अनुचित अनुबंध शर्तों पर रोक और कानून लागू करने की क्षमताओं को और मजबूत बनाना शामिल है। आसिम के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रोटोकॉल को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। मॉरिशस उपभोक्ता संघ की एक सिफारिश ये है कि उपभोक्ताओं के लिए सहायता तंत्र स्थापित किया जाए जिसमें कानूनी सहायता भी शामिल हो।
3: Au-delà de la sécurité, la possibilité qu'ils ont pas gagné satisfaction, qu'ils ont capable challenge ça.
0: सुरक्षा से अधिक असंतुष्टि होने पर आपको अदालत तक जाने का अवसर मिलेगा। उत्पाद के साथ साथ सेवा पर भी बल डाला जा रहा है। उचित लेबलिंग का होना अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ऐसे कानूनी ढांचे पर विचार कर रहा है जो ऑनलाइन बिक्री, भ्रामक विज्ञापनों और ग्रीन वॉशिंग जैसी मौजूदा समस्याओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत बनाए।
1: आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। सभी मुसलमानों को ईद मुबारक हो। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में सुमेरा अकबर अली के साथ।
4: 10 ज़िलहिज्जा की तारीख मजहबी इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रखने वाला वाक़या ज़माने हाजिर तक सभी मुसलमानों की ज़िंदगी में संग मील की हैसियत रखता है। रब के फरमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माइल को क़ुरबान करने का हुक्म मिला था। बग़ैर कोई सवाल करते हुए, बग़ैर कोई शिकवा करते हुए खलीलुल्लाह ने ये फरमान कबूल किया था और बदले में अल्लाह ताला उनसे इतना खुश हुआ कि उसने उनका बेटा बख्श दिया। इसीलिए सुन्नत इब्राहिम अदा की जाती हैं। क्यूपिप की अनवर मदीना मस्जिद से मौलाना मोहम्मद राशिद खान बताते हैं।
5: اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور

0: सुन्नत इब्राहिमी अदा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम वो रवायत करते हैं कि सहाबे किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर हम ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे तो हमें इसमें क्या सवाब मिलेगा? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेंगी और ये नेकियां तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगी।
1: आज पूरे मॉरिशस में ईद उल अधा के मौके पर दिन का आगाज मस्जिदों में बाजमात नमाज से किया जाता है। सुन्नत इब्राहिम के अलावा आज के रोज रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त भी गुजारा जाता है। तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो।
2: मॉरिशस इस शुक्रवार तक पोर्ट लुई में हिंद महासागर में गिरमिटिया मजदूरों की विरासत पर एक इलाकाई कार्यशाला की मेज़बानी कर रहा है। कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय है हिंद महासागर में गिरमिटिया श्रम की विरासत पर एक संवाद। ये एक ऐसी बैठक है जो इलाके के कई देशों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, संस्थागत प्रतिनिधियों और विरासत पेशेवरों को एक साथ लाती है। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए इस इतिहास को बेहतर ढंग से संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए एक इलाकाई कार्य योजना तैयार करना है। थिंक रिक्रूटमेंट ने मॉरिशस के रिक्रूटमेंट सेक्टर में अपनी उपस्थिति के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह के साथ अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में ने कंपनी के सफर, उसकी उपलब्धियों और साथ ही रोजगार बाजार में उसके योगदान को याद करने का अवसर प्रदान किया। इसके अधिकारियों ने इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्थन, मार्गदर्शन और नवाचार के अपने मिशन को जारी रखने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। फिंक रिक्रूटमेंट के संस्थापक और निदेशक अनिल लोकी को सुनते हैं, जिनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण अदिति अवतार का है।
3: थिंक रिक्रूटमेंट का मॉरिशस के नौकरी क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है, खासकर होटल और पर्यटन सेक्टर पर। हमने नए डिग्री होल्डरों और पेशेवरों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं प्रस्तावित की हैं। हमारी एजेंसी ने स्थानीय क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय मांगों के बीच अंतर को कम करने में अहम योगदान दिया है।
4: La compétence locale et exigence mondiale.
2: और विदेश में यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि अमरीकी सेना ने ईरानी मुल्क के 4 आत्मघाती ड्रोन्स को मार गिराया है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास खतरा पैदा कर रहे थे। इसके साथ ही अमरीकी बलों ने एक रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया जो 5वां ड्रोन लॉन्च करने ही वाला था। ईरानी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार बंदर अब्बास के पूर्व में विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मस्करिंस के दक्षिण से दूर एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे और पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरा भी छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 6:36 पर और आज शाम 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कविश को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:50 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

इसमें 75 साल के 75 years old के श्री महेश दुकारन, जो पहले मुसलमो कुंजू प्लेंडे पपाए रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 1:30 बजे फ्रांस से उठाकर जों शोकोल दे विल्टानर्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। La chapelle ardente de Moura Petite Rivière met 64 salle qui 64 years old qui shrimati umavati talu pedashi nam budhan aur jumita nam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hai. Ve kahon lalian vakwa rehti thi, unki arthi aaj subah 9:30 baje La chapelle ardente de Moura Petite Rivière se uthakar balon sulfurineux number 5 ki shmshan bhumi di jai jayegi. Cremation today at 9:30. नंबर 127 बाउंड्री रोड से पैट्रिक कैट्रोबोन में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री सिवलाल सिबालक, जो सिलाल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके बेटे ऋषि सिबालक के घर नंबर 127 बाउंड्री रोड से पैट्रिक कैट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। आर्या मंदिर रोड पिछड़ आफ्रे में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमती रमेसर, जो खुम खुमवा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सुबह 10 बजे उनके घर आर्या मंदिर रोड पिछड़ आफ्रे से उठाकर मोमास्काल पिछड़ आफ्रे की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री रदाशुर फुलमुन, जो प्रेम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रमेश फुलमुन के घर रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर महाराजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। ईटू जिना स्ट्रीट लाफेम बॉम्बू में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांताबाई बिहारी, पैदायशी नाम लक्सिमो और जुमीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 1 बजे उनके घर ईटू जिना स्ट्रीट लाफेम बॉम्बू से उठाकर मोताए सेंट पियर बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इकूप बोरिक्लेन मोसेलमो सेंट आंद्रे में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति ब्रज मोहन, पैदायशी नाम सालिक और जो साधु मिनुजिए नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे अमरदश ब्रज मोहन के घर इकूप बोरिक्लेन मोसेलमो सेंट आंद्रे से उठाकर बॉमो शांति रोज की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नॉर्दर्न बाउंड्री कैट्रोबोन में 40 साल के 40 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रीत गुरुदयाल, जो आकाश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी मां मावती गुरुदयाल के घर नॉर्दर्न बाउंड्री कैट्रोबोन से उठाकर बेतो कुदगाद की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। अलीजाक बॉम्बू में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री सादेव जीतन, जो कॉल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके भाई सुचिल जीतन के घर अलीजाक बॉम्बू से उठाकर मोताए सेंट पियर बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मिदीदीन लेन सैंपल फिनिक्स में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री मनोज कुमार मिदीदीन, जो कोको नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके भाई रितेश मिदीदीन के घर मिदीदीन लेन सैंपल फिनिक्स से उठाकर एलिब्रियों का सेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शिवाला रोड रुनियो मोहल पिछड़ आफ्रे में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री धनेश्वर राम कलावन, जो दीवानंद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर शिवाला रोड रुनियो मोहल पिछड़ आफ्रे से उठाकर बेलमों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। नंबर 12 सेराफिन लेसालिन पोटलुई में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी विरापेन, जो आका देवी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर नंबर 12 सेराफिन लेसालिन पोटलुई से उठाकर लेसालिन की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM।
काना विनु कथकुकु में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री हरि प्रसाद रामहित जो महाष्टय नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे रामहित जयदत्त के घर काना विनु कथकुकु से उठाकर

शौके शमशान भूमि ली जाए जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 64 साल की 64 years old की श्रीमती गोइंदा मानाइडू रामास्वामी, पैदाइशी नाम रोसामाल और जो देवी रामास्वामी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके पति श्री रोमी रामास्वामी के घर ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर प्लान मानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30। पदाहत लेन फ्लाक में 71 साल की 71 years old की श्रीमती सरस्वती आपादू, पैदाइशी नाम तिचौ, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे नीरज आपादू के घर पदारत लेन फ्लाक से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। नंबर 23 एवेन्यू पाव कैथ्रो बोन में 67 साल के 67 years old के श्री राज सुखदेव, जो राज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे ऋक्षिवंश सुखदेव के घर नंबर 23 एवेन्यू पाव कैथ्रो बोन से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। मुस्की रोड रोजबेल में 47 साल के 47 years old के श्री कृष्णा उचित, जो बीबी नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके भाई विक्रम उचित के घर मुस्की रोड रोजबेल से उठाकर माखी जानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। डॉक्टर मनीलाल फोबाक रोड फोंजुसाक में 76 साल के 76 years old के श्री नारायणन जमनुदू, जो नारायण नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर डॉक्टर मनीलाल फोबाक रोड फोंजुसाक से उठाकर थ्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। बैंक रोड गुडलैंड्स में 87 साल की 87 years old की श्रीमती मनित्यामन विरासु, पैदाइशी नाम एंकुत्सामी और जो रंभा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर बैंक रोड गुडलैंड से उठाकर बेलमो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। सोलफेरिनो नंबर 2 वाकुआ में 77 साल के 77 years old की श्री माधो राधा, जो छोटे नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर सुल्फेरिनो नंबर 2 वाकवा से उठाकर बालों सुल्फेरिनो नंबर 5 के शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ओएमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नुथावाई नुलावेनिया। मैन्युफैक्चरिंग के सिक्तिया में स्टेटलर मॉरिशस लिमिटेड जन रॉयल रोड पीतो में पावल जाला 20 मेल हाई प्रेसिजन मैकेनिक्स खो जाता जिनकर फॉर्म 3 संगे इंडस्ट्रियल मैकेनिक मिल एक्सपीरियंस बाटे। साथ में खो जाता 20 मेल फैक्ट्री वर्कर्स जिनकर फॉर्म 3 बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे फैक्ट्री जाके माने कि रॉयल रोड पीतो जाके अपन अर्जी सबमिट कर दिया नतसक ब टेलीफोने करे 264-1348। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 14 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सिक्तिया में आइलैंड ब्रश कंपनी लिमिटेड जन बो प्लाटू रोड सेंट अंतोन गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मेल और फीमेल असिस्टेंट लैबोरेटरी खोजता जन एगो डिग्री होल्डर है। साथ में खोजता एगो मेल और फीमेल डेवलपर प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल जन एगो डिग्री होल्डर बा। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी मेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है ah@ibrush.mu admin@ibrush.mu। जे जस्ती जानकारी खोजबा तते

0: फोम सेक्स संगे मेकानिक्स में जानकारी बांटे, साथ में 5 मेल और फीमेल प्रेस ऑपरेटर्स जिनकर 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बांटे और एगो मेल और फीमेल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटर खोजता जेकर डिप्लोमा बांटे। आपका सुगरे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://www.presigraph.mu/en। जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोन करिया 52 54 72 82 न सकबा हो जे ऑफिस जाके अपन अर्जी भर दी है। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में फ्रेजियर द क्यूएपिप लिमिटेड जोन दे ब्रा रोड न्यू ग्रोव में पावा जाला 4 मेल लॉरी ड्राइवर्स खोजता जिनकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बाटे, साथ में 4 मेल प्राइवेट कार ड्राइवर्स जिनकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बाटे, 8 मेल हेल्पर्स और 6 मेल फील्ड क्रॉप लेबरर्स। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया 665 60 60। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। पारास्टेटल के सिक्ते में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जिन महात्मा गांधी रोड मोका में पावल जाला एगो मेल और फीमेल क्लेरिकल ऑफिसर खोजता जिकर HSC बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://www.mgirti.ac.mu/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 28 मानी की 2026। पारास्टेटल के ही सक्तिया में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जन महात्मा गांधी रोड मोका में पावल जाला एगो मेल और फीमेल लेक्चरर
1: स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स
0: जन एगो मास्टर्स डिग्री होल्डर बा। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://www.mgirti.ac.mu/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 3 जून 2026। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सिक्ते में कोमेसा कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन CCCC जन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड 3rd फ्लोर फुक्स हाउस बोबो स्ट्रीट पोर्ट्रीस में पावल जाला एगो डायरेक्टर कॉर्पोरेट सर्विसेज खोजता एगो अरबिक ट्रांसलेटर और एगो फ्रेंच ट्रांसलेटर खोजता। एप्लीकेशन करे खातिर मिनिस्ट्री के वेबसाइट मानी की https://foreign.gov.org/pages/vacancies.aspx नता कमिशन सेक्रेटरिया के वेबसाइट विजिट करिया https://www.comesa.int/ नता कमिशन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन माने के CCCC के वेबसाइट https://comesacompetition.org/। जन कैंडिडेट इंटरेस्टेड हवन चाहेला उनकरा अपन एप्लीकेशन संगे एगो सॉफ्ट कॉपी विदा करे के CCCC ई वेबसाइट पर recruitment@comesacompetition.org और चाहेला एगो कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के ई वेबसाइट पर भी mofisa@govmu.org। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 17 जून 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ त ई भी सुनते चला कि लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिवियर जुरां पार्ट टाइम सैनिटरी अटेंडेंट खोजता और चाहेला एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करे के https://lgsc.govmu.org। और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 28 मई 2026। साथ में म्यूनिसिपल टाउन काउंसिल ऑफ वाकवा फिनिक्स एगो लाइब्रेरी ऑक्सिलियरी जोन फॉर्मली लाइब्रेरी अटेंडेंट रहल खोजता। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://lgsc.govmu.org और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 28 मई 2000

0: 26 प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में यूनियन पर्क के रिज्यूमे एगो हाउसमेट खोजल जाता आपकी कासों का रिखातेर EIC रोजबेल टेलीफोनिक करिया इन नंबर पर 617-48-33 कोंगोमा के रिजों खातिर एगो हाउसमेट खोजल जाता जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे और वो आपकी कासों का रिखातेर चाहिला फोन करे के EIC गुडलैंड्स के नंबर पर
1: 282-59-17 Note 282-59-18
0: और पेटी आफ्रिक रिजों में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉई के खोज बाटे कैंडिडेट के चाहेला एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के हो जा होई के और हैंडीमैन वर्क गार्डनिंग और सिक्योरिटी ड्यूटीज जुन बाटे इनकर बेसिक स्किल्स चाहेला होई के एप्लीकेशन करे खातिर EIC गुडलैंड्स टेलीफोनिक करिया 282-59-17 नत 282-59-18 ता ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाय नू लावेनिया
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस
3: स्पोर्ट्स न्यूज कॉल्डिन का प्यार नमस्कार स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है विला के बाद अब पैलेस में भी यूरोपियन ग्लोरी क्रिस्टल पैलेस के लिए पहली यूरोपियन ट्रॉफी कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 से रायो वालेकानो को हराया सेकंड हाफ में जॉन फिलिप मातेता का गोल बॉस ओलिवर ग्लासनर के लिए इससे बेहतर फेयरवेल नहीं हो सकता था उसके साथ पैलेस ने FA कप कम्युनिटी शील्ड और कॉन्फ्रेंस लीग जीता इस जीत से क्रिस्टल पैलेस अगले सीजन यूरोपा लीग में खेलेगा कॉन्फ्रेंस लीग क्रिस्टल पैलेस के नाम यूरोपा लीग विला के नाम सबसे कीमती यूरोपियन ट्रॉफी यूरोपियन चैंपियंस लीग जिसमें आर्सेनल इंग्लैंड के लिए हैट्रिक पूरा करने आया है फाइनल इस शनिवार को है 8 बजे इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में कल जमैका ने इंडिया को 2-0 से हराया आज इजिप्ट का मुकाबला फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया से है रिपब्लिक आयरलैंड खेलेगा कतर के खिलाफ ट्रांसफर न्यूज न्यूकासल यूनाइटेड का एंटोनी गोर्डन जा रहा है बार्सिलोना में डील 70 मिलियन के करीब है उससे ज्यादा भी हो सकता है वर्ल्ड कप में जाने से पहले गोर्डन बार्सिलोना का खिलाड़ी हो जाएगा क्रिस्टल पैलेस के कॉन्फ्रेंस लीग जीतने में एडम वॉटन का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा उसी के शॉट पर गेंद रिबाउंड होकर मातेता के पास आया टोमास टुरेल ने वॉटन को इंग्लैंड के स्क्वाड में नहीं रखा इसको लेकर टोमास टुरेल के सिलेक्शन पर प्रश्न उठ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहली साइनिंग बहुत जल्द अटलांटा के ब्राजीलियन मिडफील्डर एडेसन के साथ समझौता लगभग तय हो गया है फाइनल हो गया है काजेमीरो का हमवतन एडेसन उसके स्थान पर आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के और दो मिडफील्ड टारगेट हैं ब्राइटन का कॉलोस बालेबा और वेस्टहम का मैथ्यूस फर्नांडेज एलियट एंडरसन के लिए अब मैनचेस्टर यूनाइटेड रेस में नहीं है सिटी ज्यादा पैसा देकर उसे साइन करने वाला है लिवरपूल का डिफेंडर स्कॉटलैंड का कप्तान एंडी रॉबर्टसन को साइन करने के लिए टोटनहम हॉटस्पर सबसे आगे हैं टेनिस फ्रेंच ओपन का पहला झटका वर्ल्ड नंबर 2 एलेना रिबाकीना सेकंड राउंड में हार गई लुलिया इस्तारोदुबसेवा के खिलाफ कल इगा श्वातेक वितोलिना जोकोविच बेरेव फिर डेमिनो सियेरा कास्पर रूड बेंसिच रुब्लेव जीत पाए आज यानिक सिनर का मुकाबला सेरुंडोलो से है सबालेंका खेलेगी जाकेरो के खिलाफ कोको गोफ वर्सेस शेरिफ क्रिकेट IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने फिर से अपना जलवा दिखाया केवल 15 साल का है वैभव पर बैटिंग का बादशाह बन गया है कल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीनेज सेंसेशन वैभव ने केवल 29 गेंदों में 93 रन की बौछार की 29 बॉल्स 93 रन्स इसमें 12 छक्के 12 सिक्सर्स रहे उसकी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स को भी नहीं छोड़ा 3 लगातार छक्के मार के पर क्रिस गेल के एक रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया फास्टेस्ट

आईपीएल सेंचुरी का, पर आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सर का रिकॉर्ड उसने अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी के इस शानदार परफॉर्मेंस के बल पर राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। अब राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा फाइनल में जाने के लिए, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इंतजार कर रहा है। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। क्रिस्टल पैलेस ने जीत लिया यूरोप में कॉन्फ्रेंस लीग। अब हैट्रिक पूरा करने के लिए आर्सेनल है, आर्सेनल जो सैटरडे को खेलेगा उसका मुकाबला है पारी सैन जर्मेन से। और क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी लाजवाब खिलाड़ी, लाजवाब परफॉर्मेंस। नमस्कार, आप सभी लोग अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, समय 7:17 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति। ये विज्ञप्ति है फ्लिकॉन फ्लाक के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिसमें है पासादी नाला विलाज, अनारी होटल, कोस्टल रोड और फ्लिकॉन फ्लाक पुलिस स्टेशन में आज गुरुवार 28 मई को सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस की लहरों पर सुबह का नजराना कार्यक्रम सुने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, जहां कहीं भी से भी हमारा साथ दे रहे हैं। बस आशा करते हैं कि आज का ये दिन बहुत ही मज़ेदार रहेगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और मधुर गीतों का आनंद उठाते हैं। पर बेशक आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करेंगे चिंतन के साथ। इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन, आइए उनका स्वागत करते हैं।
3: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: यदि आप पैसे का उपयोग करना जानते हैं तो वह आपका दास है, परंतु यदि आप उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं तो वह आपका स्वामी है।

0: बम नाचे किशोर कुमार बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम
1: रेडियो मॉरिशस झलकियां
2: झलकियां
3: रेडियो मॉरिशस
2: सात बजकर 25 मिनट। जी हाँ, गुरुवार का दिन है और हमें मौका मिला है आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ बढ़ते हैं और आपको ये भी बताते चले कि आज सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम्स रखे गए हैं आपके लिए। आपको याद दिलाते चले, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि आज एक खास दिन है जहाँ पर मुसलमान समुदाय लोग अपना पर्व मना रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आपको ये भी बताते चले अभी से।

लेकर बिल्कुल 8 बजे तक सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ, उससे पहले बिल्कुल 7:50 पर आप सुन पाएंगे किरण जानकी को हमारी धरोहर कार्यक्रम में। 8 बजे भोजपुरी समाचारों के बाद हम जुड़ेंगे भक्ति धारा कार्यक्रम में ठीक 8 बजे से 9 बजे के बीच। 9 बजे समाचारों के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम होगा नीतू शाह की प्रस्तुति में, और ये चलेगा 10 बजे तक। आपको ये भी याद दिला दें कि 9 बजे से 10 बजे के बीच ये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ना केवल रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पाएंगे, पर साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर भी आप इसे देख पाएंगे और फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। साथ ही साथ इसी कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 से 4 बजे के अंतर्गत रेडियो मनोरंजन पर। 10 बजे के समाचारों के बाद आपका साथ देंगी अभिनाज, और ये होगा ईद उल अदा पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम जो चलेगा उर्दू भाषा में दिन के 12 बजे तक। 12 बजे सौंदर्य लहरी ये कार्यक्रम लेकर आएंगी गिरशालिनी। 12:30 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम सुंदरम की प्रस्तुति में। 1:30 बजे मराठी गीतों का कार्यक्रम चलेगा प्रीति की प्रस्तुति में। दोपहर के 1:45 बजे से, माफ़ कीजिएगा, दोपहर के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच चलेगा मैंडरीन का कार्यक्रम जो होगा जिनकी प्रस्तुति में। दोपहर के 2:30 बजे गुजराती गीतों का कार्यक्रम अमिता की प्रस्तुति में, और 2:45 बजे, जी हाँ गुरुवार का दिन है याद रखिएगा, 2:45 बजे से लेकर 4:00 बजे के बीच चलेगा आपकी पसंद कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगी सुमिता, और 4:00 बजे से लेकर 5:00 बजे के अंतर्गत भक्ति सागर कार्यक्रम उन्हीं की प्रस्तुति में आधारित रहेगा जिसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे डॉक्टर शांति मुहाबिया को पीयूष धारा कार्यक्रम में। 5:00 बजे से 6:00 बजे के बीच सदाबहार गीत जिसे प्रस्तुत करेंगी पूनम। 6:00 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में, पुनः कार्यक्रमों का गुलदस्ता सजाया जाएगा 6:30 बजे यानी समाचारों के समाप्ति पर, जिसकी शुरुआत होगी मैंडरीन कार्यक्रम के साथ। इसे प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7:00 बजे युवरासन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे वर्षा प्रस्तुत करेंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी शिरीष रामा द्वारा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम भक्ति भई भेंट में आपका साथ देंगी देवीना। 8:40 पर समीर की पेशकश में होगा महफिल शब उर्दू भाषा का ये कार्यक्रम, और 9:00 बजे तक ये चलेगा। बिल्कुल 9 बजे से लेकर 11 बजे तक भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगी किरण, और 11:00 बजे से 12:00 बजे तक सुनहरे पल इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे गिनीशा को। 12:00 बजे से लेकर कल सुबह 6:00 बजे तक ओवरनाइट प्लेलिस्ट जिसे सजाएंगी हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के सभी कार्यक्रमों की। फिलहाल सुबह का नजराना कार्यक्रम, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 7:30 होने जा रहे हैं। पुराने गीतों का ये सफर हम सजा रहे हैं, तो चलिए शमशाद बेगम की आवाज में रखा हुआ ये गीत एंजॉय करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस 55 से लिया हुआ।

सुबह का नजराना कार्यक्रम शमशाद बेगम का ये बहुत ही प्यारा सान सुना सा गीत 1955 के दौर का गाना। भाई कहते हैं ना, रिश्तों को जोड़ना एक कला है, पर उस रिश्तों को निभाना एक साधना के समान है। आसान नहीं होता, रिश्ते जुड़ तो जाते हैं पर उसे निभाते बहुत कम लोग हैं। और आज के समय में रिश्ते जुड़ते जरूर हैं पर केवल मतलब के लिए। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। सही कहा ना? चलिए 7:33 और वैसे इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं ईद उल अदा मना रहे हैं, तो बस आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। गीतों के इस सफर में इस गीत को हम खास आपके नाम करते हैं। फिल्म है मयूर पंख और लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज़। 1954 के दौर का गाना है पर बहुत ही प्यारा सा गाना। आपके जीवन में भी खुशियाँ बस यूं ही जगमगाती रहें।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: भाई अजनबी सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ों, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी है बहुत मजेदार। भाई अगर खुशियां ही खुशियां हो, कोई गम ही ना हो, तो जिंदगी बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये उतार चढ़ाव ही जिंदगी को और भी लाजवाब और भी मजेदार बनाते हैं। तो चलिए हंसी खुशी आंसू गम ये सारे हैं अपने ही हमदम, और इसी को गले लगाते हुए आज के जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नौशेरवाने दिल का ये गीत लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा।

चलिए 7:42 वैसे 7:50 पर हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर के सेगमेंट के साथ। बिल्कुल आज का ये कार्यक्रम बहुत ही छोटा है, इसीलिए बहुत लंबी बातें ना करते हुए आप सभी के नामों को ज़रूर जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारे साथ माला जगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पिचित खत से कहती हैं आज उनके भाई के बेटे का जन्मदिन है, बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ धीरज तेंगाओ को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, जो रहते हैं प्लेन दे पापाई, उनकी पुपू माला जगी की ओर से और सभी जगी परिवार की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। यहाँ श्यामा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्यामा रघुनंदन गोंगुब से, नुवेलफोंस से गायत्री जी, काटोबोन से माला सुमारू जी, नुवेलफोंस से ही गीता बाई भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गोंगुब से हैं सुनीता जी, हाईलैंड से है उषा जी, ग्रांड रिवर साउथ ईस्ट से शीला जी, बुआशेरी से है लीला जी और गाँव बुआ से लीलो जी। लीलो जी इस वक्त खेत में है अपनी प्यारी सखी गीता के साथ, मुस्कुराते हुए काम कर रही है, कहती है मौसम लाजवाब है। चलिए इस लाजवाब मौसम में आपके प्यार प्यारी सी मुस्कुराहट जिंदगी को और भी हसीन बना दे। वाकवा से नलिनी जोखन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और यहाँ पर कॉटेज से आशा जानू सभी को मातृ दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हैं। नीता खेदनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सेंट जूलिया विलाज से, बुद्धदो आमलेट से विश्वानी जी भी हम अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, भाई है प्रेमनाथ, बहुत उनकी भाभी हैं सुबिता, इंदिरा, रीटा और शारदा के साथ। नौत्रदाम से रेहाना जी भी बड़ी खुश हैं, आज ईद मना रही हैं अपनों के साथ और गीतों को सुनते हुए उनका मूड और भी ज़्यादा खिल उठा है। बस आपकी झोली में खुशियाँ हमेशा यूं ही बरसती रहें और सभी की झोली खुशियों से भरी हुई रहे। हमारी ओर से आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। और गाँव बुआ से शिवरानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपने सभी परिवार के साथ, सभी बच्चों के साथ, सोनाही परिवार साथ जुड़ चुका है। फ्लिक ऑन फ्लाक से अनीता जी भी हमारा साथ दे रही हैं और मानती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नुवेलफोंस से, आज उनकी प्यारी नातिन वितिशा का जन्मदिन है। दादी पुपू की ओर से वितिशा आपको बहुत सारा प्यार, दादा है आनंद, पापा है गावीश, मामा अनुषा, साथ है भाई घीतांशु, बहन है गिरिशा, भव्या और पुष्कल की ओर से ढेर सारा प्यार। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, इंदिरा लॉटन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और लंदन से सुंदरपाल सिंह और उनका परिवार जुड़ चुका है, सरिता जी काठबोन से हैं, कहती है बीमार हूँ पर अच्छी हूँ। चलिए ये गीतों का डोज आपको मिलता रहे और आप स्वस्थ रहें, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। न्यू ग्रोव से मीला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सभी परिवार के साथ। और जी हाँ, आने वाले दिनों में हम मनाने वाले हैं मातृ दिवस, मदर्स डे, तो बस आपके लिए कुछ हसीन गीतों का गुलदस्ता हम सजा रहे हैं और ये प्यारा सा बहुत ही मशहूर सा गीत चाचा भतीजा फिल्म से लिया गया और बिल्कुल शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। और इस गीत में भी यही कुछ कहा है कि कहते हैं ना कि माँ भले अपने बच्चों को बहुत डांटे, बहुत फटकारे, कई बार माँ बहुत ज़्यादा सख्त होती है, पर वो सख्ती इसीलिए दिखाती है क्योंकि नहीं चाहती कि उसके बच्चे आगे चलकर कोई ठोकर खाए। तो अगर आपकी मम्मी भी सख्त है तो भाई उनको प्यार करे, पप्पियाँ झप्पियाँ दे। आपको खुश होना चाहिए कि आपको मिली है एक बहुत ही सख्त माँ जो आपको ज़िंदगी के हर थपेड़ों के लिए तैयार कर रही है अभी से। तो चलिए ये गाना सभी मम्मियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी बच्चों के लिए, बस हम तो यही दुआ करते हैं कि उनकी माँ का साया कभी उनसे ना हटे।

0: भाई जब माँ बातें सुनाती है तो बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं, पर यही माता जब दूर चली जाती है तब यही सारी बातें बड़ी याद आती हैं। तो बस आने वाले दिनों में मातृ दिवस मनाने वाले हैं, माँ के साथ जितना हो सके समय बिताइए, वो प्यार की भूखी है, गिफ्ट्स की भूखी नहीं। और इसी के साथ चलिए, जितनी भी माताएं आज हमारे साथ जुड़ी हैं, यहाँ शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वाकवा से, वीना जी भी हमारा साथ दे रही हैं, माधुरी जी ने अपना नाम नहीं सुना, आपको एक बार फिर से आपका नाम लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही प्यार से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हम कार्यक्रम के माध्यम से गले लगाते हैं और आपको मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को बस यहीं पर हम आखिरी सेगमेंट के साथ जोड़ेंगे। जी हाँ, हमारी धरोहर कार्यक्रम जहाँ पर हमारा साथ देंगी किरण जैन की, और भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी गीत को, इसी कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं इस सेगमेंट के साथ।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। ई सप्ताह देखत है जा कि मातृ दिवस पर आधारित बा। ई सप्ताहांत के मातृ दिवस मनावब जा, तो चला आज देखब जा मातृ दिवस के इतिहास कैसे शुरू होल। 31 मई के मॉरिशस में मातृ दिवस मनावल जाए। मातृ दिवस जेके फितमामा बोलल जाला, बरसों से हमनी के देश में मई महीना के अंतिम दिमास के दिन ई जोन परब्बा हमनी ओके मनाए रास। तो चला देखे कि फितमामा के इतिहास कब और कहाँ से शुरू होल। माँ के गहरा संबंध के सम्मानित करे खातिर और समाज में माँ के योगदान के श्रद्धांजलि दे खातिर मातृ दिवस दुनिया के अनेक देश में मनावल जाला। कहूँ मार्च में तो कहूँ मई महीना में, कोनो देश में सदियों से ई दिन मनैले आवत हवन जा। तो उधर अमेरिका में 20वीं सदी से ई मनाई के शुरू होल बा। आना जाविस पहला हला मातृ दिवस के आयोजन कर ले रहा एगो प्रार्थना सभा के साथ वेस्ट वर्जीनिया के गिरजाघर में। एन जार्विस एगो एक्टिविस्ट रलन और अमेरिकी शीत युद्ध में उघायल होल सैनिक लोग के सेवा करे खातिर ई दिन के घोषणा कर ले रहा। इस सैनिक लोग के नाम शांति खातिर उ मातृ दिवस के आयोजन करलन। हियाँ तक कि आम छुट्टी भी घोषित करवैलन उ दिन, और उ अभियान के 40 दिन बाद 1870 में मातृ दिवस आम छुट्टी के दिन घोषित करल गल अमेरिका में। और हर राष्ट्र के माँ से मांग करल गल कि उ शांति खातिर प्रार्थना करियन जा, ताकि कोई भी बेटा माँ से हमेशा खातिर दूर नहीं होई। सैनिक लोग के माँ खातिर विशेष रूप से ई दिन समर्पित करल गल। फिर ई विचार से कि हर माँ आखिर माँ ही है, और फिर माँ जे हमनी के जीवन दिले बा, जे हमनी के जीवन सवारे में अपन जीवन बिता देवेला, ओकर नाम समर्पित करल गल ई मातृ दिवस। उ जमाना में माँ से मिले के प्रथा ई स्थापित करल गल ई दिन पर, कहे कि जानेला दूसर देश में लड़का लोग माँ से दूर जालंजा काम करे। सैनिक लोग के बाद ऐसन कितने व्यक्ति बा जे लोग माँ से दूर रह के अपन जीवन बितावेलन जा, लेकिन ई एगो दिन घोषित करल गल जब सब कोई अपन माँ से मिलियन जा। और धीरे धीरे देखत है जा कि ई जोन परब बा उ कमर्शलाइज हो लगल। आज जब मातृ दिवस के बात करबा तो सबसे आगे तोहफा के बात चलेला, माँ के चाहे बेहतर से बेहतरीन तोहफा देवे के। और फिर मातृ दिवस के बाद एक सप्ताह बाद पिता के सम्मानित करे खातिर भी फादर्स डे मनावे के प्रथा शुरू होल, कहे कि एगो लड़का के जीवन में माँ के साथ साथ पिता के भी उतना ही भागीदारी है जितना कि माँ के है। मातृ दिवस पर काल हमनी ई चर्चा जारी रखब जा। आज खातिर इतना।

0: અહીં ધન્યવાદ. નમસ્તે.
1: तो चला इसी के साथ किरण जानकी के बहुत बहुत धन्यवाद और कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में रखल हाई गीत जोड़ब जा आज के हाई कार्यक्रम के अंत में. चलिए इसी के साथ अब हमारी मुलाकात होगी भक्ति धारा कार्यक्रम में 8 बजे के समाचारों के बाद.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: खजर के हाथ खजरबा। भोजपुरी में समाचार सुने जा। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी बोलेलन की मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव खातिर इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाए से राजनीतिक संप्रदायवाद कमती हो सकेला। उनकर अनुसार ई मंडल में सांसद, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष और रोड्रिक्स की चीफ कमिश्नर शामिल हो सकी। ओ फ्रांस नियन दू चरण होला चुनाव के भी समर्थन करेलन ताकि राष्ट्रपति के 50% से जस्ती मत मिले सकी। वहीं ओ देश के राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता के अब भी बड़का चुनौती बतैलन। शब्द हमर सोच से आगे निकल गल रहल, यानी हम अपन भावना में बह के ऊ बोल दिली जे हमर इरादा में नहीं रहल। संसद में मंगल के सांसद जुआना बेहौशे संगे होल तीखा बहस के बाद श्रम मंत्री रिजाउद्दीन फेसबुक पर ई बात बोलन। संसदीय प्रश्नकाल के दौरान FMP के सदस्य मंत्री के माँ के देखभाल खातिर रखल गल एगो बांग्लादेशी महिला काम करवा के मामला उठैलन और ऊ इस संकेत दिले रहलन कि ऊ कथित तौर पर अवैध रूप

0: से बंधक बना के रखल कर रहल। रिजाउद्दीन ई आरोप के सिरे से खारिज कर देवलगर और आपा खोते हुए विशेष रूप से बोलन मुपेन और जिसों कुलों। आज फजीर के प्रकाशित अपन संदेश में मंत्री अपन माँ पर होल हमला के जिक्र करलन जो उनकर अनुसार घिनौना रहल बकीर कर बावजूद उ कुलों शब्द के इस्तेमाल करे परी खेद व्यक्त करलन। याद दिलावर दे जाला की संसदीय कार्य के दौरान स्पीकर व्यवस्था बनायलन जकर बाद रिजाउद्दीन अपन कहल होल शब्द की वापस ले ली रहलन। एमएफडीसी के सीईओ की विंगति के उद्देश्य मॉरिशस के हिंद महासागर के गो प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाए के है। इही लक्ष्य के तहत उमई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेके अफ्रीका अमेरिका भारत और यूरोप के कयन फिल्म पेशेवर और निवेशक से रणनीतिक बैठक करलन। देश के जलाशय में पानी के स्तर चिंता के विषय बनल बाटे। 25 मई ले कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज करल गल बा जे पिछला बरिस की तुलना में 10% से जस्ती कमती बाटे। स्थिति से निपटाए खातिर अधिकारी लोग पानी के आपूर्ति बनाए रखे हेतु कईन कदम उठावत हवन। सब समाज सुरक्षा मंत्री लाभार्थी लोग के फाइल के डिजिटलाइजेशन के मंत्रालय की सेवा के आधुनिकीकरण की दिशा में एगो बड़का कदम बतैलन। रोजहिल कार्यालय में शुरू करल गल ई परियोजना के तहत आवत 18 महीना में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेज डिजिटल करल जाए। आज 10 जिल हिजा के मॉरिशस के मुसलमान कौम ईद उल अदा मनावत हवन। स ई रोज हसरत इब्राहिम के सुन्नत के हवाले से बड़का अहमियत के हामिल है। आज के दिन रिश्तेदार और करीबी दोस्त संगे गुजारल जाला। और दूसर देश के खबर में अमरीकी सेना ईरान पर ही नवा हमला कर ले बाटे जिमें रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एगो सैन्य ठिकाना के निशाना बनावल कर बाटी। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

आवाजा मरनी की खबर सुने जा फ्रांस में 3 कोरी 15 बरिस के सुसन कैंसों के श्री महेश दुकारन जे आगे मुसलमो कुंजु पलेंडे पपाई रहलत रलंजा उगजर कलहवन करमाते आज दिन की 1:00 फ्रांस से उठा के जोंशोल दे विल्टानेज के शमशान भूमि दी जावल जाए La chapelle aux dents de Mora, petite rivière, mais Tin Kori Charbariseke, 64 ans, qui est le métier au Mavati Talou, Pedachin Ambudhan, Arjé Mitanam, c'est Jesse Janet de Jatra Lenja Guzar Galhoan, au cœur de Mati Aj Pajirki Nobachki Adha. La chapelle aux dents de Mora, petite rivière, c'est au Taki Ballon, Sulferino number 5, qui est Shumshan Bhumi de Javal Jai. Boundary Road, Saint-Patrick, 4 Bonnes, Métin Kori, Chobariske, 66 ans, que Shri Siulal Sibalag, Jisilal Nam, si Jasti Janet Jatra Lanjao Guzar Galhawan, Ukar Mati, Aj Fajir Ki Nobaj Ke Adha, Ukar Beta, Rishi Sibalag Ke Ghari, Boundary Road, Saint-Patrick, 4 Bonnes, Se Utha Ke Gandhi Palma, Ke Shumshan Bhumi Le Javal Jai. Arya Mandir Road, Petit Rafri, Métin Kori, 17 Bariske, 77 ans, que Shri Mati Kusmuti Ramisar, Jekum Kumwa Nam Se, Jasti Janet Jatra Lanjao Guzar Galhawan, Karmati Aj Fajir Ki 10 Baje Ukar Khari, Arya Mandir Road, Petit Rafri Se Utha Ke Momaskal, Petit Rafri Ki Shumshan Bhumi Le Javal Jai. Ra Road, Nouvelle France, Met 4 Kori, 3 Bariske, 83 ans, que Shri Radashur Fulmun, Je Prem Nam Se, Jasti Janet Jatra Lanjao Guzar Galhawan, Karmati Aj Din Ke 1:00 Adha Ukar Beta, Ramesh Fulmun Ke Ghare, Ra Road, Nouvelle France Se Utha Ke Marjani Rose Bel Ke Shumshan Bhumi Le Javal Jai. Gina Street, La Femme Bambou, Met 3 Kori, 4 Bariske, 64 ans, que Shri Mati Shanta Bai Bihari, Pedashi Nam Leximo, RJ Mila Nam Se Jasti Janet Jatra Lanjao Guzar Galhawan Karmati Aj Din Ke 1:00 Ukar Khari Gina Street La Femme Bambou Se Utha Ke Monta Saint Pierre Bambou Ke Shumshan Bhumi Le Javal Jai. Ikup Borik Lane Musselman Saint André Me 4 Kori Dubariske 82 ans Ke Shrimati Santi Bruj Mohan Pedaishi Nam Sali Karji Sadhu Minis Je Nam Se Jasti Janet Jatra Lanjao Guzar Galhawan Karmati Aj Din Ke 1:00 Ukar Beta Amar Dash ब्रजमोहन के घरे इकुप बोरिक लेन मुसलमान सेंट एंड्रे से उठा के बुआ मौशंते रूज के शमशान भूमि ले जावल जाए नॉर्दर्न बाउंड्री कटोबोन में दुकरी बरिस के कहां तक के श्री प्रीत गुरुदयाल जी आकाश नाम से जस्ती जाने के छात्र लंचाओ गुजर

कल हवन कर्माटी आज फजेर के 10 बजे कर्मा माउती गुरुदयाल के घरे नोवन बाउंडरी काठोबोन से उठा के बेतु कुदगत के शमशान भूमि ले चावल जाए आलिशा कबू में 3 करोड़ बरिस के स्वसंतों के श्री सादेव जीतन जी कल नाम से जस्ते जानते जात्रा जाओ गुजर कल हवन ओकरमाटी आज फजर के 10 बजे ओकर भाई सुचिल जीतन के घरे आलिशा को बॉम्बू से उठा के मोताए सैंपिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले चावल जाए।

मेडिदिन लेन सैंपल फिनिक्स में दुकोरी 17 बरिस के सकन से तौके श्री मनोज कुमार मेडिदिन जेको को नाम से जस्ते जाने छात्र लन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज फजीर के 10 बजे ओकर भाई रितिश मेडिदिन के घरे मेडिदिन लेन सैंपल फिनिक्स से उठा के आले भाई औका स्थल के शमशान भूमि ले चावल जाए शिवाला रोड रेन्यो मोहल पे से राफ में तीन कोरी 10 बरिस के 70 के श्री धनेश्वर राम कलावन जी देवानंद नाम से जस्ते जानते छात्र लन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 1 बजे कर घरे शिवाला रोड होने मोहल पे सिकाफे से उठा के बेल मौके शमशान भूमि ले जावल जाए नंबर 12 से काफिन निसालिन पोटली में 4 कोरी 3 बरिस के कथों में 300 के श्रीमती लक्ष्मी देवी विरापेन जे आका देवी नाम से जस्ते जानते जात्र लन जाओ गुजर गल हवन कर माटी आज दिन के 3 बजे कर घरे सिकाफिन निसालिन पोटली से उठा के निसालिन के शमशान भूमि ले जावल जाए काना अवेन्यू 4 कोको में 4 कोरी बरिस के 80 के श्री हरि प्रसाद राम हित जे महाराज तय नाम से जस्ते जानते जात्र लन जाओ गुजर गल हवन कर माटी आज दिन के 2 बजे कर बेटा राम हित जयदत्त के घरे काना अवेन्यू 4 कोको से उठा के बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 3 कोरी 4 बरिस के 64 के श्रीमती गोइंदामा नायडू रामासोमी पैदाइशी नाम गोसामाल आर जी देवी रामासोमी नाम से जस्ती जानते जात्र लन जाओ गुजर कर हवन ओकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा ओकर पति श्री रोमी रामासोमी के घरे ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठा के प्लान मानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए पदाहत लेन फ्लाक में 3 कोरी 11 बरिस के 71 के श्रीमती सरस्वती आपादू पैदाइशी नाम तिचो गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर बेटा नीरज आपादू के घरे परारत रेन फ्लक से उठा के बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए नंबर 23 एवेन्यू पाव 4 बोन में 3 कोरी 7 बरिस के 67 के श्री राज सुखदेव जे राज नाम से जस्ती जानते छात्र रन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर बेटा ऋक्षिवंश सुखदेव के घरे नंबर 23 एवेन्यू पाव 4 बोन से उठा के फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए मुस्की रोड रोजबेल में 2 कोरी 7 बरिस के कहन से तौके श्री कृष्णा उचित जे बेबे नाम से जस्ती जानते छात्र लन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज फजेर के 10 बजे ओकर भाई विक्रम उचित के घरे मुस्की रोड रोजबेल से उठा के महेशानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए डॉक्टर मनीराल फोबाक रोड फोजुसाक में 3 कोरी 16 बरिस के 67 के श्री नारायण जमनुदू जे नारायण नाम से जस्ती जानते छात्र लन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 12 बजे ओकर घरे डॉक्टर मनीलाल फोबाक रोड फोन जुसाक से उठा के थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए बैंक रोड गुडलैंड में 4 कोरी 7 बरिस के 87 के श्रीमती मनीत्यामन विरासु पैदाइशी नाम एंकुत सामी आर जे रंभा नाम से जस्ते जानते छात्र लन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज फजर के 10 बजे ओकर घरे बैंक रोड गुडलैंड से उठा के बेलमो के शमशान भूमि ले जावल जाए सुल्फेरिनो नंबर 2 वाकुआ में 3 कोरी 17 बरिस के 67 के श्री माधो राधा जे छोटे नाम से जस्ते जानते छात्र लन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर घरे सुल्फेरिनो नंबर 2 वाकुआ से उठा के बालों सुल्फेरिनो नंबर 5 के शमशान भूमि ले जावल जाए कालीमाय रोड दीपिने में 1 कोरी 8 बरिस के वैचितों के श्री लीलेश्वर आमात्या श्री लीलेश्वर आमात्या जे कौशिक नाम से जस्ती जानते छात्र लन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर पिता श्री परमेश्वर आमात्या के घरे कालीमाय रोड दीपिने से उठा के पितों के शमशान भूमि ले जावल जाए शोक में डूबल इस सब परिवारों के प्रति हमने संवेदना प्रकट करते हैं जा

भक्ति धारा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8:20 हो चुके हैं। पुनः आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। करजोड़ अभिवादन स्वीकार करें। मैं एक बार आपका साथ दे रही है रत्ना, और आप सभी को ज्ञात है कि इस वक्त हम अधिक मास की पूजा कर रहे हैं। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, जो हर 4 वर्ष यानी 3 या 3.5 वर्ष के पश्चात आते हैं, और इस मास में हम अधिकतर भगवान पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और भगवान विष्णु की आराधना करने मात्र से हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। और इस मास में अधिकतर हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और ये मास बहुत ही पवित्र मास माना गया है। मलमास होने के अतिरिक्त इस मास में जो प्रार्थना करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो भगवान विष्णु का नाम जपन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ आइए श्रवण करते हैं श्री विष्णु चालीसा।

भक्ति धारा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं। मन में केवल एक श्रद्धा, एक भक्ति का दिया जलाते ही हमें जीवन के हर अंधकार में रास्ता नजर आता है। जीवन के थपेड़ों में कई बार हमें केवल मौन और मन को शांत करना ही आवश्यक हो जाता है। और जब जीवन में कुछ ना सूझे तो भक्ति मार्ग अपनाइए। भक्ति मार्ग से बड़ा मार्ग और कोई नहीं।

हरि का नाम लेते ही हमारे सारे कष्ट वे हर लेते हैं। हरि में अगर है प्रेम और विश्वास, जीवन में सदा ही खुशियों का रहता है वास।

तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देने का समय हो चला है। आप सभी ने प्रेम और भक्ति भाव से साथ दिया। हरि सभी का कल्याण करे, सभी के कष्ट दूर हो, दुख दूर हो। आराधिक मास का यह पावन मास सभी के लिए फलदायी रहे, मंगलमय रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ इस अंतिम भजन का रसास्वादन ले और हमें दे अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे है। देश विदेश की खबरें आपसे भी धीमा। नमस्कार।
2: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का भी समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। शब्द मेरी सोच से आगे निकल गए थे, यानी मैंने अपनी भावनाओं में बहकर वो कह दिया जो मेरा इरादा नहीं था। संसद में मंगलवार को सांसद जुआना बेहोंशे के साथ हुई तीखी बहस के बाद श्रम मंत्री रेजा उद्दीन ने फेसबुक पर ये बात कही। संसदीय प्रश्नकाल के दौरान एफएमपी की सदस्य ने मंत्री की मां की देखभाल के लिए रखी गई एक बांग्लादेशी महिला कर्मचारी का मामला उठाया था और ये संकेत दिया था कि उसे कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। रिजाउद्दीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। आज सुबह तड़के प्रकाशित अपने संदेश में मंत्री ने अपनी मां पर हुए हमलों का जिक्र किया जो उनके अनुसार घिनौने थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोलों शब्द का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त किया। MFDC के CEO के विंगति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में

0: में 10% से अधिक कम है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। आज 10 ज़िलहिज्जा को मौशस का मुस्लिम कौम ईद उल अज़हा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें रणनीतिक बंदर का शहर बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगाने से क्या होगा। जब घर के बेटा बाप को मार दिया तो जब घर के बेटा बाप को मार दिया तो अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा। अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब घर की आटा गीला हो गई तो अब परथन

0: सबको एक नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत पता। जितना जना हमने के देखत होवन सुनत होवन बस ये कार्यक्रम में आप सबके स्वागत बाटे। हर बीफे के दिन होला जब कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट के जो अधिकारी आवेलन तो हर जो दुआ बातें कैसे चाहेला जब एगो खरीदारी करत हो कौन कौन चीज चाहेला दिमाग में रखे के तुहर जो दुआ बातें तुहर जो हक बातें और खरीदारी जब करत हो ओकर बाद भी जोन चीज रहेला जोन जोन तयम रहेला उस सब के बारे में चाहेला जाने के। अभी हमने सब जानी लाजा कि दिमाग के हमने मातृ दिवस फित मामा मनाव स त ढेर जना अभी शॉपिंग मॉल्स जात होवन बुटीक जात होवन मागाजा जात होवन खरीदारी करियन मामा खातिर पापा खातिर। तो आज यही पर हमने तनि सुन चर्चा करब ओकर बाद में जो वारंटी कौन ची है बाद में एकर बारे में हमने सब जानब जा। ई पर चर्चा करे होला हमने संगे होवन जा हमने के दोनों मेहमान कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स आप हवा श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल और श्रीमान रणवीर सिंह मीतू आप दोनों के स्वागत नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हमर जो सबसे पहला प्रश्न है जब हमने कंज्यूमर के बात करी राजा काहे कि हमने सब कंज्यूमर है जब हमने सब खरीदारी सब करी ला सब और अभी जो फित मामा होता है एगो फेस्टिव मूड चलल बाटे तो जब खरीदारी करत है ऐसा कौन चीज चाहेला सोच समझ के खरीदारी करे के।
1: खरीदारी करते समय सबसे पहला चीज चला प्री देखे के जब जाला सब बुटीक में सुपरमार्केट में मॉल सब तो एगो बिजे है सब कोई के एगो बिजे है बिजे के आधार पर आदमी लोग खरीदारी करे लंग सब तो खरीदारी समय करते चाहला देखे के चीजवा के दाम कैसे बाते और एक के कुछ नहीं जाके जैसे बोलिए सर इंस्टेंटली किन ले के चाहला दो तीन गो मगाजा में जाए के फ्रीवा चेके करे के जब देख फ्रीवा एगो मगाजा में जस्ती ज्यादा बा हो मगाजा में थोड़ा कमती बा तब अपन बिजे के आधार से अपन खरीदारी करिए जाके कंपेयर करिए देखिए कौन कंडीशन है मगाजा सकेला फ्रीवा थोड़ा बा बा वैसे मौका कंडीशन ढेर अच्छा नहीं बा तो जी हो मगाजा में फ्रीवा थोड़ा सन ज्यादा बा वैसे मौका ऑफ द सेल सर्विस

0: et så kallad dusa condition just ज्यादा तब तू टोल के देखिया कौन सा कौन खरीदारी में जस्ती फायदा वा
1: इस सच्चे बात बोले हुआ जयश्री जी की जब खरीदारी हमनी करे जात है सा का कि काय ढेर जना जब खरीदारी शॉपिंग करे जालन सा आगे हमनी के मामा ला दादा लगे कौन चिरहल कौन ही रहल उ सब में लिखल जात रहल हाँ हम के ई चाहिला हव चाहिला अब तो हमने जाइला सा जो चीज खरीदे के बाद किने के बाद वो नहीं दूसर चीज लेके हमने आयला सा तो एगो निमन चीज बोले हुआ कि फ्री जोन बातें हबी जोन बातें जो फेस्टिव सीजन आवेला त सेल्स लगेला तो ढेर जाना जैसे बोलत हुआ फ्री चाहेला दामवा जोन बातें चाहेला निमन से देखे के कहाँ तोहर सैटिस्फैक्शन बातें कहाँ तोहर फायदा बातें अब हैजा परी जब हमने फ्री के बात करी ला जा तो कबो कबो इहू प्रॉब्लम देख ली हैजा कोनो कोनो फ्री ऑफिशे होला सेल्स बोले जाला डिस्काउंट होगा बातें जब पेमा कर था तो फ्रीवा वो आगे हुए जैसे रहल
0: हाँ इस ये एग्जाम्पल ढेर सुपर मॉर्शे लाबुची को सब मैं देखिला सर जब कोनो एगो फ्री रेयो में आफिशे बातें जब जाला सर लाकेस पर पे करे तब फ्रीवा जस्ती महंगा बातें ये एगो ऑफेंस हाते
1: अच्छा
0: एगो ऑफेंस है जब ग्राहक लोग आवे लंग सा कंप्लेंट करे हमें लगे तो जब जाए ला सा वेरिफिकेशन वो सब करी ला सा देखी ला सा सच्चे है प्रिवा ज्यादा बातें जो आफिक्स जैसे बोले सा जो लिखल बा हो जा तो एगो ऑफेंस है तब हमें लोग इंस्पेक्टर लोग जा लंग सा कॉन्ट्रावेंशन दे और ट्रेडर लोग के बोली लांसा बोली रेक्टिफाई करे के इस सब चीज़
1: एक वार्निंग कुछ और
0: हाँ वार्निंग उस सब होला जब कॉन्ट्रावेंशन हुए ता एगो वार्निंग जैसे है चाहे ला
1: अबाइड करे के जी तो हबी जितना जना हमने के देखा था हुआ सुना था हुआ बहुत बहुत धन्यवाद जे कुछ पूछे के बातें हमने के नंबर है 402-8085 तफरी के अलावा श्रीमान मीतू जी कौन सी चाहेला देखे कौन सी चाहेला जैसे कंसीडरेशन है वेके
2: जैसे फिर बोला को बीजे कर से आगे तब बीजेवा के आधार पर जब से गुलाफे कीने जैसे फिर बोला जो फ्री मोती हो बा किस में फ्री हुआ जैसे महंगा पे कर सा तो मैं कौन सा मारते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ये जान ही ना सा जब बीजे बोली जैसा जो चीज कीने अब जब सा हवा कीने अब सा
1: जी
2: जब हम के बीजे ने रहता एक गुजाफे कीने जब सा दस गुजाफे उठा के चला
1: जी
2: तब कैसे फ्रीवा चाहिए कब सर जब एगो एगो जब ढेर ज़्यादा किन नहीं ला लाकेस पास हो गया तब नहीं जल बस मैं फ्री जो लाकेस में तो याद नहीं रही तो खाद नहीं बोला सर प्रमोशन नहीं अभी कुछ होला वो बोला कैसे चाहिए करा अब एगो कैसे चाहिए करा घर ही गया जैसे देखा था जैसे पे बोल बा तब हम मिला कि सर वैसे वो कंप्लेन करे तब लॉकेट के दौरान कब जाप सर तब फिर बोल जब जाप सर तब फ्रीवा समझो कर तब सके सब बोले ऑफेंस नहीं बा हबी तब जीवन के आदमिया के ग्राहकों के बेरा आए के एगो एगो एगो एगो केस के रास लाकू आवे के देखे तब लाकू जैसे देख रहा था फिर अब फ्री के अलावा जैसे बोला कि एगो जाफे प्रमोशन में बा चला देखे कि तू देखा कौन आइटम के अब जब वो खरीदारी करो तो एगो फूड आइटम खान पान के वो लोग एक्सपायरी देखे कि आदमी लोग एलर्जी तेल से पहुंचे से जब लोग देखे कि कौन चीज लोग के बीजा बा जब प्रमोशन होला था इस वजह से सेल्स होला सब चीज़ यहाँ जाने के काहे होता
1: जी
2: काहे यहाँ इजाफे हुआ था नहीं वहाँ एगो इजाफे देख बा ए बो मौसू कल बा उठा के आने का घर अपने सेवी कल बा बोला वो जला तभी कहते बोला सा एगो बीजे करके जाना ना सब चीज़ तब मोटे होगा ना तो छा जाने के कैसे को बीजे कर सा हमने कितना पैसा मिला और कल पे सबसे डिपॉज करे तब हमने के सबसे लाफे जिम वाले जाए तब फ्री के अलावा हाई देखिला सा कौन फौज किना रहे सा कौन कौन बाजे कौन चीज किना तो सा हाई मुरली खान पान के जब फिर एक फिर दिन में आता अभी तब ढेर कोई लाइका लोग खुशी अपन माँ बाप कोई एक जगह इलेक्ट्रोमिनासे देख के इस बार पूताब देख के सो टेलीविजन तब चाहना जाने के जब फ्री के अलावा एक जगह किने जब मागाजे में तब फ्री वाली लिखा रही तब जे कास्ट ने भी कर लिया था तब उसके जगह डाले डाले के हाँ जब एच एस कैसे बा कितना लेटरी पे करी इसकी पे करी कितना मौसवाते में पे करी
1: सबकी पे करे कि नहीं
2: सबकी पे करे कि नहीं बस की ना लड़का लोग खुश पर माँ बाप ही उगा देखे फिर धीमे
1: हाँ
2: इस जमाने बाद इस फिर धीमे में देखे नेबर कब से कैसे दे तब जैसे देखे अब फौजीवा किनियन सा चलो के फिर से आता पूछा था कले के कौन सी है फौजीवा कुछ चला इसकी एगो स्मार्टफोन ओकर एगो बुजुर्ग सकी सेवी करे ऐसा किना सेवी करे सब अच्छा स्पीक करके तब किन जला अब गैला प्रॉब्लम हो गया एगो दूसरा फेस बहुत है फिर दे में आता सबको खुशी अपन पाओगे खुश करेंगे

0: but kuloti sa kinsa kine? Ile tumi na si ba? Si ba luga ba? Si ba? Nema kan pan ba?
1: Teachers ba?
0: Ta priwa sa group parive la fruita la fiche leke. Ne but kun komodite kinwa. Si ba super ba? Si me baza me magaze me. Ta ego komodite kime kai priwa kai pri dalala. Consumer rights, ego paella, paella, correct, okay, right information. Information on Janilla,
1: G.
0: Pri Janilla, Kun Produ Kinada, Top Oka and Halpe, Ugo decision like Kinikinai, double a right to choose. The Swazaki Han Produa Hayakini, Hamke needs Baila, Bonga Bizan Produa, Tapina Produa, Tap Hawaii, Prig Alava, has a different Charlie, G. No, this commander, this pre decator, Malikata, the same colleague will like the trois plastic
1: color,
0: G. Out of sales service when I put her. Non je go pas skin de là après votre ne banai
1: jee
0: sa gao sab sab dekhe ke
1: to habi baat kar le ho jo consumers rights ekar bare mein tan sun elaborate kara
2: consumer rights bole jala je jun jun chi grahak log ke jane ke chahela ego khareedari ke kine ke aage jaise ha right of right to information ta je go phoji jab kinat ho ta sab information la chahela jane ke jaise boli ra ego food item kinat ho ab aap ko to allergy ba jaise दूध से तो उसमें नहीं लिख रही allergen milk spark ये सब चीज तो तू किन लेबा अब जाके कंसुमे करबा तो दिक्कत पड़ जाए अब एक दूसर एग्जांपल देवत है जैसे इलेक्ट्रोमिनाजे सब कोई इलेक्ट्रोमिनाजे की नहीं ला इलेक्ट्रोमिनाजे में अब किनबा जैसे एगो फ्रिजिडेयर दू कहते फ्रिजिडेयर बेचाला हमें के मौसम एगो बलिसा नो फ्रॉस्ट और एगो जन में फ्रॉस्ट जन में ग्लास अब बहुत आदमी लोग नहीं जाने लंग सा जा लंग सा फ्रिजिडेयर नहीं पूछे लंग सा उबे नहीं सेल्स पर्सन लोग नहीं बतावेला तब एगो फ्रिजिडेयर जन ग्लासों करेला लेके चलेला घरे अब घरे आवत होता देखबा फ्रिजिडेयर में ढेर ग्लासों होता अब जाइबा मगाजा में एगो कंप्लेंट करबा बोलबा फ्रिजिडेयर वा नहीं अच्छा बा तब आदमी सेल्स पर्सन बोली नहीं नहीं फ्रिजिडेयर वा अच्छा बात है सेमो तू एगो ग्लासों बनाए होला फ्रिजिडेयर ले ला तो अब नहीं सकत हो सेवी करे ऐसे ढेर ढेर चीज बातें चाहेला पूछे के और वो लोगों के चाहेला बताए के ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे टेलीविजन किन बता टेलीविजन अब तक एक होंपला ता हुई ला जस्टी फ्राजिल बातें उमें एगो गारंटी फिर से बोली ला गारंटी देख बता बोले रंग सा लेखों पर गारंटी नहीं है तो चाहेला जाने के अब तू फ्रिजिडेयर किन ले नहीं टेलीविजन वहाँ किन दे अनला बोल वो बोला हाँ हाँ पाँच साल के गारंटी बा तो पाँच साल के गारंटी कौन चीज पर बा वो चाहेला जाने के अब अला फ्रिजिडेयर दो तीन दिन बाद देखबा फ्रिजिडेयर में क्रैक हो गल अब बोलबा मंगाजे गईला बोलला हाँ पाँच साल के गारंटी बा तब बोली नहीं नहीं गारंटी बा
3: चीज में बा ये प्रॉब्लम है सच्चे बात बोला था जयश्री जी का कि ढेर जना उन लोग कुछो ना कुछ धर लगा अभी फ्रिजिडेयर टेलीविजन की बात बोला था वह बोल देख हाँ दुगो बरिस तीन बरिस के गाँची बात है एक बरिस के बाद ही जो लिखा बात है वो फाटे लगल ऊ में लाल लिन हो लगल अब जात है जो जहाँ किनली बोला था देखा है प्रॉब्लम बा अब बोला था नहीं अब परी पे ये करे के तो ये को प्रॉब्लम है जैसे बोला था वो जो कंज्यूमर राइट्स बातें ढेर जना नहीं जाने लन खाली हमने जाए ला सा किने अब जो पापी मिलेला इतना पीती पीती लखल बातें अब के जाए पढ़ी खाली सीए करके हमने चलाए ला सा ये को प्रॉब्लम है
2: हाँ ये को प्रॉब्लम है वही से हमें के हर कोजरी तो कुछ समय बोलल जला जब सीए के आगे चाहला लिख खूब निमन से पढ़े के अब एगो बुजुर्ग लोग जाता वो लोग के थोड़ा पीती जैसे बोला था लिखल बा नहीं लौकेला तो हम ही बोली ला सर कोथवा के एगो फोटो कॉपी कर लेके उबे अब तक स्मार्टफोन बा फोटो निकाले के फोटो निकाल के अय्या घरे लड़का लोग के बताइया पढ़िया और ये थोड़ा ज्यादा लिखो एनलॉज करके पहरबा तब देखबा तब सब को जिसा जब जान जाबा तब सीए करियो
3: तो तू लोग आप हवा जा कंज्यूमर अफेयर ऑफिसर्स जुन हवा तो जहाँ पर ही मागाजा के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सब हवन जा तो उन लोग के इस सब जो कानून बातें ये सब पता बा
0: हाँ पता लोग के कानून पता बा जब एक अफेयर किने जाएगा तो सेल्स पर्सन जो आदमी तो के रहसमा दे बता वो के छाने आदमी के बोले के ग्राहकवा के बोले के कि कैसे जाफिया कौन सी है कौन स्पेसिफिकेशन है
3: और लोग के काम है बेचे के हमने के काम है कीने के और लोग के बेचा जाता है लोग के पैसा मिला तो हमने पैसा जाता पर चाहे ना वो लोगों की जाने के जो राइट्स बातें जो कंज्यूमर राइट्स बातें चाहे ना वो लोग के जाने के और निमन से बतिया की
0: जैसे बोला कंज्यूमर राइट्स बा और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बा राइट्स

0: Bon, ça habite que tu vois. Là, que tu vois pas le homework là, partir, c'est arrivé après qui n'est que des classes, review, ça, des classes, par contre, tu continues. Là, tu as bagarre, mais tu as sérieuse personne, tu as poussé que, parce que là-bas, il a, j'avais eu d'affaires qui n'est à toi, ou que tu as entendu que Bolé, que quand tu es à toi, quand tu as créé l'installation, quand tu as pris l'installation, quand tu as pris l'installation, quand tu as user manuel de là. Quand tu as produit un service, quand tu as des cas, il y a un frisiteur qui est là. Ça pour c'est moi mille trucs hein comme quoi après le frise d'avoir en dehors là quoi toi le problème car le consommateur ou ta
1: frise
0: tu
1: là
0: frise tu là calme le kéké là c'est en dehors que pas ni mais ta frise t'as bolé car bolé frise en panneau là tu as là au quoi le responsable tu vas t'as bolé tu là car police bal électrique à payer ça dans lequel courant ça ni manche là qui jamais choc de la frise d'avoir quoi ce qui au quoi bal partie de l'usage là parce que t'as bolé là ça qui job qui dit que dans l'oral, sa petite information a poussé que freezer, qu'est-ce qu'il servi là, il a dit qu'il a servi, qu'il est là, est-ce que tout le garde, mais pour les affaires, mais que complète, mais il est là, admis le freezer qui n'est pas, d'où la poutre.
1: J'ai.
0: Ab j'ai livraison, ou ta, ab le freezer garde, mais il est là.
1: T'as
0: un problème, voilà, parce que, alors que, demande tennis la freezer, qui est, t'as problème, ou la garde, mais il est là, de la poutre, que vous avez cassé, il est. T'as trade, voilà, mais il est là, mais il est là, तो आदमी आप कुमांस मावे नहीं बोल ला उकार घर से पलाहू जाए की बात पानी चाहे की बात तब कुछ कहना सब पुलों के पला फ्रीज़ जवान दी बोती करके उन लोग के रेगुलर मावे नहीं हा
1: अच्छा
0: सब कमर्शियलाइज़ेशन करे लंग सा फ्रीज़ जवान वो काम ही लंग के पारे फ्रीज़ जवान के लापू चार उकने फ्रीज़ जवान के लापू तो कनेक्टे अधे सीएक्वी से चाहे डिकनेक्टे करके फिर से कनेक्टे करके बोले मजा ला तब करे लंग सा तब घर में हिलावे सब दाए लंग सब प्रॉब्लम हुई आपके तब उकने फ्रीज़ जवान के उकार ou quoi des choses que fonctionnent nickel là ça me défile ça fait c'est de la fille c'est un problème là t'as vu boilers admis que ça tu l'as décrit que car c'est qui n'a toi est-ce que ton gars que tu as quoi tu l'as bah c'est pas et des choses qui les gars fait démontable là pour les affaires démontable là t'as problème là que c'est frisé mais compressé bah gaz bah mais c'est pas vrai car que problème là t'as frisé mais c'est qui n'est allé t'as gaz fini ou juste pas gaz liquide tu l'as t'as vu quand il boilers admis que car il a qui dans पूछे के कौन सी कौन सी बात लीवरेज़ कहाँ कहाँ करेंगे कहाँ पर हो लेटास हो कि अभी लोग वहाँ बोले भामी के कुम्हार सब लोग
1: इधर साइट प्लान उस सब देवल जाला
0: हाँ लोग पफ़ा नहीं नहीं बोले लंग सा हम कार को काम इन रहल सोफा के इन रहल गोमी लाहो चला लीवर करके लापूत पीती बा तब सोफा दे मोती ने लाप कुछ करी तब प्रॉब्लम वाला आदमी लोग खाए बोला सा अब क्या हो तुम्हारे में कंसुमा हो थ्री दवा तो आल कंसुमा छोड़ ला आज भी घर में नहीं लाता अब सुबह से डिमोटी करके बस उनके पुलिस में ना डिमोटी के हिलाए के तब उनको प्रॉब्लम हो जाता समा हमने जब एंटीविनिया के रास्ता तो उनको मेरे जासो के रास्ता बूस्ट पहुंची इसके लिए किला सा कि कहाँ पर ऐसा विन विन सिचुएशन तब प्रॉब्लम के देख से करे रास्ता
1: तो चलो हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन बातें हमने सके जुड़ हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में और हमने के दोनों मेहमान हवन श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल और श्रीमान रणवीर सिंह मीठू कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स जे कुछ पूछे के बातें लाइन खुलल बा 402-84-85-402-808-85 एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद हमने वापस आयला जा

0: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: आज की चर्चा
2: ई दिवस के हमने सब मनाओ सा मातृ दिवस सा फिट मामा और जब भी फिट मामा अवेला हमनी के माँ के कुछ ना कुछ हो पिति लायका हो बरका लायका हो अपन माँ के कुछ ना कुछ दी अंजा तो जब भी खरीदारी करत हुआ खास तौर से जो बड़ा लायका हो अंजा अपन माँ खातिर कुनो दिन खाली फिट मामा हुए कि नहीं कोनो लुकाशो रही कोनो इवेंट रही कोनो समय रही कुछ ना कुछ तो हमने खरीदारी कर ले है ऐसा तो कौन चीज चाहेला करे कि निमन खरीदारी जो बातें कैसे चाहेला करे के और कौन कौन दुआ बात हर अतः की कौन सो माते है और लालवा कौन ची बोलेला कानून कौन ची बोलेला इस सब पर चर्चा करे खातिर हमने संगे हवन श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल और श्रीमान रणवीर सिंह मीतू आप दोनों हवा कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स तो एगो प्रश्न आवेला है जा परी हमने खरीदारी कर ले है ऐसा जैसे कि बोले हवा जयश्री जी और मीतू जी तो चाहेला हमनियों के आज कंज्यूमर्स हमने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बा चाहेला जाने कि हमने कौन सी कीमत है सर काहे कीमत है सर हमने के बजट में बा के नए बोलल जाला एगो कहावत बा उतना ही पैर जोन बाती गोर फैलाई बा जितना तोहर चादर बाती तो इस चाहेला जाने के समझे के सोचे के तो जब खरीदारी कर ले ले हुआ काहे कि हमने जब भी खरीदारी करेला एगो कोथा से हमने बाइंड जैसे हमने बोली ला जा बंधल है सा तो जो सर्विस आपके वांट बाती उहु एगो जोन जोन काम जोन एपोता है तो कानून इमे कौन सी बोलल
3: सब इलेक्ट्रोमिनाजे जैसे बोली इलेक्ट्रोमिनाजे और इलेक्ट्रिकल गुड इलेक्ट्रिकल गुड को चीज जो जितना ला पारे बा इलेक्ट्रिक से चलेला जैसे माइक्रोवेव राइस कुकर एगो बुलवा टेलीविजन फ्रिजरेटर ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बोलल जाला

0: इस सब चीज के एगो लालवा बाटे जोन सर्विस अप्रे वांट गुवर्ने करेला
1: जी
0: का बोलल जला सर्विस अप्रे वांट से ताजा जब मगाजें बेचेला ते चला एगो मिनिमम गारंटी देके
1: जी
0: देखिला सब मोरिस में मिनिमम गारंटी एन ऊपर देवेलंग सर
1: हाय के बोलिला जा वारंटी
0: वारंटी
1: जी
0: वारंटी ताजा हो गारंटी सब इलेक्ट्रोमिनाजे के एगो गारंटी बाटे गारंटी कब काम में आवेला जब फौजुआ टूट गल

0: पैसा रिटर्न करी सो एगो फौजी
1: दूसरा चीज दे
0: हां फौजी दे अब ये सब चीजें ऑटोमेटिक नहीं है जैसे पैसा रिटर्न करके या एगो नुवो फौजी दे के ये ऑटोमेटिक नहीं है एगो प्रोसीजर है जब तोहर फौजी टूटल बा तो जेब मगाजे में एगो कंप्लेंट करे तो मगाजे वहां के चाहेला आके फौजवा देखे के जब बड़ा फौजी है बड़ा फौजी जैसे बोलीला रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन सब वो लोग टेक्नीशियन लोग के विदा करिए अब तोहर घर में आके जगह करी कौन प्रॉब्लम बा का होल का नहीं होल अब जैसा छोटा फौजी बा जैसे मिक्रोन एगो बुलवा तो सकबा लेके बुलवावे मगाजे में डायरेक्टली जाए के तब हो जा लोग फौजवा के लिए तब तो के एगो चाहला बो दे रिपेयर्स दे के सीताजिया एगो एगो पापिये चाहला दे के हाँ अला मगाजे में अपन बुलवा छोड़ ला तो एगो दात बाती
1: जी
0: अब उ दातवा से तोहर दस दिन बाती दस दिन में चाहेला मगाजन के रिपेरेशन कर दे के
1: जी
0: रिपेरेशन हो दस दिन वा में चला वो कर रिपेरेशन करके तोहर फौजी रेतुने कर दे के अब छोटा छोटा फौजी के देखला सा स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल बाते बाते मगाजन में तो रिपेयर हुआ दस दिन में हो जला कबो आगे हुए पाँच दिन में दो दिन में
1: जी
0: प्रॉब्लम कहाँ आवेला जब स्पेयर पार्ट्स नहीं बाते ओके परेला
1: बाहर से मंगाए के
0: बाहर से मंगाए के तब यू एगो प्रोविजन बाते मगाजन लोग दस दिन में नहीं रिपेरेशन होल ओके पाफेन हो अपन पीएस बिना तब अब तू का करबो तो हर फ्रिजीडेयर तो चल गल अब का करबो कहाँ रखबो तो यू में लालवा बोलेला जब दस दिन दे पासे हो गल तोहर फौजी नहीं रिपेयर होल बा तब मगाजन के चाहेला एगो फौजी रेम्प्लेसमेंट दे के जब ले तोहर फौजी रिपेयर नहीं हुई तो मगाजन दस दिन के बाद एगो फौजी रेम्प्लेसमेंट दे जैसे एगो फ्रिजीडेयर टूटल तो एगो आके फ्रिजीडेयर
1: तोहर
0: छोड़ दे तब बहुत फ्रिजीडेयर हुआ गल वर्कशॉप में रिपेयर हुई तब अब वो मगाजन देखी कहाँ से पीएस मंगाए ये सब आए तो हूँ मैं एगो दूसरा लावा कब तक सकबा अपन फ्रिज दिया मगाजन वे में छोड़ ली कब तक रेम्प्लेस से सेवी करके तो हूँ लालवा बोलेला मगाजन के तीन महीना के डेले बाते
1: अच्छा
0: तीन महीना के डेले में चाहेला स्पेयर पार्ट चलाए के रिपेरेशन कर दे के तीन महीना में चला तोहर फ्रिज दिया तोहर घर में चलाए के
1: और जो नैवे होल तब
0: जब नैवे होल तब मगाजन के स्वा नहीं बा स्वा तोहर फौजी जन किनले हुआ जन पैसा में किनले हुआ अमाउंट पर रिटर्ने करी सो एगो फ्रिजीडेयर रेम्प्लेसमेंट दे रेम्प्लेसमेंट नहीं से ताजा एगो रिप्लेसमेंट यूनिट बोली रहा सर दे इक्विवेलेंट जन किनले हुआ
1: जी उही दाम वहाँ के
0: उही दाम वहाँ के उही रेंज वहाँ पर कबो देखिला सर उ रेंज वहाँ पर नहीं बाते
1: जी
0: आउट ऑफ स्टॉक हो गल बास पा कुछ तो मगाजा प्रपोजे करेला तब तोहर शुआ है मगाजा बोली एगो जस्ती ऊंचा दाम के ऊंचा गाम के फ्रिज दे दियो अब सिलमो चाहेला थोड़ा
1: जस्ती पे करे
0: तो हर तोहर शुआ बाते जे लेबर एगो ऊंचा दाम के फ्रिज दे तो हर डिफरेंस वा पे कर बस ऊ तोहर शुआ है ऊ बिया बोलबा नहीं नहीं लेब तो ओके
1: मगा पैसा वापस कर दे
0: हाँ पैसा वापस करी
1: अच्छा ये सब चाहेला है ये तो बोलत है सर ढेर जाना हमने किने जाएला सब पर नहीं जानेला सर हमने वे के जन दुआ हमने के राइट्स कौन जी है तो अभी जैसे बोलत हुआ जब कंप्लेन करे जालन सर देखा हमने हम तोहर लगे आयल है कुछो किने अब डिफेक्चुअल बातें तो हम तोहरे लगे आप अब उन लोग जो नहीं सुनत हुआ जा अब कहाँ जाब ला पुलिस जाब कहाँ जाब जे नहीं जाना था सर कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट नहीं जानिए
2: जैसे किने वो लोग गारंटी वा देखे के
1: पास
2: गारंटी में बोला गारंटी स्टैंड तिल तिल कंडीशन बा गारंटी वही जो चला तिल तिल कंडीशन में
1: हाँ ये तो प्रॉब्लम है जब परी आला कि ढेर जाना नए पढ़े ना सर खाली सीए करके
2: हाँ तो जाने तालवा बोली कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्भर बा कंसुमाते बा पर कंसुमाते बा हुआ पर जब गल जब ओके पापे सीए करा होता तो देखिए कोई पूछे आदमी से कुछ में गारंटी बा हाँ सके आदमी व्यवहार में बोलता सिलमो हाई में नहीं बा हम के वो केस फेक पर मिलल व्यवहार में बता गारंटी हजाफे में नहीं बा पापे में कहूँ लिखा नहीं बा
1: हाई तोहर से पूछी धरला हम तोहर लगे आल है कुछ हो कि नहीं गो तेवे कि नहीं आल है तू हमरा बोला नहीं गारंटी बा सैको गारंटी बा वा जन पीए सुसब बाते अब कुछ प्रॉब्लम होगा तोहर लगे अली देखा तू बोले रला हाय हाय पहुँचवा हाय हाय पीएस में गारंटी अब बोला था वह नहीं
2: ना जब जाए ना ही ऐसे जैसे बोला था ऐसा उड़ जाला लोगों ने लिखे सेवा ऐसे रहे ना एक कंपनी जहाँ

0: Tina jangan compare of the sales service dia wata, please warranty dia wata. Apa ni bal, hua apa itu, agama dah sebab 5,000, 3,000 kem tiba, dah hujan berhua kini. Apa sales service cara dia kiki, kah kah kat ini, pasti produk tu ni jangan makan sekali ke produk tu jai. Tak, kah je bata, jadi produk ni garanti ni hari, tak minister ni sih kucuk kali, kah pasti garanti ni bah. Sekali tu satu kali sebab garanti ni kucuk ni sekali, garanti kah dia bal jala. कि बोले ला थ्री देवा को एको आंगाजमान ले बेला जे प्रोजुवा में को प्रॉब्लम हुई तो उ प्रोजुवा बना दे फ्री ऑफ चार्ज
1: तो जितना इलेक्ट्रोमिनाजे के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि बोला था आप दोनों चाहे ला अनिवार्य है ओब्लिगेटरी मो चाहे ला एको वारंटी हुई के
0: नहीं वारंटी ओब्लिगेटरी नहीं है तब कंपनी लाखो ओका लिमास पोते से करे एको वारंटी देवेला अ वारंटी
1: एको अश्योरेंस नि मन
0: अ वारंटी वा देखा चला पाफे में लिखा है कि 1 ईयर 2 ईयर कुछ में देवा तो वारंटी पूछा पास की वो चलो जाने जब जाने से किने एको पोटाप किने तो सब सब पोटाप गारंटी वो हां गारंटी बा तो तू पोस के तो पोटाप में सब में गारंटी बा तो वो कंडीशन ने बोला ना तो प्रॉब्लम कहां होल पास की ओ तू होगो रिस्पांसिबिलिटी बा देखे कौन से वादा नहीं जाना तो पूछा कोई से कौन से गारंटी बा ने बा पर फॉर्म मिला को केस आवला तो बोले सर लिखा में गारंटी नहीं बस सॉफ्टवेयर अपडेट पूछता में गारंटी नहीं है तब वो प्रॉब्लम हो जाला तो अदम अपन अपन अपन मन में लगा कपाह में लगा हाँ गारंटी सब चीज़ में तो वो पहुंचे तो लिखा में गारंटी
1: हमने के यही दिमाग में रहे ला हमने कुछ हाई पोतावा हम किनत है मानी की पोतावा फुली गारंटी बात हमने ना जाना चाहते कौन पीएस में कौन चीज गारंटी
0: लिखा बा हम कौन चीज में गारंटी वाके कौन चीज रिपेयर कोस बा लेबर कोस बा कौन चीज पर फिर वो कंपनी देवे ला Repair cost, labor cost, never included. Neha, the two charge labor cost pay, the transport pay, the high sub included house of a chap puchek administrator, coach, or cutting premium major jars of kidney, chat change chap puchek, or some chap papier, eh? Jessego project to girl, the jabber chori, the papier, cry, project coaching, my pussy, femojo put up chola, problem with an charge with that. The potaba who are all in the Senegal, the potaba, the confident about that, to chola, the popular, so any papier, as it is, case chola. The family gave a case, Milba, potaba, who was very filial, up K. Hayui.
1: Kill
0: responsible, away. China papier, Janike, admitted Henny Jaila, okay. They say, Jab Kaidaki Bugger. जब फिट आवेला आदमी कुछ बोला किनेला हाली हाली
1: जी
0: ये घर के चला पहुंचे उन्होंने देखी
1: ला कुछ हुआ एंड फॉर मन खुश होगा
0: वहां पे किने आल किन के चला घर है क्या बोलते उन्होंने देख ला कौन सी बात वहां पे आता से को संगे गांव की कुछ कुवे करेला और को जाफिया गेट हबी फिट दे मिया बा जैसे को पोता किन बात सब सब के घर चला ना अभी को माइक्रोवेव किन ला स्पाइ को टेलीविजन तब को पाया चुके चा लिवरेशन करे के ना अपन अपन मासी में जाके नहीं जा घरे जे अपन मासी में जाके चला घरे अगर मां के फिदे में के देवता से जीवंस के हां
1: तो है जा पर एको प्रश्न आवेला जैसे बोला था वह जब कुछो किनत हो वह एको मगाजा में उ लोग बोले लन सा आप जन सर्विस लिवरेशन बातें अब उ धरला दो तीन दिन दो हफ्ता लग जाए अब हम तो पैसे है हम के तो पैसे बातें अब है जा पर कानून कौन ची बोलेला जब हम अपन से हव भोजवा लेके जात है और जो मगाजे वा बोला था दो हफ्ता में मिली है जा में कौन ची
0: लालवा बोले ला लाला बोला exceed 15 days
1: जी
0: जब 15 दिन के बाद ने चला exceed करके लाला बोला 15
1: जी
0: ने बोले लग मार जब किन्दा तो काली वगैरह हो जाए लाला बोला 15
1: इधर पान करी ला मगाजे वे में
0: अब मगाजे वा बोले ऐसे कहीं ना planning जब बोले लग सा जे लिवरेशन हो रही जो हमें चला लग सा करे बोले के जब जैसे दिसंबर हुए ला tout de suite les séries là ça tu vois quand il boit là ça livraison là il n'y a pas de quoi le problème oui magasin mais livraison qui est dans l'an transformé
1: à l'intérieur
0: le responsabilité là tout le responsabilité là tout produit qui n'est pas ça ou le délivre service des voilà donc quelque chose à tasser pas conseiller tu vois quand il boit ça admis que checker quel que produit garé et livraison par ça à l'art qui n'est pas qui जैसे को सोफा की नोट नहीं जब कहां पर ओकर ओकर गोर में स्वतंत्र गलगो बूथ्स वाले जन्म रात के होता किस सीजन
1: माने कि हमार द्वा बा

0: बोले कि देखा रात के नए आया उ लोग बोलियन
1: हाँ
0: से देखा हम हौजा परी पासे हुआ था रात के
1: हाँ
0: आप रात के 10 बजे 11 बजे तक घरे रह बना तो हम आके छोड़ देव। हम
1: हाँ
0: सकब बोले आज अ कंजूमा हम सकब बोले नहीं हमके मन नहीं बा मन बा
1: हाँ तो अगर
0: रात के
1: आवाज़ में वो बोस पर से आवाज़ में कर ले अपने में
0: जी
1: कब लिवरेशन कर लिवरेशन में हमने हेल्प सा जब लिवरेशन नहीं होला
0: जी
1: तब हमने हेल्प सा जब कोनो आवाज़ में कोनो सा ट्रेडर और ये ग्राहक तब वो लोग में आवाज़ में कर ही लग सा मिनिस्टर ने हेल्प है में
0: जी
1: तब जो आवाज़ में नहीं होता तब आपके लालवा की हमने आगे जाके लासा ना पागल पागल जिन आवाज़ में हो बा हमें ढेर नहीं सीखा सहेले लालवा कुछ बोलिए ला लालवा के आधार पर आप सुन ले लासा जैसे फिर बोली टेलीविजन जब लगा था तब लिखा फेल हो गल बा पापा होला तब गेट फेट दे में आता एगो लड़का एगो फौजी की नेता और कल माँ के देख सको बाप के तो रेसिवा के का नाम बल करी लड़का जो की नेता वो भी पाओ के नाम प्रॉब्लम हो जाला तब एगो फौजी तब डिफेक्टिव हो जाला तब रेसी बोले तो किका नाम बल बा की कॉम्प्लेन करता तब जब एगो आदमी को एगो एगो ग्राहक एगो फौजी किन ला तब घरे घर प्रॉब्लम बा गारंटी को वेयर करेला तब परफॉर थ्री दवा दौड़े के एक्शन लेके
0: जी
1: तो हमें लगे एगो कॉम्प्लेन करेला तब हमने जब यहाँ इंटरवेंशन करी ला सा तब ओकर केस जाल हाली हाली नहीं बस आगे से इंटरवेंशन ने कला कहा है बस कि बोगा वो लोग के बारे में प्रॉब्लम है इंटरवेंशन करी केस बार हमने आगे कुछ तब हमने जब हमने की केस हमें लगा हुई ला तो हमें लालवा पी के ला सा
0: जी
1: तब जरा देखे तिल हल बा जी 10 दिन हो गल बा ओके वो फौजी ने दिले बा ठीक है उफ़ान सो जाला केस लाखू जाए कहे 10 दिन में लालवा बोले बा एगो फौजी रिप्लेसमेंट देके चाहेला उन्हें दिला कहे तो उषा की बोले हाँ भाई जो चीज हर चीज होला वो गाँव से नहीं कुबे होला जैसे पोता में एगो एगो सॉफ्टवेयर अपडेट होला हम किन के केस में दिला सॉफ्टवेयर अपडेट लिखाल बा वो गाँव से नहीं कुबे होला जैसे एगो इलेक्ट्रोमेजर किन ला एगो एगो आफे बा मिसयूज मिसयूज बोला जरा सकिला जे एगो लेजर हिल गल बा जिफिल खा ले बा ऐसा नहीं हिला गाँव से लिखाल बा पापीवा में लिखाल बा पापीवा में बिया सेट बनीमेंट से हर कल आदमी ने पहला ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तालवा फिक बोली जब गारंटी बोली लंग सालो पास ना गारंटी ऑनचे प्रोड्यूअर में सब बा तो इधर बंद रहा फिर जैसे तालवा बोली फ्रीज़ दिया किन बाले सब ऑन दियो रखे ना तो मिस्यूस हो जाला मिस्यूस तक कौन से मात्रा है कि वो तो जाला तब एको प्रोड्यूअर बा जहाँ कहाँ रखे के कहाँ पर इंस्टॉल करे के पापा बोली लंग सा जब न्यू न्यू जो प्रोड्यूअर आवा था अभी अभी ढेर अभी सांसी भवन था तो प्लस डस्टी एनवायरमेंट में लग बता प्रॉब्लम हो जाला जब जब दूसरा प्लस में लग बता कोच चलेगा तो अभी लोग है नहीं जाएगा तो और जो अभी एगो फौजी किन्ने बा आज एक्सीडेंट के बाद टूट गल तो ओकर दिमाग में होला एगो फौजी किन्नी अब सेविनेस तक करे तो हम कितने सारा फौजी अगर दूसर दे
0: जी
1: तो लालू हाई ने बोला ना लाला बोला जिजू देके तीन मनाई देके तब हालात अभी लोग पहुंचे एगो साइकोलॉजिक में लोग बहुत से कहना एगो फौजी किन्ने लग सा तब फौजी टूटल बा टूटल फौजी में घर में रखा तो तुमने कब हम चाहे दूसरा देखे हम केस मिला हमके तो हम लालवा फेंके लालवा बोला 10 दिन 3 महीना नहीं होला तब दूसरा लेके तो आदमी ने पापा नहीं कौन फल इसलिए के लाला कुछ बोल दिला तब इसके आधार पर आशा नहीं रहता
0: तो कैसे अवेयरनेस जो सेंसिबिलिटी बातचीत जो सेंस मान कि अवेयरनेस आप लोग कैसे करेला तो हर लोग के रोल जैसे बोला था हुआ जो सर्विस आप वॉन्ट वो सब आवेला कितना कितना कौन कौन प्रकार के कॉम्प्लेट तो लोग के मिलेगा
1: तो अवेयरनेस कैसे करेला सर अवेयरनेस पूबा महाजू करते सर पापा जरा सब सवाल संस्था में कोजरी करे लेकोलो में जाएगा सर लेकिन मैं जैसे जिले बा वहाँ पर कैसे बोला ऑनलाइन परचेस जैसे बचा सा
0: जी
1: दीपाओं कहाँ पर कौन जब आप एगो सोशल वेलफेयर सेंटर जहाँ आप एगो एगो प्लस जहाँ पर बुजुर्ग बात इस पी कब से लालवा थे टेक्निक ने मैं लाभ सा जिले हाल में बोला सा तब जहाँ जहाँ गए हैं सर जहाँ जहाँ कोर्स ही कर रहे हैं सर आदमी लोग बोल कि हमने के पॉजिटिव फीडबैक बोला ढेर चीज जान लग सर तो कैसे बोला सर कौन सी बात है तो उनके दुआ जान जाए खूब मौसम हो से जब खरीदारी कीनी था को जानकारी लेके जाता
0: फसल हो जाला
1: तब जानी हाँ अब हमके वो हमके झूठ बोलता हमके ठगता तो जान जाए तो मौसम नहीं जाए को धोआ था ठगी तो नहीं जानी कहीं कहीं मेरे से मौसम आता चला कि स्मार्ट रहेगी सब चीज़ छा जाएगी नहीं जाना था पूछो का फार्मी से काम से कैसे कहीं के चाहेला अभी के जाना एगो फौजी से उठाए घर में आ अब फौजा बुझा तो बोल आई वो फौजी किन्ने दी वो एगे कर ली तो लालवा वो कुवे कहला
0: जी
1: तो आदमी के और कुआ से कही ला सर तो कोई प्रॉब्लम बोलता है सर एक वो चीज़ आफे की ना छोड़ देखो दूसरा की नहीं ला तो लालवा के कुवे करता तो वही खाने बोला सर मिनिस्टर के नहीं बोबा सौखा था सैंक भैया का सौ सौ मेरा सैंक जरूर जरूर मैं टेलीफोन ही करा अपन कॉम्पेट इंस्पेक्टर लोग जाए साइड में एगो सोल्यूशन दे देखो दापुर सिचुएशन दापुर केस कैसे सिचुएशन सबसे करे
0: जी तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद हम आशा कर रहे थे जाकि जितना चना आप लोगों के

0: सुनत हवन देखत हवन, अब निमन से समझन जा कौन चीज है। जब खरीदारी करत हो लोग के दुआ कौन चीज है, वो लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन चीज है। जब अभी बोले हो ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल तो ये तो फैशन हो गल बातें। आज नहीं परी जाए के मागाजे, उठ के घरे से जाए के बस बैठल बैठल काम हो गल बाती। तो ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करल जला, एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कौन चीज है?
1: एडवांटेज कुछ है, एगो फौजी घर बैठे एगो कमांड क्लिक से किनत हुआ पे करत हुआ फौजी आवता
0: जी।
1: डिसएडवांटेज कुछ है, जो फौजी दिखला हुआ इंटरनेट पे स्पा अपन लिखो में वहाँ पोजो हवे नहीं रहेगा
0: जी।
1: हर को का डिजाम होता था समझ, जब वंस तू स्वागत कर ला इन्फॉर्मेशन मिला पाई ला राइट इन्फॉर्मेशन तब चूज कर ला तब किन ला तब पोजो वाला बाहर नहीं हुआ। अब हाई इधर हाई प्रॉब्लम होता एक पर एको लालवा नहीं बा, अभी लालवा होल नहीं बा। अब बोला लालवा ई कॉमर्स बोला था तो हमें बोली कौन कौन रेगुलेशन डाल के कौन कौन प्रोसीजर चल कर के तो अभी लालवा बदल नहीं बा। तब जाए ना सा ऑनलाइन खरीदारी को एक फैशन एक ट्रेंड बोला सब कोई फैसिलिटी दिखाता तो सब फैसिलिटी में एगो प्रॉब्लम रहेगा। जैसे कि एगो एगो एग्जाम्पल होता है एगो मागाजे बा फिजिकल एड्रेस बा मोरिस में सब ऑनलाइन सर्विस ऑफर करेगा कल एगो प्रोजी के ना ऑनलाइन में पे सब कर देला तब एगो प्रॉब्लम बोलता सब मागाजों के जाए देखे। अब एगो आदमी बेचता जैसे फेसबुक टिकटॉक सब बेचल सा तो लोग रजिस्टर नहीं है
0: नहीं जब सच्चे के बात है फिक्सी फॉर कैसे बा
1: एक आदमी मिला सा पे कर आगे तब पहुंचवा मिली तो हमने अच्छा बा कौन सा बात है कि ऐसे हो साबित है सही करे हमने बोली ना सक जय जब आई डिलीवरीजों करे कैश ऑन डिलीवरी तब पहुंचवा पे कर तो हमने बोला सर तब ढेर को बोला नहीं चाहे ना पे करके तब पहुंचवा मिली रिजर्व कर तो खातिन तो आज तब पहुंचवा पा रही नहीं होता अब पहुंचवा आई अब पा रही नहीं बात अब कहाँ आदमियाँ खोजे बस अब हम लगे वो कंप्लेंट कर बस तो हमने कहाँ से खोजे आदमियाँ वो कहते वो फिजिकल एड्रेस नहीं बा एगो ट्रेड नेम नहीं बा एगो बिजनेस एड्रेस नहीं बा तब एगो प्रॉब्लम हो चला तब भाई बोला सा जाके देखे कि पुलिस साहब का मिनट बागो कि वो लोग देखी कहाँ पर जुम्मा कहाँ पर किन ले बा
0: तो अभी जन लालवा में बातें कुछ हो बातें ऐसे लिखल गल बातें कोनो प्रावधान बातें कि हाँ जितना जना आजकल तो हमने देखा था ऐसा टिकटॉक पर ढेर चीज बेचल जाता ढेर जना पन जन पहुंची बातें लुगा होय हय होय हव होय वो लोग बेचत हवन सा ढेर जना किनीलन सा तो वो लोग रजिस्ट्रे होलन सा मिनिस्ट्री डने से कुछ होला
2: नहीं अभी जैसे भाजी बोलक लालवा ने बाते एनरजिस्ट्रेमा उस सबके सिर्फ लालवा जो लालवा बाते एग्जिस्टेंट लालवा सब कॉमर्स के चाहे ना एगो बी ओ एन जैसे बोली रहा सर एगो रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनीज डिवीजन से चाहे रजिस्टर्ड करके तब लोग के एगो बी ओ एन नंबर मिलेगा इस आधार पर हम ही अपनी के लालवा अप्लीके करी रहा सर। अब ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन ट्रेडर्स उन लोग के ये सब चीज नहीं बा तो ढेर चीज हो जला एप्लीकेशन है जैसे वो लोग तब बेचत हम सर से टैक्स नहीं भरे लंग सर अब लालवा ने सकब से अप्लीके करे बोलक तो के फौजी दे तो नहीं आ लिवरे करे तब इमे लालवा ने बातें कुछ कौन सो माते के एगो प्रोटेक्शन नहीं बाते हम ही हमेशा बोली रहा सर ऑनलाइन शॉपिंग करे वक्त ध्यान बहुत ध्यान चाहना रखे कि जैसे जब एगो ऑनलाइन शॉपिंग करत हो तो रिव्यू देख इसकी थ्रेडर हुआ एगो निमन थ्रेडर है उबिया एगो ऑन आके है बहुत बहुत कंप्लेंट आवेला मिनिस्टर पर जब वो लोग पे ये कर देना सर वो लोग के फौजी कबू नहीं आवेला और जब टेलीफोन कर रहा था तब ब्लॉक कर दिला
0: होता होगा
2: होता तो अब नहीं कुछ नहीं सकबा करे तब ये सब चीज में बोली रहा सा एगो काफ खोद हो गलबा हम तो हर से पैसा ले ली अब पैसा लेके भाग गली तो एगो काफ खोद हो गलबा ये कंज्यूमर अफेयर से ओकर पर्व्यू पर नहीं आवेला तब ला पुलिस बोली ला पुलिस बगल डायरेक्टर होलंग सर ऐसा कंप्लेन साइबर क्राइम यूनिट वो लोग जालंग सर अपन कंप्लेंट करे और ये देख हमेशा देखिए जब रजिस्टर्ड ट्रेडर के संगे व्यापार करिए जैसे फिजिकल एड्रेस बोली रहा सर एगो मागाजा इलेक्ट्रॉनिक वे ला पीपल मागाजा इलेक्ट्रॉनिक अब ऑनलाइन सर्विस दे
0: जी, जी.
2: ये सब मागाजों के एगो रजिस्टर्ड एड्रेस बा एगो रजिस्ट्रेशन नंबर बाते तब इस आधार पर लालवा अप्लीके होला
0: जी
2: और वो देखब जब खरीदारी करत हो ऑनलाइन फौजुआ जैसे देखब ऑनलाइन प्राइस प्रिवा जस्ती संस्था बा टॉजिक मगाजा में जाइबा तो हये प्रिवा जस्ती तो ये सब देखे के चला एगो एडवर्टाइजमेंट है जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जे ऑनलाइन पर नहीं लिखी एक्सक्लूसिविटी ऑनलाइन

0: आंके प्रिय काहे अन्नाइन के प्रिय कबो जस्ती कम रहेला जस्ती ओ लोग के लॉजिस्टिक कमती है त सके रंग से अन्नाइन के प्रिय लोअर करे टॉजिक मंगाजे में लॉजिस्टिक जस्ती बाते जैसे रेंट बा पे करे के अब एगो आदमी लोग काम करता और सब चीज बा तब मंगाजन के प्रिय जस्ती
1: अच्छा ये तो सब जैसे निमन से बोले हो चाहेला इस सब के बारे में जाने के अब जब हमनी जाएला सा खरीदारी करे ढेर जाना बोले लन सा काश हमनी न सकब सा पे करे माने की फैसिलिटी मिलेला क्रेजी मिलेला एकर पर
0: क्रेजी जैसे हमी के लालवा में दुगो चिप दे क्रेजी बा जैसे बोले सा हायर परचेस और क्रेडिट सेल्स
1: हायर परचेस कौन सी है
0: हायर परचेस जब क्रेजी लेबा 30 मंथ में 30 मंथ के क्रेजी ई हायर परचेस में आवेला ई हमी के लालवा में बा जब तू एगो चीज लेबा 30 मंथ में त ई लालवा हायर परचेस में आवेला त ई में प्रोटेक्शन हो
1: जी
0: अब देखबा कोनो मगाजन ऑफर करेला 30 मंथ से जस्ती 36 मंथ 40 मंथ
1: जी
0: जब 30 मंथ जैसे दे पासे होगल त ई एगो जैसे बोले सा एगो कॉन्ट्रा ह ग्राहक और ट्रेडर ई लालवा में नहीं बा
1: अच्छा
0: ई लालवा में नहीं बा जैसे 30 मंथ दे पासे होल हायर परचेस आक में नहीं बा ई दूसर हाई होगल
1: अच्छा
0: एगो दूसर कंडीशन है जे एगो कम से एगो एग्रीमेंट कर ले हवा डायरेक्टली मगाजन और कंसोमाते के बीच में
1: जी
0: ई लालवा में नहीं है अब हायर परचेस जब जाएबा किने तो चाहेला पूछे के हायर परचेस में देखिला सा हिडन कॉस्ट कुछ है जैसे ओकर चार्जेस सब एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पापिये के फीस वो सब लेवे रंग सा तो ये सब आगे चाहेला पूछ लें के
1: काहे कि जब कैश में लेवत हुआ ये गोदाम फिक्स हो जाला कुछ है पोता वो हम किने था धरला वो सैक्सा ओपी के हैं धरला एक एग्जाम देवत है सैक्सा ओपी अब ये चीज वो हम खेजी में ले तो हाँ गते गते हम पे करब अब वो मिले तेरे हुआ था पे करते जाते हैं पे करते जाते हैं फ्रीवा था दिपासी हो गल बातें ये सब में कैसे कुछ लालवा बोलीला
0: यही बोली लालवा चाहेला जब एगो मगाजे हायर परचेस सर्विस ऑफर करेला तो दोनों प्री चाहेला डाले के ताजे हाई कास्ट सेल में 500 रुपये पे करब हायर परचेस में लेब तो इतना प्रीवा होल से ताजे हो हायर परचेस प्राइस के डाले के चाहेला सिपा 700 रुपये प्लस चार्जर सिपा 100 रुपये प्लस ओकर एपीआर लैंटेरे चाहेला डाले के लैंटेरे जोन गवर्नमेंट फिक्स करल बा एपीआर बोलीला सा वो चाहेला डाले के आजूते करके कैलकुलेट करके तब बोलिया आदमियों के हाँ है टेलीफोन वहाँ जब 30 मंथ क्रेजी में लेबा तो ओकर फी सिपा 1000 रुपये हो जाए हे देख है हर चीज वहाँ चाहेला तो कर पे करके तब 30 मंथ में से डिवीजे करब सर तब मौसालिते तो हर हो सिपा 100 रुपया 200 रुपया तब इस समय फोमाशो वहाँ मिल गल तब तू डिसाइड करिया कौन लावताज बा तू हर एस की कैश ले उबियन क्रेजी में ले तो ये सब चीजें जब मिल जाए तब सकबाई गो निमन डिसीजन करके
2: जैसे जैसे हायर परचेस बोल जा वो मैं जीरो डिपो से बोला जीरो डिपो ला जी डिपो ने कहला सा क्रेडिट सेल में 50% डिपो करके हायर परचेस में फौज जो तोड़ नहीं होल जब तक ने पे कर ला सा
1: जी
2: जब हायर परचेस कुछ बोल जला हम एगो मगाजे गईली एगो फौज किन ली क्रेडिट पर तब हाउ क्रेडिट कहां से मगाजे दे वाला ते को कंपनी फाइनेंशियल के दे वाला अब जब हम magasin c'est pour dire qu'il a c'est moi au contact qu'il a compagnie financière c'est
1: acha
2: voilà ah magasin mais pour dire qu'il a pour dire tout de gueule c'est un budget il dit ça tu pour dire ne servir que après voilà ça fit for you soit pour dire ne te servir que tu mon cher était que tu la payer que
1: le
2: problème ça pour dire ne c'est que mon cher était ne pick up hal misa limitation volte il a jab au crédit contacté que là magasin se produit qu'il a c'est pas que du seul compagnie c'est ou magasin qui paye quand il a produit quoi
1: j'ai
2: c'est moi hum contrat qu'elle a été clé grâce à quoi contrat qu'elle va aux institutions financières c'est au gars c'est qu'il va au contrat voté hein j'ai ou n'est payé qu'elle va faire maintenant compagnie c'est qu'il faut poursuivre qu'il est quand même hey trader va se produire qu'il l'a voir la produit quand même toute galvane et servi quand c'est pas que tout que tu as là how monthly repayment toi ça a payé quand tu que parce que admis pense que là devenir whole bat ne paye pas bon bah c'est possible que le parce que on va pas le voir parce que le boy là ça dit quand que c'est high purchase quoi down payment 30 mois crédit sale quoi ça crédit sale ha c'est que produit 100 rupees ha 50 rupees ça dépôt correct
1: j'ai
2: 50% va 50 rupees pas 50% ça après payer correct ha produit tout le voilà quand même crédit sale le voilà high purchase produit tout le voilà quand même tout le tout le en pour

0: d'après régulation financière, tu as un loan payé, tu as un produit. Il y a une différence entre crédit et sale. Alors, high purchase. Moi, je suis high purchase. Je suis un peu plus de temps. छा के चला पहुंचे करके आगे किने के नहीं क्या गो भोज की ना आज खाते बा को एक बता को लग देला सा तब आपको पूरा मिल जाए
1: तो चला आज के हमनी के आज के चर्चा कार्यक्रम है जे परि समाप्त होला तो हर मुद्दे आफ है मीतू जी
0: ऐसे बात है हर जैसे फेदिमिया होता कुप जिमोना होता आदमी लोग तीन जोक नहीं
1: जी
0: जैसे कुमोसो भगवान बोली हाँ वाह एंटी देखे के चला भोज देखे के कुछ छाता रिपेमेंट कैपेसिटी देखे के एक स्मार्ट कस्टमर हो जब किने के देखे के जाके उठा के नाला घरे देखे के सबसे ज्यादा गांव ची देखा ऑफ द सेल सर्विस देखा तब किया
1: जयश्री जी
2: किने के आगे चाहे ना देखे के अपन बजट अपन फैमिली नीड्स इसकी पोजुआ निश्चित है अब किने के अभी अब ये किन कि सकब ताले बाद में किने अपन निमन से बजट करब निमन से खरीदारी करब स्मार्ट कस्टमर बनब तब प्रॉब्लम नहीं हुई और जैब मगा समय तो निमन से रौसैमो लिया सकब जाए तीन चार हला जैब पाफे नौए जाके निमन से रौसैमो लेके और ये फ्रेश फ्रेश से मैं खरीदारी नहीं कर
1: तो चला आज की चर्चा कार्यक्रम है जे परि समाप्त होला जैते जैते हमने के जितना हमने के माता लोग हवन आप सब लोगन के मातृ दिवस की शुभकामनाएं आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद
2: नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते।, नमस्ते।

अतिथि को नमस्कार। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का भी समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। शब्द मेरी सोच से आगे निकल गए थे, यानी मैंने भावनाओं में बहकर वो कह दिया जो मेरा इरादा नहीं था। संसद में मंगलवार को सांसद जुआना बेहोंशे के साथ हुई तीखी बहस के बाद श्रम मंत्री रिजा उतिम ने फेसबुक पर यह बात कही है। संसदीय प्रश्नकाल के दौरान एफएमपी की सदस्य ने मंत्री की मां की देखभाल के लिए रखी गई एक बांग्लादेशी महिला कर्मचारी का मामला उठाया था और ये संकेत दिया था कि उसे कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। रिजा उतिम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और आपा खोते हुए विशेष रूप से कहा था मुपेना जिसोकोलो। आज सुबह तड़के प्रकाशित अपने संदेश में मंत्री ने अपनी मां पर हुए हमलों का जिक्र किया जो उनके अनुसार घिनौने थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोलों शब्द का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त किया। याद दिला दे कि संसदीय कार्यों के दौरान स्पीकर ने व्यवस्था बनाई थी जिसके बाद रिजा उतिम ने अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लिया था। आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हज़रत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। MFDC के CEO केविन गति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। और विदेश में इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के खिलाफ नए हमलों से पहले दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्सों के लिए निकासी आदेश जारी किए हैं और इन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। 17 अप्रैल को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से ये सबसे बड़ा निकासी आदेश है जो लेबनानी क्षेत्र के लगभग 14% हिस्से को कवर करता है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त।

0: फिर थोड़ी देर में शोक समाचार। कालीमाई रोड दीपिने में 28 साल के 28 ईयर्स ओल्ड के श्री लीलेश्वर आमाता, जो कौशिक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके पिता श्री परमेश्वर आमाता के घर कालीमाई रोड दीपिने से उठाकर पितों के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू फ्लॉम्बायों इजिडो रोज में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंदेव जोवाता, जो गासो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी मां श्रीमती देविका जोवाता के घर एवेन्यू फ्लॉम्बायों इजिडो रोज से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। तमिल टेम्पो रोड सुरीनाम में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री धीरज बंचाराम, जो चांद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर तमिल टेम्पो रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: शम्मे फरोजा।

0: जा रहे हैं, इसका उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लज़्ज़त ईमान। उसके बाद आप ईद का खुतबा भी समाप्त कर पाएंगे।
1: नहमदुल्लाह अल करीम व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल जलील व अला इब्राहीम अल खलील व अला इस्माईल अल अज़ीम व अला आलिही व अस्हाबिही अल मुअज़्ज़मीन अल मुकर्रमीन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हमद सना के बाद आज़िज़ानी ग्रामी क़द्र, जैसा कि मालूम है कि आज ईदुल अधा का अज़ीम दिन है। ये दिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस तस्लीम व रज़ा की याद दिलाता है जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती, जो तस्लीम और रज़ा की एक लाजवाल दास्तान है। सो मैंने आज के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लज़्ज़त ईमान। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड द स्वीटनेस ऑफ ईमान, द स्वीटनेस ऑफ फेथ, द स्वीटनेस ऑफ बिलीफ, लज़्ज़त एतिकाद। जिस तरह मादी अशिया बिरयानी वगैरह का अपना एक टेस्ट होता है, तो इसी तरह ईमान का और आमाल का भी अपना एक मज़ा होता है, उसकी भी एक मिठास, चाशनी और स्वीटनेस होती है। और जब मोमिन को ईमान की लज़्ज़त नसीब हो जाए, ईमान की चाशनी और मिठास नसीब हो जाए, ईमान का मज़ा वो चखने लगे, तो फिर वो अल्लाह की हर तकदीर पर राज़ी होता है। और इसके अल्लाह पाक ने

और अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको चार उसूल बताए हैं जिनकी बिना पर ईमान का मज़ा, ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत, द स्वीटनेस ऑफ ईमान मोमिन को नसीब होता है। नंबर वन, रिदल्लाह रब्बा, टू प्लीज विद अल्लाह अलमाइटी एज ए सस्टेनर, एज ए मेंटेनर, एज ए रब, अल्लाह से अल्लाह के रब होने पे राजी होना, खुश होना। इसका मतलब शारहीन हदीस ने ये लिखा कि जिस तरह जब हम ठीक हों, तंदुरुस्त हों, तो अल्लाह से हम खुश होते हैं, राजी होते हैं, वैसे ही हमें बीमारी में भी अल्लाह से राजी और खुश होना चाहिए। बीमारी का इलाज मेडिसिन से हो या बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज ऑपरेशन से हो, मोमिन उस पे भी राजी है अल्लाह से और इस पे भी अल्लाह से राजी है। वो गरीब हो, तंग दस्त हो, तब भी अल्लाह से राजी है, और वो अमीर हो, माल और दौलत का मालिक हो, तब भी वो अल्लाह से राजी होता है। नंबर टू, रिदल इस्लाम दीना, टू प्लीज विद इस्लाम एज ए रिलीजन, इस्लाम से एज ए मजहब खुश होना, इस पर खुशी मनाना कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता की, इस्लाम की अजीम नेमत अता की। अल्लाह ने फरमाया इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ट्रू रिलीजन विद अल्लाह इज इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो सच्चा मज़हब है वो फ़कत और फ़कत इस्लाम है। इस्लाम के हर कानून को मानना, इस्लामिक लॉज को फॉलो करना, ये इस्लाम पर एज ए रिलीजन राजी होना है। और नंबर थ्री, रिदा बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबीयन व रसूला, टू प्लीज विद सैयदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह, एज ए अपोसल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर राजी होना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी रसूल होने पर राजी होना। इसका मतलब ये है कि आपसे मोहब्बत, आपके आलो असहाब से मोहब्बत, आपका अदब और आलो असहाब का अदब, फिर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का अदब, माँ बाप का अदब, अलगरज जो भी अदब के काबिल है और जो हुजूर से कनेक्ट है उसका अदब, ये सब हुजूर सलाम के नबी और रसूल होने पर राजी होने के ज़ुमरे में शामिल है। और नंबर फोर, रिदा बित तकदीर, टू प्लीज विद डिवाइन डिक्री, विद डिवाइन विल, तकदीर इलाही पे राजी होना, अल्लाह की तकदीर पे राजी होना। जिंदगी यकसा नहीं होती, जिंदगी में जहां आसानियां हैं वहां दुश्वारियां हैं, जिंदगी में जहां अपनों की दुआएं हैं, अपनों के फूलों के हार है, तो वहां आसिदीन, दुश्मन और आदा के कांटे भी हैं,

वहां उनकी तकलीफें भी हैं। दुनिया में जहां सुकून देने वाले हैं तो वहां तकलीफ देने वाले भी हैं। मोमिन उसमें भी खुश होता है, राजी होता है, अगर कोई गले में फूल का हार डाल दे, कोई गले लगा ले, और मोमिन उसमें भी राजी और खुश है कि कोई नफरत की निगाह से देखकर अपना मुंह फेर ले, कोई किसी तरीके से फकत अपने नफ्स के लिए, फकत शैतान को खुश करने के लिए मुंह मोड़ ले, मोमिन उस पे भी राजी है। जब ये कैफियत होती है तो फिर इंसान का हाल ये होता है कि वो दुआलम से बेगाना हो जाता है, दुआलम से बेगाना हो जाता है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने फरमाया, दुआलम से करती है बेगाना दिल को, आजब चीज है लज्जत आशनाई, जब लज्जत आशनाई नसीब होती है, लज्जत ईमान नसीब होती है, तो फिर इंसान दुआलम से बेगाना होता है, न उसे अपनों की परवाह होती है, न उसे गैरों की परवाह होती है। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम उसूल की रोशनी में देखते हैं, आपकी लाइफ की स्टडी करते हैं, आपके जिंदगी के दरख्शिंदा सितारों को देखते हैं, दरख्शिंदा पहलुओं को देखते हैं, तो हमें आपकी जिंदगी के एक एक सफ़े पर, जिंदगी के हर हर वर्क पर रजा की दास्तान नजर आती है। वो अपने रब से भी राजी है, रब ने जिस हाल में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा उस पे वो राजी रहे। नमरूद ने आपको आग में डाला, वो आग के अगर परिंदा हवा में उड़ता तो वो जल के राख हो जाता, और आपको मालूम है कि उस वक्त सैयदना इब्राहिम की एज क्या थी। एक कौल ये है कि उनकी उम्र शरीफ थी 16 साल, 16 ईयर्स, सिर्फ फकत 16 साल, बिल्कुल जवान। इसलिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के नौजवानों के लिए भी रोल मॉडल हैं, जो टीनेजर्स हैं, इस एज के नौजवान हैं, वो स्पेशली सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शबाब और आपके शबाब के मुख्तलिफ पहलुओं को पढ़ें, इसलिए कि वो एक नौजवान को गाइड करती है कि उसे अपना शबाब किस तरह गुजारना है। चूंकि वो अल्लाह के लिए आग में जाना था, आप उस पर भी खुश थे, और फिर जब अल्लाह ने आग को बाग बना दिया, गुले गुलजार बना दिया, आप उस पर भी अल्लाह से खुश थे। देखें, एक तरफ आग है उस पर भी रजा है, एक तरफ फूल है उस पर भी राजी है। और डॉक्टर इकबाल ने बहुत खूब बयान किया, आपने फरमाया कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक जानिब अकल थी, एक जानिब इश्क था। जाहिर है कि अकल आग में चलांग नहीं लगा सकती, अकल कहती है जल जाओगे, खत्म हो जाओगे, लेकिन इश्क कहता है कि अगर आग में जाना महबूब के लिए है, आग में जाना उसकी रजा के लिए है, तो फिर ये आग नहीं है, ये रजाए महबूब है, ये आग नहीं है, ये रजाए महबूब है। फिर उसका इनाम भी डॉक्टर इकबाल ने बयान किया, फरमाया, आज अगर हो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान का जहूर हुआ, उनकी रजा, यहां ईमान रजा के माने में है, जब वो अल्लाह की तकदीर पे राजी हो गए, गैरों के जुल्म पे राजी हो गए, गैरों के सितम पे राजी हो गए, गैरों

लोगों की तकालीफ पे राजी हो गए, तो फिर खुदा ने, अल्लाह ने उस रजा का सिला ये दिया कि वो जो आग थी उसको गुलिस्तान बना दिया। ये फकत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़तन हुआ और ताजदार कायनात के बहुत से गुलामों के लिए करामतन हुआ, जिन्होंने अकल को पशे पुश्त पे रखा, अकल की नहीं सुनी, वो लॉजिक पे नहीं आए। आज का नौजवान बात बात पे लॉजिक का रेफरेंस देता है। तुझे क्या मालूम लॉजिक क्या है, तुझे क्या मालूम मंतिक क्या है, तुझे क्या मालूम अकल क्या है, तुझे क्या मालूम फलसफा क्या है। सब कुछ कदम नाज़े मुस्तफा पर कुर्बान करना, यही कुर्बानी है। आज कुर्बानी का अजीम दिन है। इस दिन सबसे बड़ा अमल, सबसे अजीम अमल कुर्बानी है। लेकिन ये फकत जानवर की कुर्बानी नहीं। सूफिया कहते हैं कि जानवर पे जब छुरी चले तो आप ये समझें कि ये मैं अपने नफ्स पे छुरी चला रहा हूं। आज हमारी सोसाइटी का जो हाल है, अवाम हो या खवास हो, वो सबके सामने है। ये इसलिए है कि हमारी कुर्बानियां फकत रस्मी है, वो हकीकत कुर्बानी हम भूल गए, रस्मों में खो गए, रिवाज में खो गए। कुर्बानी एक अजीम हकीकत है। कुर्बानी को अल्लाह की राह में सेक्रीफाइस का मतलब यह है कि इंसान अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, अल्लाह की राह में निसार कर दे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम पर, तौहीद पर डटे रहे, वो तौहीद से राजी रहे जो अल्लाह पाक ने उन्हें अता किया। वो ताजदार कायनात की अजीम रिफत, अजीम नबूवत और अजीम रिसालत के दाई भी रहे और उस पर अल्लाह से राजी भी रहे। इसलिए सूफिया ने मुकाम इब्राहिम से मुकाम मुस्तफवी की तफहीम की है। लोगों को समझाया है कि जब मुकाम इब्राहिम का मुकाम ये है, उसका स्टेटस ये है, अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ। तो जब मुकाम इब्राहिम का आलम यह है तो फिर मुकाम मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। ये तफहीम है मुकाम मुस्तफ़ा की, ये तफहीम है मुकाम इब्राहिमी से मुकाम मुस्तफ़वी की। तुम्हें बता ये रहा था कि शबाब में, जवानी में ये इम्तिहान आए, लेकिन आप हर मुश्किल का डट से मुकाबला करते रहे। हक से न दाएं हटे न बाएं हटे, नबी न कभी कोई कंप्लेन की न कोई शिकवा किया, इसलिए कि इश्क में शिकवे नहीं होते, इश्क में फिदाइयत है, इश्क में शिकवे नहीं है, इश्क में सब कुछ लुटा देना है, इश्क में कुछ नहीं होता सिवा जलवे यार के, सिवा महबूब के जलवों में गुम होने के। इसलिए आला हजरत ने फरमाया करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये जुबान हाल थी, जिन्होंने अपने महबूब के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। वतन की कुर्बानी का वक्त आया तो वतन को कुर्बान किया, जान की कुर्बानी का वक्त आया तो अपनी जान को कुर्बान किया। बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, लाडले बेटे को कुर्बान करने का टाइम आया, उन्हें कुर्बान किया। अलगरज उनकी जिंदगी में फकत एक कुर्बानी नहीं है, एक कुर्बानी नहीं है, उनकी जिंदगी में इब्तिदा से इंतहा तक सारी जिंदगी सक्रिफाइस और कुर्बानी है। और ये सब कब पॉसिबल होता है? हमारे पाँव में तो अगर कांटा भी चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। ये सब कब

बर्दाश्त हो सकता है, ये उस वक्त बर्दाश्त होता है कि जब इंसान अल्लाह से राज़ी हो जाए, उसकी तकदीर पे राज़ी हो जाए, फिर उसकी अलामत ये होती है कि वो सब पे राज़ी होता है, वो सब पे राज़ी होता है, जिस हाल में वो रखे वो उस पर खुश होता है, जिस हाल में वो रखे उस पर खुश होता है। इस पे मैं एंड में सही मुस्लिम की रिवायत कोट करता हूँ, जिसके रावी ताजदार कायनात के अजीम चचा जान अम्मे मोहतरम सैयदुना अब्बास रदी अल्लाह तआला ने, आपने फरमाया कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक तअमल ईमान मन रदी बिल्लाह रब्बा वबिल इस्लाम दीना वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, कि उसने ईमान का मज़ा चख लिया जो अल्लाह के रब होने पर राज़ी हुआ, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हुआ और सैयदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी रसूल होने पर राज़ी हुआ। हज़ टेस्टेड द स्वीटनेस ऑफ फेथ, हु इज़ प्लीज्ड विद अल्लाह एज ए सस्टेनर, एज ए मेंटेनर, एज ए रब, विद इस्लाम एज ए रिलीजन एंड विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह, एज ए अपोस्टल ऑफ अल्लाह। इसमें ताजदार कायनात ने रज़ा की ये सारी अकसाम बयान की और साथ साथ उसका इनाम भी बताया। आज हमारी ज़िंदगियों में मज़ा नहीं है, आज हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, आज हमारी लाइफ में कोई पीस नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि हम अल्लाह की तकदीर पर, अल्लाह की रबूबियत, इस्लाम के मज़हब होने और ताजदार कायनात के नबूवत और रिसालत पे राज़ी होने के उस अजीम लेवल से महरूम हो गए, उस मुकाम से महरूम हो गए जिसमें इंसान को लज्जतें नसीब होती है, जिसमें उसको चाशनियाँ नसीब होती है, जिसमें उसको मिठास नसीब होती है, जिसमें उसे वो नसीब होता है जिसमें वो हर तलखी को भूल जाता है, हर सख्ती को भूल जाता है, हर तकलीफ को भूल जाता है। इस ज़माने में भी ऐसे औलिया हैं और हुए, ऐसे उलमा हुए जिन्होंने ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर को मना किया कि वो हमें कोई नशे का इंजेक्शन न लगाएं। क्या ये पॉसिबल है? बहुत से वाकयात हैं, उसमें ख़ुद मेरे मुर्शिद गिरामी भी हैं, बग़ैर किसी नशे के इंजेक्शन के ऑपरेशन होता रहा और वो अपनी तस्बीह पढ़ते रहे, दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। ये कैसे पॉसिबल है? हमारा तो एक कांटा भी चुभ जाए तो चीख उठते हैं, वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, कोई नशा नहीं है और ऑपरेशन में भी ज़ुबान पर दुरूद व सलाम है, ऑपरेशन में भी हुजूर पर सलात व सलाम है, अल्लाह का ज़िक्र है। ये उस वक्त पॉसिबल होता है कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा में फना हो जाए। मैंने कहा कि मेडिसिन से इलाज हो तो उस पर राज़ी होना भी अल्लाह से राज़ी होना है, ऑपरेशन से इलाज हो उस पर राज़ी होना भी अल्लाह से राज़ी होना है। मोमिन हर हाल में अल्लाह से राज़ी होता है, मोमिन हर हाल में अल्लाह की रज़ा की जस्तजू में होता है, तलब व तलाश में होता है। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगियों में वो इनकलाब बपा करें जिससे हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, पीस आ जाए, अमन आ जाए, मोहब्बत आ जाए, खुशगवार माहौल पैदा हो। और उसका आगाज़ आज ही से करें, आज ही से सारी नफ़रतों को मिटा दें, सारी दुश्मनियों को ख़त्म करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करें, दरगुजर करें, माँ बाप के कदम चूमें, उनके हाथ चूमें, बहन भाइयों से मिलें, अपनों से मिलें, गैरों से मिलें। और ईद के इस मौके पर

मसर्रतों से भरी राह गुज़र मुबारक हो, आप सबको नया नगर मुबारक हो। कुर्बानी करना सुन्नत है और रज़ाए इलाही का बाइस है। एक साल बाद बकरीद आई है, छोटे बड़े सब खुश है। मवेशियों के बाज़ार में बहुत भीड़ थी। बकरीद को भुना गोश्त, कोरमा, कोफ्ता, कबाब, पुलाव, बिरयानी और मज़ेदार खाने तैयार होते हैं। जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करना चाहा और उनके हलकों पर छुरी रखी, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है, अब आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह इस दुम्बे को ज़बह कर दीजिए। अल्लाह को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मकसूद न थी, बल्कि ये देखना था कि कहीं अल्लाह की मोहब्बत पर बेटे की मोहब्बत तो गालिब नहीं आ गई। बकरीद में अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बह करके हम ये सबूत देते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत पर हम हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार।

अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी रहमत बहुत वसी है, अल्लाह हर फ़िक्र परेशानी से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ए नहायत रहम करने वाले, ए बहुत मेहरबान, हमारे दिलों पर अपनी तरफ़ से इत्मीनान नाजिल फरमा और हमारी रूहों को मोहब्बत, नूर, रज़ा और यकीन से भर दे। हमसे दिलों की थकन, गमों का बोझ और सीनों की तंगी दूर फरमा और इस रात को हमारे लिए रहमत, राहत, दिल

का सुकून नफ्स की हिदायत और रास्ते की रोशनी का ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह हमारे लिए अपने खैर के दरवाज़े खोल दे और हमारे मामलात आसान फरमा, हमारे रिस्क उम्रों और औकात में बरकत अता फरमा और हमारे कदमों आमाल और गुफ्तगु में खैर व बरकत पैदा फरमा, हमें पाकिज़ा और कुशादा रिस्क अता फरमा, हिदायत वाला दिल मुतमईन नफ्स, ऐसी दुआ जो रद्द न हो और ऐसा अमल जो कबूल हो नसीब फरमा, आमीन। और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तूने रहमत की नज़र फरमाई, तो वो सआदतमंद हो गए जिन्होंने तेरा ज़िक्र किया तो दिल मुतमईन हो गए, और जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया तो तू उनके लिए काफ़ी हो गया। अगर हमारे दिलों में कोई खौफ हो तो उसे अमन और मोहब्बत से बदल दे, और अगर हम में कमज़ोरी हो तो हमें कुव्वत अता फरमा, और अगर हमारी दुआएं मुअल्लिक हों तो हमें उनकी कबूलियत की खुशखबरी अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।

अल्लाह हमें हमारे अहलो अयाल औलाद अजीज़ों घरों वतन और माल में बरकत अता फरमा और हमारे लिए दुनिया व आखिरत की भलाई लिख दे। अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों को नूर से भर दे, हमारी रातों को मानूस और पुरसकून बना दे और हमें अपनी इताअत पर साबित कदम रख। या अल्लाह ईद के अयाम को हमारे लिए मग़फ़िरत रज़ा मोहब्बत और अपनी क़ुर्बत की रात और दिन बना दे। ऐ सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी तादाद में जितनी तेरी मखलूक है, जितनी तेरी रज़ा है, जितना तेरे अर्श का वज़न है और जितनी तेरे कलमात की स्याही है। आमीन या रब्बल।

तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यौमुन्नहर में इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपनी सींग, बाल और खरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से कबल खुदा के नज़दीक मकाम मकबूल में पहुँच जाएगा। बहवाला जामे अत-तिर्मिज़ी।

फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम ज़बह करो तो अच्छी तरीके से ज़बह करो और तुम अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लिया करो और ज़म्बिया को आराम दिया करो। सही अल-बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी कुर्बानी नमाज ईद अदा करने से पहले ज़बह की उसे चाहिए कि वो उसकी जगह दूसरी कुर्बानी करे, और जिसने नमाज से कबल कुर्बानी ज़बह नहीं की उसे चाहिए कि वो नमाज ईद के बाद ज़बह करे।

0: एमबीसी की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद कुर्बान ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो।
1: मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल।
2: सामईन, ईद उल अधा की पुरमसरत खुशियों पर आप और आपके अहले खाना को एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद एमबीसी की पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदके आपकी ज़िंदगी को खुशियों, बरकतों, सेहत, कामयाबी और ईमान की रोशनी से भर दे, आमीन। क़ुरबानी का ये अजीम जज्बा हमें ईसार, मोहब्बत और उख़ुवत का दर्स देता है। खुदा करे ये ताउम्र कायम रहे, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादात, क़ुरबानियाँ और नेक आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन आमीन या

रब्बल आलमीन। सामईन कराम, ईद पर मबनी ये खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में सलाम का नजराना पेश करने जा रहे हैं हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। उम्मीद है इस प्रोग्राम से आपको दिली खुशी हुई। आज का दिन और आने वाली ईद के दो दिन आपके लिए खुशी और मुसर्रतों और बहार और फूल की खुशबू की तरह महकती रहे, यही हमारी दुआ है। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: समाचार विधिमा के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी को नमस्कार। मॉरिशस में टेलीकम्युनिकेशन एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ICTA ने देश भर में 3G मोबाइल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों के अनुरोधों के बाद लिया गया है, जिन्होंने पहले ही अपने नेटवर्क को हटाना शुरू कर दिया है। इसे पूरी तरह और अंतिम रूप से बंद करने की समय सीमा देर 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए जगह खाली करना है, ताकि अधिक तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। हालांकि अधिकांश मॉरिशस वासियों के पास पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन है और उन्हें कोई बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों के मालिकों को इसके लिए तैयार रहना होगा। एक बार नेटवर्क बंद हो जाने के बाद केवल 3G के अनुकूल फोन और साथ ही कुछ व्हीकल ट्रैकर्स या कनेक्टेड डिवाइस भी पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगी। आज ईद उल अधा मनाई जा रही है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। ये दिन इस्लाम का सबसे खास और मुकद्दस त्यौहार है। ये त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से कुर्बानी, समर्पण और अल्लाह के प्रति अकीदत का पर्व है। इस मुबारक मौके पर मुस्लिम कौम के लोग अपने परिवार, अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ खुशियाँ बाँटते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। पिछित रिविया में स्थित बेट ऑनलाइन सट्टा केंद्र में हुई हिंसक डकैती की जांच में एक नया मोड़ आया है। पिछित रिविया की CID और FIU वेस्टर्न ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उस प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर इस साजिश में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई की है। चाकू से लैस दो व्यक्ति अचानक आउटलेट के भीतर घुस आए और 2 लाख रुपये से भरा एक लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशियर को कोई चोट नहीं आई। जांच के दौरान आउटलेट के CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। शुरुआती इनपुट्स के अनुसार एक कर्मचारी को बिना कैश काउंटर में पैसे जमा किए सट्टा लगाते हुए देखा गया था। बताया जा रहा है कि चारों संदिग्धों ने नकाबपोश डकैती और इस साजिश में अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। प्लानमानियों के रहने वाले एक 44 वर्षीय व्यक्ति से कनाडा इमिग्रेशन से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी के मामले में FCC द्वारा पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध ने कथित तौर पर कई पीड़ितों को कनाडा में नौकरी दिलाने और वहां भेजने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे थे। कुल ठगी गई राशि लगभग 3.5 मिलियन रुपए आंकी गई है। उसके घर पर की गई छापेमारी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। FCC को ऑनलाइन फेक प्रोफाइल का इस्तेमाल किए जाने का भी संदेह है। अन्य पीड़ितों से भी FCC के समक्ष सामने आने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। विदेश की खबरों में, केन्या की राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गिलगिल के एक बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 16 छात्रों की मौत हो गई है। घायल होने के बाद अन्य 74 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और UK की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के अनुसार 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर शुरू किए गए आक्रमण के बाद से अब तक लगभग 5 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की

0: जेलेंस्की ने कहा था कि 2022 से अब तक यूक्रेन ने 55,000 सैनिक खोए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रिशलियो में 80 साल के 80 years old के श्री केवल चेदी, जो वाल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे रिशलियो से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. सोल्फेरिनो नंबर 2 वाक्वा में 77 साल के 77 years old के श्री माधो राधा, जो छोटे नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर सोल्फेरिनो नंबर 2 वाक्वा से उठाकर बालों सोल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. फ्रांस में 75 साल के 75 years old के श्री महेश दुकारन, जो पहले मोसेमों कुंजू प्लैन दे पापाए रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे फ्रांस से उठाकर जों शोल दे विल टनल्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। कालीमाय रोड दीपिने में 28 साल के 28 years old के श्री लीलेश्वर अमाता, जो कौशिक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पिता श्री परमेश्वर अमाता के घर कालीमाय रोड दीपिने से उठाकर पितों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. एवेन्यू फ्लैम्बॉयंट इजिडोर रोज में 48 साल के 48 years old के श्री आनंदेव जोवाता, जो गासों नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 3 बजे उनकी मां श्रीमती देविका जोवाता के घर एवेन्यू फ्लैम्बॉयंट इजिडोर रोज से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 p.m. तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम में 66 साल के 66 years old के श्री धीरज बंचाराम, जो चांद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: सौंदर्य लहरी, सौंदर्य लहरी।
3: శ్రోతలందరికీ మా వందనములు. మీ అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని కోరుకుంటూ నేటికి మీ సౌందర్య లహరి కార్యక్రమంలో మీ చెలి గిరిశాలిని మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నది. ఈరోజు గురువారం, మే నెలకి 28వ తేదీన. ఈ మే మాసానికి చివరి వారానికి చేరి ఉన్న మీకు చలికాలం మొదలైంది. మధ్యలో చాలామందికి వ్యాధులు, జలుబులు, జ్వరం వస్తున్నాయి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంకా ఈ మాసం చివరి రోజుకు మాతృ దినోత్సవం అని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ వారమంతా ఈ ప్రత్యేకమైన దినానికి, అంటే అమ్మ దినానికి అంకితం చేస్తున్నాం. అయితే నేటి కార్యక్రమం అమ్మ మీదే.

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum. Welcome to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
7: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। चलिए गुरुवार 28 मई आपकी पसंद इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? और अभी से लेकर 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और जहां कहीं से भी साथ जुड़े हैं बस साथ देते रहिएगा। खूबसूरत गाने तराने आपके लिए हम चलाएंगे और हमारा नंबर तो आपको याद ही होगा, 4028085 आपके फ़ोन कॉल्स के लिए। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5251700505 पर। तो चलिए उपासना फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ आज की शुरुआत करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: आओ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूँ। उपासना फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत रफ़ी साहब लता जी की आवाज़ों में बेहतरीन शुरुआत हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले गाना जो है शिरीन फरहाद इस फिल्म का तराना है और गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। यकीनन जो समय बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता, इसलिए कहते हैं ना जो कुछ है बस आज में है, अपने आज को जिए। और ये जो गाना है कारोलिन से सीता देवी इस गीत की फरमाइश कर रही है। सीता देवी जो है इस समय हमारे साथ जुड़ी है और पति धीरज राम तोहल के नाम इस गाने की फरमाइश इन्होंने की है। और यहाँ पर जो है इसी गाने के साथ श्रोताओं हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर। 2:57 ऑलरेडी होने को है और इसी गीत के साथ समाचार

और समाचारों के उस पार फरमाइशी गीतों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाएंगे, तो आपके कॉल्स और डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस हमें यूं ही मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारा जो टिकटॉक पेज है उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और टिकटॉक पर हमारे रेडियो मॉरिशस के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: गुरुवार 28 मई, घड़ी मिला लीजिए 3 बज रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं समाचार की ओर। समाचारों के उस पर फरमाइशी गीतों का सिलसिला हम जारी रखेंगे।

0: Jason Deshan Shubhde Samachar Aapse Ashita. Good afternoon.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सबसे पहले स्थानीय खबरें. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित शिव महापुराण की कथा में भाग लिया. इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है. ये कथा रविवार तक चलेगी. पिछितिया में स्थित बेट ऑनलाइन आउटलेट में हुई लूटपाट मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है. पिछितिया के सीआईडी और एफआईओ वेस्टर्न की डी की

0: टीम ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में जुवा केंद्र का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर वारदात में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चाकू से लैस 2 लोग इस बेट ऑनलाइन केंद्र में घुस आए और करीब 2,00,000 मॉरिशन रुपए से भरा लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशियर को कोई चोट नहीं पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। शुरुआती जांच में एक कर्मचारी को पैसे कैश बॉक्स में जमा किए बिना जुआ खेलते हुए देखा गया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने इस नकाबपोश लूट और साजिश में अपनी अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। मामले की जांच अभी जारी है। मॉरिशस में दूरसंचार सेवाएं अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही हैं। इक्टा यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के पूरे द्वीप में 3G मोबाइल सेवाओं को चरमबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों की मांग के बाद लिया गया है, जिन्होंने अपने नेटवर्क को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 3G सेवा को पूरी तरह बंद करने की अंतिम समय सीमा वर्ष 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को तेज और अधिक भरोसेमंद इंटरनेट सेवाएं मिल सकें। हालांकि अधिकांश मॉरिशन पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को तैयारी करनी होगी। 3G नेटवर्क बंद होने के बाद केवल 3G पर चलने वाले मोबाइल फोन, कुछ वाहन ट्रैकर्स और अन्य कनेक्टेड डिवाइस हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायली सेना के अनुसार दक्षिण लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए गए। लेबनन के प्रमुख शहरों में से एक टायर से सामने आए वीडियो में धूल से ढके लोग ढही हुई इमारतों के आसपास जमा दिखाई दे रहे हैं। बुधवार कल को इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने की अपील की थी, जो इजरायल सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। IDF ने चेतावनी दी थी कि वह बेहद ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। इसराइल और ईरान समर्थित शिया संगठन हिजबुल्ला दोनों ने एक दूसरे पर 17 अप्रैल से लागू युद्ध विराम का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। लेबनन की सरकारी समाचार के अनुसार गुरुवार सुबह यानी आज टायर शहर और उसके पूर्वी इलाके में 2 बड़े इसराइली हमले हुए। टायर से प्राप्त फुटेज में दिखाई दिया कि रात भर विस्फोट और आग की लपटें वहां पर सुलग रही थी, जो आज सुबह तक जारी रही। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद और नमस्कार।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद। चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन आज ईद मना रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी बधाई हमारी पूरी टीम की ओर से। और चलिए इसी के साथ इस आपकी पसंद प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं। आफेज जी लावेनिया से हमारा साथ दे रही हैं। उनके बेटे दिलानी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। दिलानी जी, आपको जन्मदिन की बधाई आपके मामा आफेज की ओर से। आपकी बेगम है साफिया, साथ में है मूसा, दाइफा, बहन है रेशमा, रुसीदा, आसिफ, सभी बाबा साहेब परिवारों की ओर से दिलानी जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और यहाँ पर शिवरानी डीप रिवर से हमारा साथ दे रही है। उनकी बहू तामिनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तामिनी, आपको बर्थडे जन्मदिन की शुभकामनाएं आपकी सासू माँ शिवरानी की ओर से। आपके पति है प्रकाश, साथ में आहाना है, आध्या है, रीता है, गोपी है, दावीना है, सभी परिवारों ने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी हैं। और जितने भी सुनने वाले आपके परिवार के सदस्य आज जन्मदिन मना रहे हैं, हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को, और ये तराना आप सभी के नाम।

0: चलिए, जन्मदिन का मौका तो खास होता ही है और ऊपर से डेडिकेशन आ जाए, जन्मदिन का रेडियो पर नाम सुनने को मिल जाए तो मानो खुशी और भी बढ़ जाती है ना। तो चलिए, ऐसी ही खुशी आप किसी को देना चाहते हैं तो आप हमारा साथ दीजिए यहाँ पर, आप उनके नाम डेडिकेशन कीजिए, आपकी पसंद इस प्रोग्राम में,
1: आपकी पसंद।
0: और ऑलराइट, आपकी पसंद में बढ़ेंगे हम इस अगले गाने की ओर। अगला जो तराना है, खासकर ज्योति जी आपके नाम हम करेंगे, यूनियन पार्क से साथ दे रही है। गाना जाता है प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्टा के नाम। कह रही कि गाने बड़े अच्छे हैं, थैंक यू सो सो मच ज्योति जी। और ये अगला तराना आपके पूरे फैमिली के नाम हम करेंगे। सुदेवी जी वाकवा से साथ दे रही है, गुड आफ्टरनून आपको भी सुदेवी जी, प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है, थैंक यू सो मच। अगला गाना त्रियोली की दीदी लालिता के नाम, कुशल फैमिलीज के लिए, आत्माराम भैया है, दीदी सुनीता है, शोभा है, देवीना है, मालिंगा के सभी राम रतन परिवार और सभी माओं के लिए ये अगला गाना आपकी ओर से। ऑलराइट, तलाश फिल्म का ये गीत है, जाता है आपकी ओर से सभी माँ के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, यहाँ पर हर एक मौके के लिए कोई ना कोई गाना ज़रूर बना है, और जब भी वो मौका ख़ास आता है तो ऐसे ही ख़ास गानों की फरमाइश होते रहती है। अभी के लिए बारी है इस अगले गाने की। इस समय ज्योति जी शाते बनारस से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है इनकी ओर से आशनी के नाम, रेखा के नाम, सुरेखा के नाम, सभी मधव परिवार जो हर रोज़ की तरह आज भी इस प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अगला गाना बेटा अश्विन आपके लिए, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेस्ट विशेज पापा विजय और मामा कविता की ओर से अश्विन जी आपको। साथ में अनुषा है, वर्षा, मानव, संजीव, इलियाना, शेन, अमायरा, सभी परिवार, सभी तिलक परिवारों की ओर से अश्विन जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो अगला तराना है आपके नाम, और यही तराना विजय तिलक जी की ओर से इनके यहाँ के सीनियर सिटीजन्स के सभी सदस्यों के नाम भी।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, अपने तो अपने होते हैं और अपनों के बिना जीवन अधूरा है, अपनों के बिना ज़िंदगी का ये सफ़र अधूरा है। और जब भी कोई ख़ास मौका होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई ख़ास तैयारियां हम कर रहे होते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, जैसे कि इस सप्ताहांत सभी जो है हम सभी मातृदिवस मनाने वाले, तो ऐसे मौके पर एक दूसरे से मिलने से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती है, कुछ गिले शिकवे होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। और अपनों से मिलते रहना चाहिए, अपनों से जो है अच्छी अच्छी यादें बनाते रहना चाहिए, तभी जाकर तो रिश्तों में प्यार मिठास अपनापन होता है, है ना। चलिए अब बारी है इस अगले गाने की। कश्मीर की कड़ी फिल्म का ये जो अगला तराना है, रफ़ी साहब साथियों की आवाज़ों में कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भाई माहिन जी की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है। हम बिल्कुल ठीक है भाई माहिन, उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल अच्छे हैं। गाना जाता है सभी जगमोहन परिवार के नाम, हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर आपकी दीदी मान के लिए और जगमोहन परिवार जो इस समय हमारा साथ दे रहा है उनके लिए भी ये गाना बस यहाँ पर चल पड़ा। और ग्रॉग्रुप से सुनीता जी हमेशा हमारा साथ देती है, तो ये गाना सुनीता जी आपके लिए भी।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए इस सप्ताहांत जो मातृ दिवस हम मनाने वाले हैं उसके संदर्भ में भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई गाना हो जाए माँ पर, तो चलिए जो अगला तराना है, ये तो सच है कि भगवान है हम साथ साथ है फिल्म का ये गीत जाता है यहाँ पर लेट माँ, यानी कि अपनी माँ को याद करते हुए ये जो गाना है इसकी फरमाइश आई है संगीता जी की ओर से, सविता है, शकीला, माया, चांदनी, श्यामा, ज्योति, आरती, सैंपियर से सभी अपनी माँ को याद करते हुए इन्होंने इस खूबसूरत गाने की फरमाइश की है। और यहाँ पर

अगला गाना वीना शंभू जी की ओर से जाता है उनके मामा धनवंती मूलचंद जी के नाम और मातृदिवस के उपलक्ष्य में, और यहाँ पर यही गाना सभी शंभू परिवारों के नाम भी हम करेंगे। और चलिए यहाँ पर अगला गाना जो है, हाँ, हम मानिता जी की ओर से ये मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद मानिता जी आपके इस मैसेज के लिए। और अगला गाना जो है माँ सुमंती के लिए जो सेंजुलिया रहती है, और सभी माओं के नाम, सभी सुनने वालों के नाम बहुत बहुत धन्यवाद मानिता जी। और इसी तराने को आपके लिए भी हम करेंगे। इस समय जो है सूरज जी त्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गाने को आप सभी के नाम हम करते हैं।

यकीनन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। तो अभी जो गाना सुन रहे थे ये कुछ ऐसा ही था, हम साथ साथ है फिल्म का ये तराना, जो प्यार को दर्शाता है, जो अपनेपन को दर्शाता है, जो परिवार के अहमियत को दर्शाता है। 3:41 ऑलरेडी यहाँ पर, और अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है यहाँ पर, अगला तराना है यहाँ पर जाता है आपके नाम अनीता जी, त्रियोले से आप हमारा साथ दे रही है। अगला गाना आपकी ओर से अंजू के नाम, आपकी बेटी अंजू दामाद वेद के लिए। बेटा है सचिन, बहू है पूजा, सभी नाती पोतों के नाम और पूरा परिवारों के नाम आराधना फिल्म का ये तराना आप सभी के लिए चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए आपकी पसंद में अगले तराने की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है नसरीन जी वाकवा से

साथ दे रही है। कह रहे कि आज पूरा परिवार जो है ईद मना रहा है, तो इस मौके पर अगर कोई ख़ास गाना हो तो इनके लिए चला देना। तो चलिए, आपको आपके पूरे परिवार को ईद की बधाई, ईद मुबारक आपको, आपके पूरे परिवार को, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अगला तराना है, बजरंगी भाईजान फिल्म का तराना है, भर दो झोली, आपके नाम नसरीन जी और आपके पूरे फैमिली के नाम।

0: की पसंद।
1: चलिए आप सभी की झोली, आप सभी का दामन भी हमेशा भरा रहे खुशियों के साथ। और यहाँ पर बहुत सारी फरमाइशें अभी भी आ रही है, तो चलिए अगला गाना मीला रामस्वामी जी आपके नाम हम करते हैं, और अगला गाना माँ के लिए। ऑल राइट, ये गाना मेरी माँ प्रेरणा के लिए, प्रेरणा सन्यासी के लिए, और आपकी बहन सिमी अपादू के लिए। ऑल राइट, चलिए गाना उनके नाम हम करते हैं। और यहाँ पर सुदेवी जी हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। रिहाना जी अगला तराना आपके लिए भी हम करते हैं, फिनिक्स से आप हमारे साथ जुड़ी हैं, जाते जाते यही गाना जो है जाता है। माया जी आपके नाम मोताई ब्लॉन्च से आप हमारा साथ दे रही है आपके पूरे परिवार के लिए, और आने आते सप्ताहांत जो है मातृदिवस हम मनाने वाले हैं, तो इसी संदर्भ में ये गाना आपके लिए भी हम करेंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ पर यही गाना अनीता जी आपके लिए भी हम चलाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए जितनी भी माएँ इस समय हमें सुन रही है, जितनी भी बहनें हमारा साथ दे रही हैं, ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इतने माँ पर आधारित गाने मांग रहे हैं, तो फिर कभी कभार इन सभी गानों को चलाना समय की कमी के कारण थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हमारी कोशिश है कि आप सभी के डेडिकेशंस को हम शामिल करें। तो चलिए यही गाना वंदना जी आपके लिए भी जाता है, आपने भी इस गाने की फरमाइश की है आपकी माँ के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आपकी पसंदीदा कार्यक्रम समाप्त होने को चला, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। 4 बजे जो है भक्ति सागर इस कार्यक्रम में साथ ज़रूर दीजिएगा, और यहाँ पर ऐसे ही आपका प्यार आपका साथ हमें मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये खूबसूरत सा तराना सभी माताओं के नाम हम करते हैं, जो हमारा इतना ध्यान रखती है, हमारा इतना ख्याल रखती है, हमसे इतना प्यार करती है।

चलिए एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर, और यहाँ से शुरुआत होती है भक्ति गीतों के कार्यक्रम भक्ति सागर की, जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, अभी तक साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। 5 बजे तक चलेगा भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम। आशा करते हैं गुरुवार का दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा होगा आप सभी के लिए। आपको यह भी बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी से। तो अभी के लिए हमेशा की तरह भगवान गणेश का स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

0: जी हाँ, यहाँ पर भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर चुके हैं और अब आइए इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनेंगे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में, तो आइए उनको हम सुनते हैं। धारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
1: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सबका सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री राम की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हमें गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, रामायण प्राचीन सनातन सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आधुनिक युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण के लिए रामायण से बढ़कर शायद ही कोई शिक्षापूर्ण और नैतिक आदर्शों से युक्त ग्रंथ होगा। इस आदि काव्य के नायक श्री राम की कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अतीत्यैका दशाहम तु नाम कर्म तथा करोत ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम। अर्थात अद्वितीय गुणों से संपन्न ऋषि श्रृंग के यज्ञ संपन्न करने के बाद राजा दशरथ की मनोकामना पूरी हुई। उन्हें चार पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या का प्रत्येक वासी

प्रसन्न था। चारों पुत्रों के जन्म के 11 दिन बीत जाने के बाद महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। महाराज दशरथ के गुरु और अयोध्या के सलाहकार महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न किया गया। ब्राह्मणों का भोजन से सत्कार किया गया। उन्हें बहुमूल्य रत्न दान में दिए गए। महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि राजा दशरथ धार्मिक स्वभाव के पिता थे। उन्होंने उचित समय पर अपने पुत्रों के निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रशासन संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार आदि कराए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी गुणों से सुसज्जित थे ही, परंतु श्री राम महातेज, सत्य पराक्रमी और शशांक की भांति निर्मल थे। जिस प्रकार शशांक यानी कि चंद्रमा अपने शीतल स्वभाव से सबका मन मोह लेता है, वैसे ही श्रीराम निर्मल शीतल चांद के जैसे सभी को बड़े ही प्यारे लगते थे। श्रीराम के आभापूर्ण मुख को देखकर सबका हृदय हर्षित हो जाता था। महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि बचपन से ही श्रीराम को परोपकार अति प्रिय था। श्रीराम को दूसरों की सहायता करते देख लक्ष्मण का हृदय गदगद हो उठता था। इसलिए वे अपने अग्रज श्री राम के साथ ही रहा करते थे। श्रोताओं, श्री राम और लक्ष्मण के बीच की आत्मीयता का वर्णन करते हुए महाकाव्यकार वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत ही रूपवान थे। वे इतने सुंदर थे कि जो भी उनका चेहरा देखता था वह मोहित हो उठता था। उनके मुखड़े की चमक सबका मन हर लेती थी। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम को अपने शरीर से भी बढ़कर मानते थे। उधर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने प्राणों से भी बढ़कर जानते थे। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के बिना सो नहीं पाते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। लक्ष्मण को खिलाए बिना श्रीराम कोई मिठाई तक नहीं खाते थे। ऐसा अटूट प्रेम था श्रीराम और लक्ष्मण में। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भाई श्रीराम को अकेले जंगल में शिकार खेलने नहीं जाने देते थे। जब भी श्रीराम शिकार के लिए तैयार होते थे तब लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष लिए उनके पीछे पीछे चल देते थे। इन दोनों भाइयों को हमेशा साथ साथ देखकर अयोध्यावासी कहते थे कि परमात्मा ने श्रीराम और लक्ष्मण को भले ही अलग अलग शरीर दिए हैं परंतु दोनों की आत्मा एक है। श्रोताओ, रानी सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न और रानी कैकेयी के पुत्र भरत भी एक दूसरे से अनंत स्नेह करते थे। शत्रुघ्न और भरत एक साथ रहा करते थे। श्रीराम अपने तीनों भाइयों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक पिता की भांति वे अपने भाइयों की रक्षा करते थे और माता की तरह उन्हें दुलार करते थे। अपने चारों पुत्रों को एक दूसरे पर जान छिड़कते हुए देखकर वृद्ध महाराज दशरथ बहुत खुश होते थे। इस सुख के लिए वे भगवान को बारंबार धन्यवाद करते

सकते थे। श्रोताओं, कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि चारों राजकुमारों के विषय में लिखते हैं कि ते यदा ज्ञान संपन्नः सर्वे समुदिता गुणैः हरिमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घ दर्शिनः। इस श्लोक में श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुणों का बखान करते हुए वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि चारों राजकुमार ज्ञानी थे, गुणों से युक्त थे, लज्जाशील, कीर्तिमान, सभी विषयों में प्रवीण, विवेकी और दूरदर्शी थे। राजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों के प्रभाव और तेज को देखकर गर्व महसूस करता था। चारों राजकुमार समय के साथ जवान हुए। जैसे जैसे वे जवान होते गए, वैसे वैसे सिंह के समान वे बलशाली होते गए, धनुर्विद्या में निपुण होते गए। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी वे सदा विनम्र रहे। पुत्र धर्म निभाते हुए अपने माता पिता की सेवा में डूबे रहे। श्रोताओं, पुत्र का धर्म ही है माता पिता को रक्षा प्रदान करना। मनु महाराज इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः। पुत्र धर्म की व्याख्या करते हुए स्मृतिकार कहते हैं कि पुत्र वह होता है जो हर प्रकार के दुखों से अपने माता पिता की रक्षा करता है। यास्क लिखते हैं कि पुरु त्रायते पिपरणाद्वा। माता पिता को सभी प्रकार से सुख देना, बुढ़ापे में उनका पालन पोषण करना और उन्हें नरक से बचाना, यही बेटे का धर्म होता है। और श्रोताओं, यह नरक क्या है? निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि नरकम न्यरकम नीचैर गमनम, यानी कि जहां गिरावट हो, तनिक भी सुख न हो, शांति न हो, वही स्थान नरक कहलाता है। पुत्र के रहते अगर माँ बाप दुख सहे तो मानो वे माँ बाप नरक में जीवन काट रहे हैं। अपने माता पिता को नरक से बचाना, यही बेटे का धर्म होता है। महर्षि व्यास महाभारत के अनुशासन पर्व में कहते हैं कि जो पुत्र माता पिता और अपने बड़ों की सेवा और रक्षा करता है, वह स्वर्ग में सबके द्वारा सम्मानित स्थान पाता है। वह बेटा सदा सुखी सुख भोगता है। सुख देने वाले पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीते जी इसी धरती पर वह सुख भोगता है, अच्छे लोगों से और अपने बड़ों से सम्मान पाता है। श्रोताओं, आज हमने देखा कि जो पिता व्रतधारी और तपस्वी होते हैं, वेद के मंत्रों पर विश्वास करते हैं, यज्ञ की अग्नि में श्रद्धा रखते हैं और धर्म का सदैव पालन करते हैं, वे ही इस लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति पाते हैं। रामायण के बालकांड की कथा को अगले कार्यक्रम में हम आगे लेकर चलेंगे। अभी के लिए श्री कुमार रामा और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा। तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं।

कहते हैं भक्ति जो भी करता है ईश्वर के प्रति, उसकी भक्ति हमेशा सफल होती है अगर हृदय में सच्चाई हो, अच्छाई हो और सबके प्रति एक करुणा का भाव हो। और अगर हम मानव मूल्यों की बात करें तो करुणा होना, हृदय में जो है औरों के प्रति ऐसी भावना होना जो एक दूसरे के प्रति सम्मान को दर्शाए, प्रेम को दर्शाए, अपनेपन को दर्शाए, तो इन सभी मानव मूल्यों के चलते हम एक दूसरे के बीच जो है एकता को स्थापित कर सकते हैं, प्रेम को स्थापित कर सकते हैं, भाईचारे की भावना को जो है स्थापित कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मानव जीवन मिला है तो हम अकेले तो इस जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते ना, हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है समाज में कार्य करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए। इसलिए सबके साथ मिलजुल कर रहना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति ऐसी करुणा की भावना होती है तो ईश्वर भी जो है सदैव हमारा साथ देते हैं, ईश्वर भी जो है सदैव हमारा कल्याण करते हैं। तो चलिए, आज गुरुवार है तो इस अगले भजन द्वारा हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं, साईं जी की, भगवान साईं की आराधना करते हुए।

ये ईश्वर का नाम ही है जो हमारे मन को शांत करता है। ये ईश्वर का नाम ही है यदि आसपास कोई नकारात्मकता है उसे दूर करता है। ये ईश्वर का नाम ही है जो जीवन को एक जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहने के लिए सतत प्रेरित करता है। तो ईश्वर का जो नाम है हमारे हर श्वास पर होना चाहिए, ईश्वर का जो नाम है हमारे दिनचर्या का जो है हिस्सा होना चाहिए। ईश्वर का नाम हमें तब नहीं लेना चाहिए जब हम दुख में हैं, जब हम परेशानी में हैं, जब हम चिंताओं से घिरे हैं। ईश्वर का नाम तो सदैव लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, मिल रहा है या आने वाले समय में मिलेगा, कहीं ना कहीं ये उसी ईश्वर की तो कृपा है। तो बस जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, सब

कुछ अच्छा ही होगा। मन में इस कामना को बनाए रखें, जो कुछ आप चाहते हैं यदि आप उसे पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। कहते हैं ना कि कोई भी प्रयास कभी भी खाली नहीं जाता है, आज नहीं तो कल अवश्य उसका फल मिलता है। तो बस धीरज बनाए रखें, धैर्य रखें, जीवन में सब कुछ संभव होता है, बस विश्वास होने की आवश्यकता है। और अगर कुछ वैसे नहीं चल रहा है जैसा आप चाहते हैं, बदलने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी वो चीज़ें नहीं बदल रही है, तो कहीं ना कहीं इसे ईश्वर की मर्जी मानकर, ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना समय है बदलता है, तो अवश्य बदलाव ज़रूर होगा।

कहते हैं कभी कभार जीवन में हम इस तरह दौड़ते रहते हैं, चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और भागते भागते कभी कभार सोचते हैं कि हम किस लिए भाग रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं, हमें आखिर में चाहिए क्या। क्योंकि एक इच्छा पूरी होते होते दूसरी इच्छा मन में आ जाती है, और दूसरी इच्छा पूरी होते होते तीसरी, है ना। लेकिन जीवन जो है चलते रहता है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है, लेकिन ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। और कहते हैं ना कि समय के साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, और आगे बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी में, जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, जान पहचान होती है, बहुत कुछ हम सीखते हैं एक दूसरे को देखकर। कहीं ना कहीं ये जीवन के जो अनुभव होते हैं हमें जीवन में बहुत आगे ले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया सीखते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए, जीवन को और भी अच्छा बनाने के लिए, जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए, और सीखते रहना चाहिए। क्योंकि ये सारे अनुभव जो होते हैं ज़िंदगी के इस सफ़र को, ज़िंदगी को सरल बनाती है, ज़िंदगी को हम अपने जीवन को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। कभी कभार बहुत से सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन अन्य लोगों को देखकर हमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं, उनके जीवन जीने के तरीक़े को लेकर, जीवन देखने के दृष्टिकोण को लेकर। तो बस जीवन में सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और जीवन में जो है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते बढ़ते इस अगले आरती की ओर बढ़ते हैं, और इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे जीवन पर सदा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। 5 बजे जो है आप सुन पाएंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम पूनम की प्रस्तुति में। अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार आप सभी को, शुभ संध्या।

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।
3: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शाम धीरे धीरे अपने आप रंग जमा रही है और ऐसे समय में पुराने प्यारे गीत अपने आप याद आने लगते हैं। तो अगले एक घंटे बस इस खूबसूरत माहौल का आनंद लीजिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। अगर आपको कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना है, यानी कि मूड चेंज करना है अपना या हमारे लिसनर्स किसी का भी, और जो लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं उनको भी बस कुछ ऐसा दिल कर रहा है कि कोई बस ड्राइव होती रहे और ऐसे माहौल में एक प्यारा सा गाना चलता रहे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5251700 5 पर 5251700 5 पर। और मैं हूँ यहाँ पर और आपके गानों को तो ज़रूर चलाऊंगी और साथ में हम ऐसी प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे और आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे। अगर आपके भी दिल में कोई ऐसी बात है या किसी के लिए कोई डेडिकेशन भेजना चाहते हैं या कोई ऐसा मैसेज जो सच में किसी की शाम को अलग माहौल दे दे और बस खुश कर दे, तो आप हमें भेज सकते हैं प्लीज़। और ये गाना आप सबके लिए।
2: 819 kilohertz. This is Radio Marxist.

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: आप सुन रहे रेडियो मॉरिशस पर आपका ही फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार गीत। आज ईद की खूबसूरत त्यौहार है और उन सभी मुस्लिम भाई बहनों को दिल से हम कहते हैं, ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं और हम बस कहते हैं गले मिलो, खुश रहो, एंजॉय करो। आपके ये इतना प्यारा सा त्यौहार है, खुशियों भरा अपनापन जो आप सबको एक दूसरे से मिलता है, उन सब की जो खुशबू है वो हम तक भी पहुँचती है। तो हम सभी को कहेंगे हैप्पी ईद, बस इंजॉय कीजिए ये गाने। और जो भी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम लाइन्स ओपन करने वाले हैं तो हम सबसे बात करने वाले हैं, तब तक एंजॉय करिए ये वाला आपका गाना।
2: 819 kHz, 19 kHz, this is Radio Mauritius.

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:26 हो चुके हैं दोस्तों, और अगर आप इस वक्त खाना बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अपने घर पहुंच रहे हैं काम से, तो मुझे इतना उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्माइल करते हुए घर पहुंचिए। अगर खाना बना रहे हैं तो स्माइल्स करते करते बनाइए, क्योंकि जो आप एनर्जी डालेंगे वही आपके परिवार को मिलेगी। और सच में बताऊँ तो घर का खाना बहुत ही अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। जैसे भी आपको थोड़ा बहुत भी लगे, आपको टाइम लगे, तो घर पर ज़रूर खाना बनाया कीजिए, क्योंकि ये ऐसी इन्जॉयमेंट है जिससे घर को तो खुशी मिलती है, साथ में खुद को भी खुशी मिलती है। क्योंकि जब आप वो तड़का लगाते हैं, वो जो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वो आपको और कहती है कि भाई मुझे और अच्छा सा खाना दो, तो बॉडी में अच्छा खाना जाएगा, वैसे ही आपकी बॉडी बनती चली जाएगी। चलिए भाई, 2-3 प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता जी, जो कि कथरबोन से है। वो कह रही, मैं बीमार हूँ, मैं क्या करूँ। अरे बिल्कुल बीमार मत होइए, अच्छा सा खाना खाइए, सूप बनाइए, वेजिटेबल्स लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं, जो आपके दिल को सुकून देती है वो खाना ज़रूर खाइए। इसके साथ में सुदेवी जी जुड़ी हुई हैं, साथ में वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश करिए, हम अभी बिल्कुल चलाएंगे। ललित जी USA से जुड़े हुए हैं, और साथ

0: में एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, वो भी चलाने वाले हैं। कमलेश रानी जी, हिना युवराज और साथ में अर्जुन जुड़े हुए हैं इंडिया से, तो थैंक यू सो मच आप सबका। और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं इब्राहिम जी, जो कि उनका एक फेवरेट सॉन्ग है, तो इब्राहिम जी ये गाना आपके लिए।
1: 819 kHz, this is Radio Mauritius.

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:37 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। और ये सदाबहार गीत वो गाने हैं जो हमेशा से एवरग्रीन रहने वाले हैं, क्योंकि कितने सालों से हम ये गाने सुनते आ रहे हैं पर हमें कभी पुराने लगते ही नहीं। और इसमें एहसास भी ऐसा होता है कि मतलब वो जो पुरानी यादें होती हैं, कभी हमारे नाना नानी सुनते थे, दादा दादी सुनते थे, फिर हमने सुना और फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन भी ये सुनती रहेंगी, कभी ये पुराने नहीं होने वाले। तो इसीलिए इन्हें सदाबहार गीत कहा जाता है। पर मुझे इतना पता है कि जब आपके चेहरे पर

बट जब एक मोहब्बत भरे हुए मैसेज के साथ में आपका वो गाना चलता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो हमारे साथ इस समय ललित जी जुड़े हुए हैं जो यूएसए से, उन्होंने कहा कि प्लीज़ एक मुकेश जी का ज़रूर गाना चलाइएगा। तो हम बिल्कुल चलाने वाले हैं मुकेश जी का गाना उनके लिए। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बाम्बू से और कह रही हैं कि मैं खाना बना रही हूँ और बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ बना रही हूँ। सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि स्माइल है तो सब कुछ है, और जब स्माइल होती है तो हमें सारी ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती। साथ में सुनीता जी भी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मेरा इस दुनिया में अभी कोई रहा नहीं है, पर मैं इतना कहूँगी पूनम आपके साथ है और हमारा रेडियो आपके साथ है, पूरी एमबीसी टीम आपके साथ है, और आने वाले जितने लोग हैं जो भी आपको सड़क पर मिलते हैं कहते हैं कि वही अपने होते हैं, तभी तो इसे कहते हैं परिवार। तो ब्यूटीफुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस हमेशा खुश रहिए। शोभा जी जुड़ी हुई हैं जो अपनी दोस्त राधा के लिए गाना सुनाना चाहती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए, और हम बिल्कुल चलाने वाले हैं। माया जी भी कह रही हैं कि गर्मा गर्म रोटियों के साथ आनंद लीजिए और इंजॉय कीजिए अपने खाने को। तब तक ये आप सबके लिए प्यारा सा मुकेश का गाना।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:43 हो चुके हैं और कई लोग इस समय अपने परिवार के साथ बैठे होंगे, अपने बच्चों के साथ बैठे होंगे और कई लोग थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे होंगे, कईयों के बच्चे दूर होंगे। बस ऐसी है ज़िंदगी। बट मुझे लगता है कि जब तक हम हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तो हमसे भी कोई बात नहीं करता है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय करते रहिए अपनी ज़िंदगी को। जैसी भी है चलेगी, बहुत अच्छी है। तो हमारे साथ जो वादा करते हैं हम हमेशा निभाते हैं। हमारे साथ सूरज शर्मा साजदा जी जुड़े हुए हैं और अपने बेटे के लिए बस इतना कहते हैं कि प्यार है तो तुमसे है ना किसी से नहीं। हाउ स्वीट मैसेज, यही होता है प्यार अपने बच्चों के लिए। तो धानी जी साथ जुड़े हुए हैं और वो भी एक प्यारे से कह रहे हैं कि मेरी जो उलझन है सुलझ नहीं रही है। तो जो अगला गाना होगा धानी जी आपके लिए होगा। उमा जी साथ जुड़ी हुई हैं क्यूबिप से और कह रही हैं बहुत ही प्यारे गाने चल रहे हैं। तो बस आप सब इंजॉय कीजिए आपके फेवरेट सॉन्ग्स।
2: This is Radio Mauritius.

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: दोस्तों, बात अगर हम करें माँ की, तो अगर पुराने गाने बहुत से बने हैं, हर सिचुएशन पे बनते रहे हैं, पर जब माँ की बात आती है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते कि वो कितनी कहते हैं कि माँ को किसी चीज़ में रखा ही नहीं जा सकता। माँ सबसे अनोखी होती है और हम सब माएँ हैं, और हमने जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो हमारी माएँ सबसे बहुत ही खूबसूरत, चाहे वो कैसा भी उनका चेहरा रहा हो, कितनी भी ओल्ड हो, बट वो अपने बच्चे का दुख नहीं देख पाती है, हमेशा कहती हैं अरे क्यों टेंशन लेते तो मैं हूँ ना। तो यही होती है माँ का प्यार और यही होती है माँ। तो चलिए एक प्यारा सा गाना हो जाए और मैं सबको ये कहूँगी हैप्पी मदर्स डे, बस आने ही वाला है। बट मुझे इतना लगता है कि अगर आप भूल गए हैं तो माँ के लिए एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट ले सकते हैं। उनको अगर गिफ्ट नहीं भी देना तो एक प्यारा सा मैसेज कर सकते हैं अगर बहुत दूर रहते हैं, और अगर उनके पास जाते हैं तो बस उन्हें गले लगा लीजिए और उनको इतना ही कहिए, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marches.
1: दोस्तों, उम्मीद है आज का ये साथ आपको अच्छा लगा होगा। ये सदाबहार गीत आपको पसंद आए होंगे। मैं थी आपके साथ पूनम, अब लेती हूँ इजाजत। मेरी बात सुन पाएंगे आप विस्तार से समाचार। तब तक एंजॉय कीजिए आपका ये लास्ट गाना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। गुरुवार 28 मई के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है। ऐसे में बीचेस तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच समझ का विषय बन गया है। बालाक्लावा के निवासी भी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रहे हैं, जिससे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल के लीज में शामिल किया गया था। 10 जिलहिजा की तारीख को आज मुसलमान कौम के परिवार ईद उल अदा मना रहे हैं। ये रोज हजरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह नमाज ईद के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं। युगांडा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इबोला महामारी के तीव्र फैलाव को देखते हुए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। बालाक्लावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रही हैं, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल के लीज में शामिल किया गया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक बार फिर मॉरिशस में समुद्र तटों तक सार्वजनिक एक्सेस को लेकर सवाल उठा रहा है। बेलोम्ब से रियोंबेल के बीच तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। ये बात जानने योग्य है कि देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है। ऐसे में बीचेस तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है। इस मुद्दे पर हम पुनः आएंगे। फिलहाल खबरों को आगे बढ़ाते हैं। इस हफ्ते देश के 5 शहरों के नए मेयर और उप मेयरों ने कार्यभार संभाला। प्रशासनिक बदलावों के साथ शहर के निवासी 22 टीमों से क्या उम्मीद रखते हैं और नगर पालिकाओं के स्तर पर आम जनजीवन में सुधार लाने के लिए कैसे

0: उठाए जाने चाहिए। इस पर हमारी सहयोगी अंजू ने कुछ लोगों से बात की। विवरण पूजा सुकालू का है।
1: कैट्रोबोन फुटपाथ पर इतने बड़े गड्ढे कि मानो एलिस इन वंडरलैंड यानी नाली जैसी दुनिया में उतर रहे हो। कूड़ेदान ऐसे गायब है जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो। नहीं, ये शहर जिसे हम विल दे फ्लेयर मानते हैं, फूल वाली महक तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ।
2: कार्बोनिंग गाते मिन मालंग मालप्रोप कडू पासे लेगा पेना पेना लीजन जिलो कार्बोन।
3: Problème, c'est plus parking et puis c'est la poubelle tout ça et en plus chemin trop serré.
1: बोबासे रोज हिल, यहाँ तो कचरा ज्यादा दिखता है, कूड़ेदान कम। हालांकि पिछले एक साल में प्लासमोरियो के आसपास लगभग 4,60,000 रुपए की लागत से सौंदर्य वाला कार्य चलाया गया है, लेकिन निवासी आज भी विकास कार्य के इंतजार में है।
4: Des poteaux que nous étions là, qu'on a besoin de plastique, qu'on a besoin d'un tas d'affaires au chemin.
5: J'en ai un peu plus, moi, un peu. J'en ai un peu nettoyé un peu plus partout.
1: Vakwa ka swaroop pehle ki tarah akarshak nahi raha. Manu yahan Michael Jackson ke Thriller namak clip ka set ban sakta tha.
6: Comme on dit, c'était un avènement, mais vraiment c'est mort.
1: यहाँ कैजिनो दूसरी बुनियादी सुविधाओं और मनोरंजन स्थलों से कहीं तेजी से विकसित हुए हैं।
7: Loisirs.
8: Ça voudrait que ça développe un peu plus parce que vu que nous vacons, nous n'est plus une vacance parce que ne plus trouve rien.
1: क्यूपिप जहां रोशनी की कमी महसूस की जा रही है, शहर ने अपने रंग ही खो दिए हैं और अब फीका दिखता है। निवासियों के अनुसार विकास रुक सा गया है, ठीक वैसे ही जैसे नगर पालिका के सामने फव्वारे का ठहरा हुआ पानी। चूहों को तो भगा दिया गया है, अब कबूतर और आवारा कुत्ते चैन की नींद ले रहा है। फूल बेचने वाले के बाद अब बारी है सार्वजनिक शौचालयों की बदबू। यहाँ फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। पोर्टविस की इतिहास में ये पहली बार है कि राजधानी का प्रशासन दो महिलाओं के हाथों में होगा।
9: Les soirs, je vois que c'est un gros souci, on peut améliorer dessus.
1: Parking ki samasya khatma hoti hi nahi hai.
9: Si on peut faire des bâtiments comme on fait à Eben, côté parking pour améliorer tout ça.
1: Trop fanfaron bazar ke paas, ye shakhs apne taxi ke paas khada hai, ghombe jane wale yatriyon ke intezaar mein hai.
10: Ça comptait droguer rien dans la forêt. Droguer, voler, voler, se dominer dans la forêt. Il y a une base droguer, voler dans la forêt.
1: पांच शहर, अनेक शिकायतें और उम्मीदें अब भी बेहद व्यावहारिक है। शहरवासी अब अपने रोजमर्रा के जीवन में आखिरकार कुछ नया देखना चाहते हैं।
0: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि बालाक्लावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रहे हैं, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल की लीज में शामिल किया गया था। वैसे ही बेलोम और सेरियोंबेल के बीच भी तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में बीच तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है। यासीन दिल मोहम्मद की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
11: Quand on a un congé public, et tout ça là, c'est le moment moyen qu'ils sont capables de divertir les enfants. Amène-les à la plage, c'est gratuit. Mais à ce moment-là, ils peuvent choisir ou ils peuvent choisir. Un jour congé. Les gens qui ont déjà sorti de la boîte, pas capable aussi de la plage. Mais qui fait besoin de prendre cours sur la plage?
12: ২০০৮ से बालाक्लावा समुद्र तट के एक हिस्से को हटाया गया है और इसे पास में स्थित एक होटल को लीज पर जोड़ा गया है। तब से कोई भी विकास नहीं हुआ, लेकिन ये चिंता तो बनी हुई है कि किसी दिन एक हिस्से में मशीन काम करने लगे।
13: Moi, mon naissance, point au piment ici. Mon père, une famille, mon vin là, mon vin distrairement, beau la mer, bons enfants. Vous êtes congé l'école.
14: Il y a un problème, nous avons beaucoup accès pour venir dans la mer, pour nous ramasser, nous mettre la boîte, la pipille, pour nous travailler, comprenez, nous avons accès.
15: Quand trois fois par semaine, venir ici, regarder un peu. Nous comptons les mouches, assiser, regarder respirer un peu. Mais si tu es ça, tout le monde est chien, que tu peux aller.
12: ग्राम परिषद के स्तर पर यही बात कही जा रही है.
7: Tout Mauricien des Avines Balaclava, je te connais, grand DS à la plage qui nous est ici là, les minuscules.
12: Ecosuit Namak, NGO, निवासियों को अपना समर्थन दे रहा है और साथ में ये मांग कर रहा है कि इस भाग को फिर से पब्लिक बीच घोषित किया जाए.
16: 56 mètres à peu près en plus depuis Mirail et il représente à peu près 40% de la plage publique. J'étais un peu inquiet à savoir si l'hôtel pour extendre sur l'hôtel ou soit ben même qu'ils ont une PAD, une bout de plage publique.
12: Balaclava एक अलग मामला नहीं है. बेलों में 19.4 बीघा पब्लिक बीच को 2016 में डी प्रोक्लेम किया गया था. KPMM ग्रुप को एक रियल इस्टेट पर योजना विकसित करना था. 10 साल बाद KPMM का दिवालिया हुआ और जमीन को बिक्री के लिए रखा गया. रियोबिल में 2007 में एक होटल परियोजना के लिए 4 बीघा पब्लिक बीच को लीज पर एक प्रोमोटर को दिया गया. 2017 में इस लीज को रिकन्वर्ट किया गया 20 से अधिक विला की एक परियोजना के लिए. 2024 के दिसंबर महीने में जिला परिषद की ओर से निर्माण संबंधी परमिट जारी किया गया था.
9: Il y a une portion qui proclamait plage publique. Sauf qu'il n'est pas net proclamé dans son entièreté, qui est du monde servi. Donc, du monde servi, mais je ne sais pas connaît qui est une partie là-dedans pour finir en bas béton. À côté de ça, aussi, nous trouvons une affaire qui peut rétrécir, c'est l'espace, la plage, à cause notamment l'érosion. Il y a une construction à 30 mètres depuis la ligne de la marée haute, depuis High Water Mark. Mais 30 mètres depuis la ligne de la marée haute. Mais 30 mètres, ça veut dire aussi qu'il nous faut faire qu'il y a la place qui est déjà dans l'état lamentable.
12: इस वृहद परियोजना के चलते पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की मांग की गई. एनवायरमेंट एंड लैंड यूज ट्राइब्यूनल के सामने प्रमोटर की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है. 50 इकाई से कम वाली परियोजना के लिए कानून इस तरह के अध्ययन की मांग नहीं करता, लेकिन फिर भी मंत्री इसकी मांग कर सकते हैं अगर परियोजना का असर पर्यावरण पर पड़ने का खतरा हो सकता है. ये उसके स्थल और इस पर भी निर्भर करता है कि वहां किस तरह के कार्य किए जाएंगे. मामले को अगले 3 जून को पेश किया जाएगा. पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये समझाया जा रहा है कि एक EIA के माध्यम से हम जान सकेंगे कि इस तरह की परियोजना चलाई जा सकती है या नहीं. उदाहरण के तौर पर बाढ़ और मिट्टी के कटने के खतरों को देखना है. इसके अलावा एक EIA के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता है, जो हुआ नहीं क्योंकि इस परियोजना से इलाके पर प्रभाव पड़ेगा. ये अहम प्रश्न भी उठता है कि मॉरिशस के तटों पर कम ही पब्लिक बीच हैं. बीच अथॉरिटी के मुताबिक टापू के चारों ओर 322 किलोमीटर के तटीय इलाकों में से केवल 48.24 किलोमीटर पब्लिक बीच हैं, यानी करीब 15%. पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये आंकड़ा इससे कम है अगर हम उन इलाकों को न गिने जहां पर जा नहीं सकते या फिर जनता के लिए वहां जाना कठिन है, जैसे कि चट्टानें हैं, साथ में बंगलोज के सामने वाले हिस्से भी हैं. अभी भूमि एवं आवास मंत्रालय में समुद्र तटों पर एक्सेसिबिलिटी के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है. इस बीच अमीरा अर्डारनी नामक के एक मॉरिशन ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि किस तरह वे लापरमेज से तमारे पब्लिक बीच तक पैदल गए. ये कैसे रहा? कई विला के बगीचों को पार करना पड़ा. तट के किनारे प्रवेश बंद था. होटलों या विला के स्विमिंग पूल के बगल में ईंट से बने ढांचे भी थे. यहां तक कि कई जगहों पर पत्थर थे जिन पर चढ़ना पड़ा. विला मालिकों ने जानबूझकर अपने विला के सामने बालू जमा करके रखा था.
0: कर्डेन यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलिस में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ रस्मी मुलाकात की. उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त केट चैमली भी मौजूद थीं. मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी मॉरिशस के बीच पिछले कई सालों से कायम सहयोग और भविष्य के विकास पर चर्चा की गई. आज 10 जिल इजा की तारीख है और आज के दिन मुसलमान कौम के परिवार ईद उल अदा मना रहे हैं. ये रोज़ हज़रत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है. सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका होता है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित शिव महापुराण की कथा में भाग लिया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। ये कथा रविवार तक चलेगी। गदेवादियों की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
17: कुछ दिनों से लालमाटी में भक्तिमय एवं आध्यात्मिक समा बंधा हुआ है। बहुत से भक्त पिछले शनिवार से यहाँ पर शिव महापुराण की कथा में भाग ले रहे हैं। इस तरह भक्त भोलेनाथ की कथा सुनने के लिए जुटे। इस अवसर पर वहाँ देवों के देव महादेव का गुणगान किया जा रहा है, भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बुधवार की रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम भी उपस्थित हुए।
18: कदली गर्व संभूतम कपूरम तो प्रदीपितम अरार्तिकम हम कुर्वे।
17: भारी संख्या में भक्त एकत्र हुए और वे बहुत प्रेम एवं भक्ति तथा श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे।
19: यहाँ सब एक परिवार बन करके लालमाटी के ये कार्य किया जा रहा है, हिंदू के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे मॉरिशस के लिए।
17: शिव महापुराण की कथा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने और संगठित होने का अवसर है। ये और कुछ दिनों तक जारी रहेगी।
0: शतबन मजदूरी का इतिहास पोर्टलिस में चल रही 3 दिवसीय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। कल 27 मई से विभिन्न इतिहासकार, शोधकर्ता और कई संस्थाओं की प्रतिनिधि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रही हैं। ये पहला प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की है। इसके उद्घाटन के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री सहित कई वक्ताओं के भाषण शतबन मजदूरी की विरासत और उसके प्रसार पर केंद्रित रहे। वर्षों तक असुरक्षित और दयनीय परिस्थितियों में रहने के बाद सोशल रजिस्टर में दर्ज 20 परिवारों को उनके नए कंक्रीट के घरों की चाबियां सौंपी गई। ये दिन उनके लिए भावनाओं और एक शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा। स्क्विंट आई से पीड़ित 200 से अधिक बच्चों और वयस्कों का सफल ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर मिलिन किलेदार के नेतृत्व में भारत की एक मेडिकल टीम ने पिछले अप्रैल महीने में मॉरिशस और रोड्रिग्स के अपने दौरे के दौरान ये ऑपरेशन किए। ये पहल जो अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। रोटरी क्लब ऑफ बागातेल और भारत के रोटरी क्लब ऑफ पॉन्डिचेरी अगराम के सौजन्य से आयोजित की गई है। इस स्क्विंट आय 4.0 परियोजना का शुभारंभ 23 अप्रैल 2026 को मोका में हुआ था। और जैसे हम आपको बता रहे थे कि आज ईद उल अदा मनाया जा रहा है और आज सुबह ईद की नमाज के बाद बेशत मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका रहा। इस पर कृष्ण सिचा की रिपोर्ट पर रजनी बिकल का विवरण पेश है।
20: तड़की सुबह ही मॉरिशस भर की मस्जिदों में रौनक देखने को मिली। मुसलमान कौम ईद उल अदा के इस मुबारक मौके पर ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में मस्जिदों में पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इबादत में मशगूल नजर आए।
21: Parce que nous pouvons célébrer un sunnah d'Ibrahim alayhi salam, il y a un lot pour sacrifier ce garçon, Ismaïl alayhi salam. Alors en mémoire de ça, nous faisons courbani. On dit pas la prière qui commence, tous les jours nous venons nous faire pareil. Ça n'a rien, la prière exceptionnelle.
22: À Ibrahim alayhi salam, tu montrais à Allah qui entre ses enfants et que l'amour ses enfants et que l'amour Allah, il donne des plis contents l'amour Allah. Ça qui Allah finit d'y aller faire, il finit faire. Nous prions pour tout, qu'il y ait la paix dans l'île Maurice, nous vivons bien dans l'île Maurice et qu'il y ait la paix dans le monde aussi.
20: Aujourd'hui, 10 जिलहिजा को मौशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ईद उल अदा जिसे बकरीद भी कहा जाता है, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और अल्लाह के प्रति उनकी अतूत मोहब्बत की याद दिलाती है।

0: नमाज के दौरान अमन, भाईचारे और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई।
1: तू जुमुन पैना मुआइये पुफिया कुर्बानी से अंजुमुन मुवाजे वाजी नाज इन गई है मुआइये लिपे फेला लैला ली गोट एंड पो देजियम पो लिबिजे पोता सुबन कामरार सुबन फामी उस तोजियम अंजुमुन की मिजिया।
0: नमाज के बाद परिवारों में अच्छे पल बिताए गए। परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करते हुए ईद की खुशियां साझा करते हैं, जैसे कि यहाँ सनुमन परिवार में।
2: Pour moi aujourd'hui c'est très spécial. J'ai mon fils qui est dans mes bras et c'est son premier idolada. Déjà c'est un moment magique pour nous. Là on mange du vin micel qui nous appelle Siwai et après nous pour vers Bobassa, que nous ne prenons pas dans les animaux là-bas et nous pour assister sacrifice et après nous pour faire partage de la viande.
0: मॉरिशस में ईद उल अदा सिर्फ कुर्बानी का एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये आपसी प्रेम, साझेदारी और इंसानियत का संदेश देने वाला त्यौहार भी माना जाता है।
3: और जैसे कि आपको पता है कि शरदवन मजदूरी का इतिहास पोर्टलिस में चल रही 3 दिवसीय चर्चाओं का केंद्र बना रहा। कल 27 मई से विभिन्न इतिहास का शोधकर्ता और कई संस्थाओं के प्रतिनिधि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रही हैं। ये पहल अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की है। इसके उद्घाटन के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री सहित कई वक्ताओं के भाषण शतवन मजदूरी की विरासत और उसके प्रसार पर केंद्रित रहे।
0: मॉरिशस में हिंद महासागर में गिरमितिया कामगारों के इतिहास पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में शोधकर्ता, विरासत विशेषज्ञ और राजनयिक प्रतिनिधि एकत्रित हो रहे हैं, जो गिरमितिया कामगारों की स्मृति पर आधारित है। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के चेयरमैन सुकंद रामदास कहते
4: हैं,
0: इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थलों और गिरमितिया कामगारों से जुड़े अभिलेखों के संरक्षण को लेकर इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देना भी है। मॉरिशस की यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि मारी जैस्मिन टुलूज ओलिविये कहती है,
5: la racine l'histoire les besoins paraissent cachettes donc nous dire qu'une visière raconte l'histoire que ce soit à l'école ou ben plus petit parce qu'il est important qu'il nous connaît quand nous sortit
0: ye karyashala ek master plan taiyar karne ki disha mein bhi kaam karegi taki virasat ke sanrakshan ko thos roop diya ja sake kala aur sanskriti mantri mahendra gondia kehte hain
6: C'est un roadmap qui nous pour préparer et ça, quand ça sortit, c'est là où on trouve un travail qui suit après. Parce qu'il n'est pas capable, un roadmap, il est un peu pareil comme un guideline. Si vous payez dans ça, mais qui va avancer devant? Donc ça, il est important pour nous préparer ce roadmap-là.
0: ये कार्यशाला 29 मई तक जारी रहेगी, जिसमें हिंद महासागर इलाके के विरासत विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे।
3: और पोर्टलिस में स्थित अल्फा कॉलेज ने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। अपने छोटे आकार और सीमित छात्र संख्या के बावजूद ये संस्थान बिना किसी भेदभाव या उनकी क्षमताओं को परखे हर पृष्ठभूमि के छात्रों का स्वागत करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युगांडा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इबोला महामारी के तीव्र फैलाव को देखते हुए कांगो लोकतांत्र गणराज्य के साथ अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। ये एक एहतियाती उपाय है, क्योंकि युगांडा की सरजमीन पर पहले से इबोला के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस पर कोयल सीतल की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
7: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी के बढ़ते मामलों के चलते युगांडा ने इसके साथ अस्थायी तौर पर अपनी सरहद बंद करने का आदेश दिया है। इस कदम का मकसद है इस वायरस को अधिक फैलने से रोकना। पिछले 15 मई को महामारी के लिए औपचारिक घोषणा की गई। युगांडा में इबोला वायरस के बुंदी बुग्यो वेरियंट के साथ जुड़े 7 मामलों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि केवल इबोला से निपटने वाली टीमों को ही सरहद पार करने की अनुमति होगी, वो भी

0: कुछ सख्त सैनिटरी शर्तों पर। सैनिटरी अधिकारियों के मुताबिक अभी के लिए वायरस के इस वेरिएंट के खिलाफ कोई भी निश्चित टीका या इलाज नहीं है। स्थिति के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सैनिटरी चेतावनी जारी की गई। महामारी के 12वें दिन पर 900 से अधिक संदिग्ध मामले पाए गए। पहले से ही 220 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
1: बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। आम हालत, पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात के समय और कल सुबह बादल घिर आएंगे और रह रहकर वर्षा होगी, विशेषकर देश के पूर्वी, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों में। कभी कभार बारिश तेज भी हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरे छाएंगे। दोपहर बाद में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में बादल विकसित होंगे और रह रहकर वर्षा होगी। अन्य इलाकों में आसमान में बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और कल धीरे धीरे हवा कमजोर पड़ने लगेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा तथा कल सुबह धीरे धीरे समुद्र की स्थिति खराब होने लगेगी और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठने लगेंगे। खुले समुद्र में सुबह के समय कल न निकलने की सलाह दी जाती है। आज सूर्यास्त शाम 5:38 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:37 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी डोमिनिक है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। राय रोड लाफ्लोरा में खतर साल की 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बिसुंदत किस्तो मोहन जिन्हें धर्म किस्तो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे कमल किस्तो मोहन के घर लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव वाक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। रॉय रोड प्लैंड रोश में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रभाकर बेचू जिन्हें लेखवा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती पद्मिनी बच्चू के घर प्लैंड रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। रामनाथ लेन ब्रिजेवैजिया में के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री जगन्नाथ रामनाथ जिन्हें अख्तिया रोशन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा रामनाथ के घर ब्रिजेवैजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोंजे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। अवनी ए आई फिलाओ पाई में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विलम्बाले एलाम्मा जिन्हें मामाम्बा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके घर फिलाओ पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। थोडोडूस रोड ब्रह्मस्थान में 44 साल के श्री महेन सुब्रन जिन्हें अनूप के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन के घर ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM। कोलाबू तेरूज में 88 साल के श्री लक्ष्मण मोहाबीर जिन्हें भाई लक्ष्मण के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके बेटे महेंद्र मोहाबीर

वीर के घर कौलाबूतिया रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रिलिश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: आज की सूचनाएं।
1: श्री रामा मंदिरम और मॉरिशस तेलुगु महासभा द्वारा रविवार 7 जून को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12:30 बजे तक वार्षिक अम्मोरू पंडगा मनाया जाएगा। इस संदर्भ में एक जुलूस निकाला जाएगा रिवरसाइड काली माता मंदिर से श्री रामा मंदिरम अम्मोरू गोडी पचितकाबान कौडुमास्कपावे तक। शुक्रवार 29 मई को शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक कलश स्थापना होगी, जबकि शनिवार 30 मई की शाम 5:30 बजे श्री रामा मंदिरम से पांचुलेन तबाजी लेते ब्लू और वापस मंदिरम तक जुलूस निकाला जाएगा।
2: मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स पीसी के आर्यन वैदिक स्कूल जो वाकवा में स्थित है, उनके अनुरोध पर जनता को सूचित करता है कि शुक्रवार 29 मई को साफ सफाई की आवश्यकता के कारण ये प्राइमरी स्कूल बंद रहेगा।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: This is Radio Marches.
1: Assalamu alaikum. Came to Mauritius.
2: Namaskar.
3: Shotrandriki Hudiya Purvaka Namaskaram.
4: Ungal anaivarukkum vanakkam.
5: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
6: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रोताओं, एमबीसी रेडियो मॉरिशस के इस पावन राठी कार्यक्रम में भजे प्रभु का नाम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की शांत, मधुर तथा भक्तिमय बेला में हम प्रभु स्मरण, भजन, प्रेरणादायक विचार तथा आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, वहां सुख, शांति तथा प्रेम स्वयं आ जाते हैं। तो आइए कुछ पल संसार के भागदौड़ से दूर होकर प्रभु चरणों में मन लगाते हैं। प्रथम भजन श्री गणेश जी की।

ईश्वर कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार तथा कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, मधुर वाणी बोलें तथा प्रभु पर विश्वास रखें।

श्रोताओं, जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते हैं, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है उसका मन कभी कमजोर नहीं पड़ता। भक्ति वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी नई आशा देना जानती है। जब मन परेशान हो तो बस प्रभु का स्मरण कीजिए, क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है।

श्रोताओं, मॉरिशस सहित दुनिया भर में जहां कहीं भी हमारे श्रोता इस समय जुड़े हैं, प्रभु के से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य तथा शांति बनी रहे। धन्यवाद आप सभी के प्रेमपूर्वक साथ के लिए। वैसे धनवान वह नहीं जिसके पास धन अधिक है, धनवान वह है जिसके पास संतोष तथा प्रभु का आशीर्वाद हो। अब समय है एक ऐसे भजन का जो मन को शांति दे, आत्मा को आनंद दे।

श्रोताओं, जीवन बहुत सुंदर है यदि उसमें विश्वास हो, रिश्ते बहुत प्यारे हैं यदि उसमें प्रेम हो, तथा यह संसार स्वर्ग बन जाता है यदि हृदय में प्रभु का नाम हो। प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जय श्रोताओं, आज के इस भक्तिमय सफर में साथ निभाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ईश्वर करे आपका हर दिन हर रात्रि शुभ हो, हर घर में प्रेम हो, हर मन में विश्वास हो, तथा हर

0: मन में प्रभु का वास हो। इसी सुंदर विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति, पुनः मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। शुभरात्रि, सादर प्रणाम।
1: कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, आओ फिर एक बार उस नाम संकीर्तन में डूब जाएं।

मज़ी सामीन एक हदीस समात कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त के बारे में फरमाया, खाओ, दूसरों को खिलाओ और ज़खीरा भी करो। इस हदीस से मालूम होता है कि कुर्बानी का गोश्त ख़ुद भी इस्तेमाल करना चाहिए, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को भी देना चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक कुछ हिस्सा बाद के लिए महफूज भी किया जा सकता है। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त को दूसरों तक पहुँचाना मोहब्बत, हमदर्दी और इख्वत का ज़रिया है।

हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुर्बानी की है वो अपने घर वालों को भी खिलाए, खुद भी खाए और फुकरा व मसाकीन को भी खिलाए। इस हदीस में कुर्बानी के गोश्त के बेहतरीन मसरफ की तरफ रहनुमाई की गई है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और माशरे के गरीब व मोहताज अफराद को खुशियों में शरीक करना भी है। इसलिए कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा फ़ुकरा व मसाकीन को ज़रूर देना चाहिए, ताकि ईद की खुशियाँ सब तक पहुँच सकें। सामईन कराम, महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने दरबार में हमारी कुर्बानियों को शर्फ कुबूलियत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इसी के साथ महफिल शब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
2: रिवा देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया और ये मेरे लिए, ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूँ।
3: सेम,
2: एग्जैक्टली सेम।
3: किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे।
2: मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ। बदला क्या लेगी, बदले में जान मांग ले, दे दूंगी।
4: ले चले डोलियों।
1: रविवार 31 मई को MBC 3 पर दोपहर के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म फिलहाल। 2002 की ये मूवी तबू और सुष्मिता सेन पर फिल्माई गई फिलहाल।
5: तेरा दिमाग खराब हो गया? परसों ही माँ को तू खुद यहाँ से ले गया था।
6: मामा नहीं है भैया, माँ सुबह 5 बजे घर से निकल गई थी।
5: माँ सुबह से गायब है और तुझे अब फोन करने की फुर्सत मिली है।
7: अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो।
8: सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा। मेरी माँ की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त।
1: शनिवार 30 मई को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म जख्म। 1998 की ये मूवी अजय देवगन और पूजा भट्ट पर फिल्माई गई जख्म।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 28 मई बीफे की रात 9:04 होल बा और आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत बा। हम किरण आपके नमन करत हैं, हमार नमस्ते स्वीकार करा ई उम्मीद के साथ कि आज के ई दिन आप सबके बहुत अच्छा से बीतल, भले ही सांझ से ठंडा करे के शुरू कर देले बा, लेकिन हम ई आशा रखत हैं कि ई जोन गीत चली अभी से 11 बजे तक, एकर से आपके मन में आपके दिल में गर्माहट पैदा हो जाए और आज रात आप अच्छा नींद सुतबा और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चलता मातृ दिवस के। तो थोड़ा घड़ी में माँ लोग के नाम भी सुंदर सुंदर गीत चलाओ जा, तब तक आपके फ़ोन के इंतज़ार बा

और जैसे सब कोई एक ही समय में बंद कर बा आजकल, और उहा अपन माँ के सबसे जोन अच्छा तोहफा रही ऊ देवे के, कहे कि हर एगो लड़का के माँ ओकर ये सबसे विशेष है, सबसे खास है, और ये बड़ा दिन मनावल जाता दिमाग के।

ना फोन आवा था, सब कोई माँ के नाम ही गीत कर रहा था वजह। बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ के नाम भी गीत अभी चलते रही। अभी जो गीत चली विनोद सिवदत्त के आवाज़ में, बाप दादा की बोली भोजपुरी भाषा, विनोद सिवदत्त के जितना भी चहेता जितना भी चहेती है वजह, आप सब कोई के नाम ये अगला गीत। और ये बखत हमने के सुनीता जी भी सुना थवन खोंगोप से, वो भी बोला थवन कि मातृदिवस एगो ऐसन परब है जेके मनावे खातिर सब कोई उत्सुक रहेला, लेकिन जब आपके माँ नहीं रहेला, माँ समान बहिन लोग भी नहीं रहेलन सा, तो काफ़ी खटकेला ये बात। और ऐसन में जोन अपन से बड़ा कोई भी रही, सबसे बड़ा बहिन ना सही, लेकिन अपन से जोन एक दुगो उनकर बड़ा बहिन हवन जा, और जैसे कि बीना और अमृता, उन लोग के नाम सुनीता जी ये गीत कर रहा थवन, आप घोंगोप से हवा। और विनोद सिवदत्त के ये गीत कयोले के ललिता जी भी ये गीत के फरमाइश कर रहा थवन। ललिता जी ये गीत अपन सब बहिन लोग के नाम कर रहा थवन, सुदेवी, ज्ञानी, कितने बहिन हवन उनकर, भाई लोग भी हवन जा, जैसे कि आत्माराम भैया, हरीश भैया, उनकर सुखलाल मौसी, माला राम जावन, उनकर लिस्ट हमेशा काफ़ी लंबा रहेला। तो जितना कोई भी ललिता जी के रिश्तेदार हवा जा, उनकर सगा हवा जा, संबंधी हवा जा, आप सब कोई के शुभकामना। और ललिता जी भी मातृदिवस के शुभकामना सब कोई के प्रस्तुत करत हवन। तो चला उनकर फरमाइश पर विनोद सिवदत्त के आवाज़ में ये गीत।

धोती पोती पगड़ी ई गीत के फरमाइश रात के जब सुनबा त खास तौर पर ई भाई अबू के फरमाइश रहेला जे वाकवा से हवन और भाई अबू हमेशा के तरह सब कोई के अपन प्यार अपन शुभकामना देवत हवन और भाई अबू के साथ साथ जितना कोई भी आज बकरीद मनावत हव जा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना और भाई अबू ई गीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस काला चोटी और अपन जिगरी दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम करत हवन और जितना कोई भी ई बखत आप बोलत हवा एमबीसी में काम करत हवा जा एमबीसी के पूरा टीम के नाम ई गीत

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
2: रेवा देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया है और ये मेरे लिए, ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूँ।
3: सेम,
2: एग्जैक्टली सेम।
3: किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे।
2: मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ। बदला क्या लेगी, बदले में जान मांग ले, दे दूंगी।
4: ले चले डोलियों।
1: रविवार 31 मई को MBC 3 पर दोपहर के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म फिलहाल 2002 की ये मूवी तबू और सुष्मिता सेन पर फिल्माई गई फिलहाल।
4: और
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:30 होलबा और विजय राव के आवाज़ में माँ के सेवा ये गीत सुने चाहत हवन बेलिया से आत्माराम जी। आत्माराम जी ये गीत अपन चार गो बड़ा बहिन के नाम करत हवन।

जे माँ के सेवा करेला उ मुक्ति पावेला ब्रह्मा विष्णु भी यही बोलेलन। ई गीत आत्माराम जी अपन चार गो बहिन के नाम करत हवन, प्रभावती, ललिता, सुदेवी और साथ में छोटी भी हवन। त आप सब बहिन लोग के जे लोग माँ समान हव जा आत्माराम जी के ओर से बहुत बहुत शुभकामना मातृ दिवस के अवसर पर।

और माँ के समर्पित शुभकामना आज के रात रुके होला नहीं बा। आज सब कोई माँ पर ही गाना मांगत हवा जा और माँ के बहुत शुभकामना प्रस्तुत करत हवा जा। पहला तो हवन शीला जे अभी फ्रांस में हवन, आप सब माँ लोग के शुभकामना प्रकट करत हवा और मातृ दिवस पर ही आप अपन बेटी के हियाँ विदेश से जात हवा वापस अपन देश और फिर मौदालबिया से मेरा भाई दरमिया हवन, आप पूरा पाइडिया और पूरा दरमिया परिवार के नाम इगित करत हवा, साथ में अपन बेटी और अपन दामाद के नाम भी। उधर हमने के ई बखत सुनत हवन कौचे मिलितिया से प्रोविडेंस कौचे मिलितिया से राजेश और पूरा बिहारी फैमिली, तब पूरा बिहारी परिवार के नाम राजेश के ओर से जे प्रोविडेंस कौचे मिलितिया के हवन सब मालूक के बहुत बहुत शुभकामना।

आज बिफे 28 मई के जेकर भी घर में एगो नवा मेहमान के जन्म होल बा, आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। ई ललना के गीत आप सब कोई के नाम, और खाली आज ही नहीं जेकर घर में आजकल नवा मेहमान के स्वागत होता, ललना चलता, नहान होता, आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। लक्ष्मण बिगाई लक्ष्मी के आवाज़ में इस सुंदर ललना आप सब कोई के नाम।

रात के 10 बजे में अभी लगभग 15 मिनट कमती बा और हमनी के साथ रही रात के 11 बजे तक। ये वक्त आप अपन मनपसंद प्रोग्राम सुना था हुआ भोजपुरी तड़का जो कि रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर चला था। और ये प्रोग्राम में जैसे जानेला आपके फरमाइश के बल पर हमनी के प्लेलिस्ट फिर से हम सरियाला और अगला जो गीत चली एक बार फिर माँ बाप पर माँ बाप के मोल गीता गजाधर की आवाज़ में ये गीत सुने चाहता वन मौदालबिया से शीला जी और अपन पूरा परिवार के नाम आप ये गीत कर था वह बेटा विक्रम और विशाल, बहू रेशमा और किनिता, नाती हर्षी कुशाल, नातिन तन्वी और पूरा परमेश्वर परिवार के नाम। साथ में आप सब माँ लोग के एक बार फिर मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka.

माँ बाप, अभी आप सुना था महेश विश्वजीत के आवाज़ में माँ पर गाना, और जैसे सब कोई अपन अपन माँ के और सब माँ के शुभकामना प्रकट कर रहा था वजह तो हमने संगे एक और मैसेज पा अनीता जी हवन फ्लिक ऑफ फ्लैग से, आप भी अपन ओर से जितना भी टीम इबखत एमबीसी में काम कर रहा था और जितना कोई अभी ये कार्यक्रम सुना था वजह, आप सब कोई के मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना प्रकट कर रहा था वन, और इनकर संगे संगे वाकवा के सुदेवी जी भी हवन, आप भी हमने के एगो व्हाट्सएप मैसेज भेज ले हवा और बोला था कि ये अगला गीत आपके दीदी ललिता और उनका पूरा परिवार के नाम, आत्माराम भैया मालेगा के पूरा रमरतन परिवार के नाम, और जितना कोई भी ई बखत ये कार्यक्रम सुना था वजह, आप सब कोई के नाम ख़ास तौर पर मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। देखते देखते रात के 10 बजे तक और अभी से रात के 11 बजे तक पूरा एक घंटा के सफ़र हमने संगे बा, और आपके फ़ोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चला ई माँ पर गीत के आनंद संगे उठाई जा।

इबखत रात के ठीक 10:01 होलबा और जितना कोई भी हमने के सुनत हवा आप सब कोई के ई जो रात्रि बा अच्छा से गुजरी ऐसा शुभकामना के साथ कार्यक्रम के आगे बढ़ावा थे जा आप सुनत हवा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तड़का। और इबखत अगर आप रास्ता पर हवा सफर पर निकलल हवा त आप खातिर एगो सलाह बा रतन हरि जी जोन देवत हवन आपके चाहे अपन गाड़ी ठीक से परख के तभी घर से निकले के चाहे अपन संगे लाइसेंस रखे के फिटनेस के ख्याल रखा गाड़ी के हर एगो जोन पार्ट बा उ ठीक से चलता ई बात के ख्याल रख के ही घर से निकला नहीं तो बीच सीमा में पुलिस जे आपके रोक दे तो बहुत परेशानी हो जाए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी तड़का, किरण संगे, MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया है और ये मेरे लिए, ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूं।
5: सेम,
4: एग्जैक्टली सेम।
5: किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे।
4: मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ। बदला क्या लेगी, बदले में जान मांग ले, दे दूंगी।
6: ले चले डोलियों।
0: रविवार 31 मई को MBC 3 पर दोपहर के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म फिलहाल 2002 की ये मूवी तबू और सुष्मिता सेन पर फिल्माई गई फिलहाल।

किशोर ठाकुर की आवाज में माँ पर ये गीत सुने चाह था वन बुआशेरी से कल्याणी जी। और कल्याणी जी, आप ये गीत अबर की मुनोवा गीत आराधा की सुन और मानती मनबोध के नाम करा था वह। साथ में अभी अभी आप अपन शादी के 50वां सालगिरह मनेला, तो कल्याणी जी आपके और आपके पति के आपके शादी के इस गोल्डन जुबिली 50 बरिस के बहुत बहुत शुभकामना।

और ये गीत पितों के अमृता गणेश जी के नाम, उनका पूरा परिवार गणेश परिवार के, और रोजिल से हमने की सुना था वन साजिद, साजिद जे हमेशा सरोवर के नाम गीत करेलन, द सरोवर जे विदेश से हमने के सुनेलन कनाडा में हवन, उनकरा ये माँ के गीत मातृ दिवस के अवसर पर, और साजिद जी सब माँ लोग के मातृ दिवस के शुभकामना प्रस्तुत करत हवन।

मांग कर ले हवन राधा नुवेल फ्रांस से और आप अपन नातिन के नाम ई गीत करत हवा वर्षा के जिनकर जन्मदिन बा और बहुत बहुत बधाई वर्षा के माता पिता और वर्षा के मामू वर्षा के नाना नानी और पूरा प्यारतो परिवार के ओर से और जितना भी आप लोग के सगे संबंधी हवन जा वर्षा के जन्मदिन के ढेरों शुभकामना प्रकट करत हवन और वर्षा के माँ और वर्षा के नानी के मातृदिवस के विशेष शुभकामना।

0: तेरा दिमाग खराब हो गया?
1: परसों ही माँ को तू खुद यहाँ से ले गया था।
0: मामा नहीं है भैया, माँ सुबह 5 बजे घर से निकल गई थी।
1: माँ सुबह से गायब है और तुझे अब फोन करने की फुर्सत मिली है।
2: अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से, अगर उन्हें कुछ हो गया ना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो।
3: सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा। मेरी माँ की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त।
4: शनिवार 30 मई को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म जख्म 1998 की ये मूवी अजय देवगन और पूजा भट्ट पर फिल्माई गई। जख्म

ये दुनिया बा चारों तरफ गोल और ये गोल दुनिया में भेटाए में कयो कोनो कसर नहीं छुटेला। कभी भी कोई भी कहूँ पर भी सकी भेटा जाए और ख़ास तौर पर अभी जब मातृ दिवस आवता तो सब कोई अपन माँ से मिली ऊ चाहे कहीं भी रही चाहे कोनो भी माध्यम रही। जैसे बोलल जता दुनिया गोल बा आजकल चाहे आप आमने सामने मिलबे या नहीं इतना ले साधन हो गल बा कि आप कोनो भी बखत सकबा अपन सगे संबंधी से

से फ़ोन पर वीडियो कॉल पर बात करें तो आप सब कोई के ये जो बड़ा दिन आवा था दिमास के दिन मातृ दिवस के दिन आप एक बहुत बहुत शुभकामना आप सब कोई के अपन परिवार के साथ अपनों के साथ अपन सगे संबंधी के साथ जे भी आपके मातुल्य बा माँ समान बा माँ के बराबर बा या जेकर पर भी आपके माँ के आस्था बा आप सब कोई के मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना और बोलल जरा माँ के कितने रूप रहेला अगर आप माँ बन के वो चाहे कोई के भी जीवन में खुशहाली आना था वह कोई के जीवन में सकब्जा बोले रोशनी आना था वह उम्मीद आना था वह तो आपके मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना बोलल जरा माँ जन्म से नहीं कर्म से होवेला तो जितना कोई कर्म से माँ होवा जा आपके शत शत नमन मातृ दिवस के शुभकामना के साथ और ई रात्रि के शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब रात के 10:47 होल बा काल हमनी फजर के मिलब जा हमारी धरोहर में और नहीं था हमनी के मुलाकात फिर से होई भेंट फिर से होई लेंदी के भोजपुरी तड़का में कार्यक्रम के सुनते रहिए धन्यवाद नमस्ते।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।
0: सुनहरी पल, सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: हम फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम। रात की इस हसीन पल में दिल को दीजिए म्यूजिक का सुकून। सुनहरे पल लेकर आए हैं पुरानी बॉलीवुड के अमर गीत सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों के लिए। तो बस आप आराम से बैठ जाइए, इन पुराने गीतों के साथ यादों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्त।

जो कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं वो सिर्फ और ज्यादा दिल के करीब हो जाते हैं। बिजी दिन के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का। ओल्ड बॉलीवुड गाने के साथ बिताइए एक सुकून भरी रात सिर्फ सुनहरे पर में। रेडियो मॉरिशस पर लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात और पुराने गीत, व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सुनहरे पल में आज फिर सजेगी यादों और सुरों की महफिल। दिल को छू लेने वाले गीत, यादों से भरी रात और म्यूजिक का सुकून, यही है आपका सुनहरे पल का असली एहसास।
2: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में

चाहते हो? तुम लोग उदास रह

हर गीत एक कहानी, हर सुर एक याद। आइए खो जाते हैं पुराने बॉलीवुड के सुनहरे दौर में। बिल्कुल दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है खुद को थोड़ा सा सुकून देने का। एंड टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग राइट नाउ, हम तो बस इतना कहेंगे कि अरे मेरी जान, जरा गाड़ी आराम से चलाना और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि गिनेशा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में अगला नगमा खासकर आप।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सुनहरे पल लेकर आए हैं बॉलीवुड के पुराने वो नगमे जो सिर्फ कानों में नहीं सीधा दिल में उतर जाते हैं। तो लाइट से थोड़ी सी डिम कर लीजिए, चाय या कॉफी का कप साथ लीजिए और एंजॉय कीजिए एक यादों भरी म्यूजिकल रात सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए, अगर आप पूरा दिन थके हुए हो काम कर करके, फिलहाल के लिए हम आपके दिल को राहत देने आए हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। हम फिर आएंगे एक और खूबसूरत शो में जिसका नाम है सुनहरे पल। इन पलों को हम और भी खूबसूरत बनाएंगे और खोज करेंगे और लेकर आएंगे खूबसूरत गानों का सिलसिला। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

గిట్టిగా వెతికాను

मुस्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।